सुप्रभात। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ही नजीबाबाद केंद्र है। आज बुधवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 17वीं तिथि, तदनुसार 8 जुलाई 2026। इस समय प्रातः के 5:58:40 हो रहे हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं।

0: आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6 बजने को है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर ने कल अपनी 2 दिन की बहरीन यात्रा समाप्त की। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के राजा हमद बिन ईसा अल खलीफा और क्राउन प्रिंस तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। यह बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. पीके मिश्रा की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्रा ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए जिससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन 2026 में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव, यथा समय नीतिगत हस्तक्षेप, घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेन देन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली है। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों, उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। श्रोताओं, प्रभु भजन और सत्संग के बिना मन को कहीं भी वास्तविक शांति नहीं मिलती। मन को वास्तविक शांति, सुख, संतोष प्रभु नाम में ही मिलता है। प्रभु नाम में ही सच्चा सुख है।

श्रोताओं, भगवान कृष्ण का रूप अत्यंत मनमोहक, अलौकिक और त्रिभंगी मुद्रा वाला है। मेरे मोहन का श्याम रंग, घुंघराले बाल, मोर मुकुट माथे पर तिलक, गले में वैजंती माला और हाथों में बांसुरी, ये सभी मेरे सांवरे के रूप को अद्वितीय बनाता है। आइए हम सुमिरन करते हैं उन भगवान कृष्ण को।

श्रोताओं, सद्गुरु हमारे जीवन से अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाकर जीवन में वास्तविक ज्ञान, प्रेम और ईश्वर का मार्ग दिखाते हैं। सद्गुरु के वचन जीवन बदलने वाले होते हैं और आत्मा को शांति प्रदान करने वाले होते हैं। तो आइए अब हम सुमिरन करते हैं उन गुरु को।

श्रोताओं, सच्चे हृदय से ईश्वर का नाम जपने से मन को शांति मिलती है। तो आइए हम भी सुमिरन करते हैं उस ईश्वर को।

आइए अब सुमिरन करते हैं भगवान गणेश का, जो कि बुद्धि के दाता और विघ्नहर्ता हैं। ये सभी संकटों को टालकर रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ प्रदान करते हैं।

0: अनूप जलोटा के गाए इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर है
1: नंबर 197
0: श्री रामचरित
1: 197।
0: मानस गान में गायक स्वर है सुरेश वाडेकर और संगीत दिया है सतीश भाटिया ने।

राम सखा निषाद राज को गले लगाकर भरत ने कुशल क्षेम पूछा। निषाद राज ने कहा, हे प्रभु, कुशल का स्रोत तो आपके चरण हैं, जिनके आज मुझे दर्शन हो गए और आपकी कृपा पाकर मेरी करोड़ों पीढ़ियों का कल्याण और मंगल हो गया। मैं कपटी, कायर, कुबुद्धि और कुजाति हूँ, किंतु श्री राम ने मुझ जैसे अधम को अपनाकर विश्व का आभूषण बना दिया है। निषाद राज की प्रीति देख और उनके वचन सुनकर छोटे भाई शत्रुघ्न उनसे मिले। अपने कुल और धाम बताते हुए निषाद राज ने सभी रानियों को प्रणाम निवेदित किया। रानियां उन्हें लाख वर्ष की आयु प्राप्त करने का आशीष देती हैं। ये अद्भुत दृश्य देखने वाले अनायास ही कह उठते हैं कि मनुष्य जीवन धारण करने का वास्तविक लाभ तो निषाद राज ने पाया है। निषाद सेवकों ने घरों, वृक्षों के नीचे, बागीचों तथा आसपास के वन उपवन में भरत जी के पूरे दलबल के विश्राम के लिए समुचित प्रबंध कर दिए। श्रृंगवेरपुर को देख भरत का शरीर प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ गया। गंगा के दर्शन कर सभी यही कामना प्रकट करते हैं कि श्री राम के चरणों में उनका प्रेम कभी कम न हो।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर थे सुरेश वाडेकर के और संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 6:40 हो रहे हैं। प्रस्तुत है आज का चिंतन।
1: बहुत से कामों में हमें सफलता नहीं मिलती तो इसका कारण यह है कि हम उन कामों को पूरे मन से नहीं करते। काम उठाया, थोड़ा सा किया, मन में दुविधा पैदा हो गई, यदि ये काम पार ना पड़ा तो नहीं, इसे यूं नहीं, यूं करें तो ठीक रहेगा। उस तरह जरा सा किया कि मन फिर डामाडोल हो गया। काम के लिए आवश्यक है कि पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, फिर उसे आरंभ करना चाहिए। एक बार आरंभ कर दिया तो उसे अपनी पूरी शक्ति से करना चाहिए। जिसकी निगाह इधर उधर भटकती रहती है वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। आपने देखा होगा, तांगे में घोड़े की आंखों के दोनों ओर पट्टे बांध दिए जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उसे सामने का ही रास्ता दिखाई दे, वो दाएं बाएं ना देखे। पांडवों के तीर चलाने की परीक्षा लेने के लिए एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने सब भाइयों को इकट्ठा किया, बोले, देखो वो सामने पेड़ पर सफेद रंग की एक नकली चिड़िया है। उसकी आंखों में लाल रंग के दो रत्न लगे हैं। तुम्हें उसकी दाहिनी आंख पर निशाना लगाना है। सब भाई धनुष बाण लेकर तैयार हो गए। गुरु द्रोण ने एक एक से पूछा, तुम्हें वहां क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कुछ बताया और किसी ने कुछ बताया। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने बताया, गुरुदेव मुझे तो उस चिड़िया की दाई आंख के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इतनी थी अर्जुन की एकाग्रता, तभी तो वो बाण चलाने में बेजोड़ थे। एकाग्रता से आदमी को अपने काम को अच्छी तरह से करने का मौका मिलता है, साथ ही उसका संकल्प भी पक्का बनता है। एक ही साधे सब सधे। किसी महापुरुष ने ठीक ही कहा है, प्रतिभा के माने होते हैं 90% पसीना बहाना और 10% प्रेरणा। दुनिया के काम मेहनत और एकाग्रता से ही पूरे होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि 1 एकड़ भूमि की घास में इतनी शक्ति भरी होती है कि उसके द्वारा अनेकों मोटरें और चक्कियां चलाई जा सकती हैं। आवश्यकता बस उस शक्ति को एकत्रित करने की है। अगर जिंदगी में कोई बुद्धिमानी की बात है तो वो एकाग्रता, और अगर कोई खराब बात है

0: तो अपनी शक्तियों को बिखेर देना। दुनिया में लोगों में शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन वे अपनी उस शक्ति को केंद्रित करना नहीं जानते। बंधी हुई भाप बड़े से बड़े इंजनों को खींच कर ले जाती है, लेकिन अगर वो बिखर जाए तो बेकार चली जाती है।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन, लक्ष्य की प्राप्ति। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम काव्यधारा के अंतर्गत सत्यवती सिंह का काव्य पाठ।

0: कार्यक्रम काव्यधारा के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे सत्यवती सिंह का काव्य पाठ। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 6:55 होने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे पहले संस्कृत में समाचार, उसके पश्चात हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ता। भारत इंडोनेशिया रणनीतिक सहभागित्वस्य सुदृढ़ाह्वानं कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् एतत् न केवलं द्वयोः देशयोः समृद्धौ अपितु क्षेत्रीय वैश्विक शांति स्थिरतासु च योगदानं प्रदास्यति इति। जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य संसदं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् भारतं विकासस्य मार्गं अनुसरति न तु विस्तारवादस्य।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: श्री मोदी द्वयोः देशयोः जनानां लाभाय यूपीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप इत्येतान् शिक्षां नवानवेषणं च समेत्य आंकिकीय सार्वजनिक अवसंरचनायां सहयोगस्य वर्धनाय अपि बलं प्रदत्तवान्। तत्पूर्वं प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता नगरे इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन सह प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्तां कृतवान्। उभय नेतृभ्याम परस्पर हितस्य क्षेत्रेषु सहयोगं वर्धयितुं ज्ञापनपत्राणां आदान प्रदानमपि कृतम्। श्रीमोदी वर्याय एकस्मिन् समारोहे राष्ट्रपतिना प्रबोवो सुबियांतो इत्यनेन इंडोनेशिया गणराज्यस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारं बिन्तांग आदिपूर्णा इति प्रदत्ता। शिलातैल प्राकृतिक वातेन्धन मंत्री हरदीप सिंह पुरी अवदत् यत् यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तरे अशोधित तैलस्य मूल्यानि स्थिरानि उत वा न्यूनानि भवन्ति तर्हि आंतरिक पेट्रोल डीजल इत्येतयोः मूल्यानि सकारात्मक दिशि प्रवर्धन्ते इति अपेक्षा अस्ति। मंत्री विश्वासं प्रकटितवान् यत् उपभोक्तृभ्यः दृक्पथः अनुकूलः एव अस्ति यतः वैश्विक तैल वातेन्धनापूर्तिः निरन्तरं विस्तृता अस्ति इति। नवदिल्ल्याम् अस्य वर्षस्य विकसित भारत शिखर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीपुरी अवदत् यत् भारतेन अद्यतनीयेषु दशकेषु वैश्विकोर्जा व्यवधानानां कूटनीतिक संवादस्य समायोजित नीतिगत हस्तक्षेपस्य देशीयोत्पादन वर्धनस्य आयातस्य विविधीकरणस्य च संयोजन माध्यमेन सफलतया समाधानम् अकरोत् इति। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अवदत् यत् भारत बहरीन सहभागित्वं निरन्तरं गहनं भवति। डॉक्टर जयशंकर ह्यः बहरीन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायाः समापनम् अकरोत्। यात्रावधौ डॉक्टर जयशंकर बहरीन देशस्य राज्ञा हमद बिन ईसा अल खलीफा इत्यनेन सह मेलनं कृतवान्। असौ उपप्रधानमन्त्रिणा शेख खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा इत्यनेन सह अपि मेलनं कृतवान्। एतासु सभासु विदेशमंत्री राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चेत्येतयोः पक्षतः शुभकामनाः अपि प्रेषितवान्। प्रधानमंत्री कार्यालयेन विविध क्षेत्रेषु एल नीनो इत्यस्य संभाव्य प्रभावानां सज्जतोपायानां च समीक्षार्थं प्रधानमंत्री कार्यालये उच्चस्तरीय समीक्षा सभा आयोजिता। प्रधानमन्त्रिणः प्रधान सचिवस्य डॉक्टर पीके मिश्र वर्यस्य अध्यक्षतायां सेवातीर्थे ह्यः इयं सभा आयोजिता। अस्यां सभायां पञ्चदशतोप्यधिकानां मन्त्रालयानां सचिवाः वरिष्ठाधिकारिणः च उपस्थिताः आसन्। फुटबॉल क्रीडायां स्विट्जरलैंड देशः वैंकूवर नगरे पेनल्टी शूटआउट इत्येतस्यां क्रीडायां कोलंबिया देशं 4-3 इत्यांकतरालेन पराजित्य 54 ऊनविंशति शततमात् वर्षात् प्रथमवारं फीफा विश्वकप क्रीडायाः प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवान् इति वार्ताः।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देश समृद्ध होंगे और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास के मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूँ। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र साझा भविष्य का केंद्र है।
0: श्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच सदियों पुराने संबंध समान लोकतांत्रिक मूल्य आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को इंडोनेशिया में परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत बहरीन सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। श्री जयशंकर की बहरीन यात्रा कल संपन्न हो गई। यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन के सुल्तान हमद बिन ईसा अल खलीफा और शहजादे तथा प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से मुलाकात की। इस दौरान विदेश मंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं प्रेषित की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। ये बैठक प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में सेवा तीर्थ में हुई। बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। श्री मिश्र ने निर्देश दिया कि स्थिति की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मानसून या विलंबित मानसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए। इससे आवश्यकता पड़ने पर सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें स्थिर रहती हैं या घटती हैं तो घरेलू पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सकारात्मक वृद्धि होने की उम्मीद है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन में श्री पुरी ने कहा कि भारत ने राजनयिक जुड़ाव यथासमय नीतिगत हस्तक्षेप घरेलू उत्पादन में वृद्धि और आयात में विविधता के माध्यम से हाल के दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण वैश्विक ऊर्जा संकटों में से एक का सफलतापूर्वक सामना किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से कथित वित्तीय लेनदेन अवैध धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर तलाशी ली। ये तलाशी विमानन क्षेत्र में कार्यरत निजी कंपनी केयरवेल समूह की कंपनियों उसके निदेशकों और एक कथित चुनावी ट्रस्ट से जुड़े परिसरों पर की गई। अमरीका ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर हुई कार्रवाई के बाद किए गए। अमरीका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए।

0: फीफा फुटबॉल विश्व कप में अंतिम 16 में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वैंकूवर में दोनों टीम निर्धारित समय में कोई गोल नहीं कर सकी। इसके बाद स्विट्जरलैंड ने पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से जीत दर्ज की। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में भारी वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत जानकारी जोड़ों का दर्द और सावधानियां विषय पर।
2: प्रमुख रोग जो है हड्डियों के, वो हड्डियों में बीमारी का होना, हड्डियों में किसी प्रकार की ट्यूमर का होना और जोड़ों में जो है इन्फेक्शन होना, मवाद पड़ जाना, ये जो है इसके प्रमुख रोग होते हैं। जोड़ों के दर्द जो है इसके कारण तो बहुत होते हैं, पर मुख्य कारण जैसे कि जोड़ में यदि कभी मतलब कोई चोट वोट लग जाए तो चोट लगने की वजह से भी जो है जोड़ों में दर्द रहता है, या जोड़ों की बीमारी जिसको कि प्रमुख बीमारी हमारे यहाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, जो कि बच्चों में भी होती है और बड़ों में भी होती है, वो उससे हो सकता है, या फिर बूढ़े लोगों में जो ऑस्टियोआर्थराइटिस बीमारी होती है, जोड़ों में जो है ओल्ड एज जो है चेंजेस आते हैं, उससे हो सकता है। और बाकी जोड़ के अंदर अगर कोई किसी प्रकार का इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो वो भी एक जोड़ का कारण, भी दर्द का जो है कारण हो सकता है। जो इसी मतलब जो है इन्फेक्शन से है, जैसे कि इन्फेक्शन जो है वो टीबी के जो है कीटाणु से हो सकता है, या इन्फेक्शन जो है मवाद जो है पड़ने वाले कीटाणु से होता है, तो इस टाइप की आर्थराइटिस में जोड़ों में दर्द रहता है बना हुआ। टीबी से होने वाला इन्फेक्शन जोड़ों में जो है दर्द जो है उसमें धीमे धीमे होता है और मरीज को साथ में बुखार आता है, बुखार हल्का होता है, तेज नहीं होता है, जोड़ों में सूजन आती है और अक्सर मरीज को शाम के टाइम भी बुखार रहता है और हो सकता है रात में कभी कभी पसीना भी आता है मरीज को, भूख उसे कम लगती है, साथ में उसका वजन भी गिरने लगता है। और टीबी की बीमारी जो है फेफड़ों की टीबी या आंत की टीबी, वो भी इसको साथ में हो सकती है। इसमें जो है बीमारी अपना एक लंबा समय लेती है। और दूसरा जो है जैसे आम जो है मवाद पड़ने वाले जोड़ों का जो दर्द होता है, उसमें जोड़ों के में बहुत तेजी से जो है दर्द होता है, जोड़ के आसपास जो है लाली आ जाती है, जोड़ों का तापमान बढ़ जाता है और बहुत ये जो है बीमारी बड़ी पेनफुल होती है, इसमें पेशेंट को बहुत तकलीफ होती है, इसमें बुखार बहुत तेज आता है। और तीसरा जो है ओल्ड एज में या चोट लगने के बाद जो जोड़ में जब पुरानी जो है चोटें होती हैं उसका दर्द जो है वो जिस प्रकार के हम लोग जब चलते फिरते हैं या कोई एक्सर्शन हो जाए कुछ है उसमें वो दर्द बढ़ जाता है, उसके बाद जो है अगर आराम करें तो वो दर्द भी कम हो जाता है। हमें खासकर ये कैल्शियम और विटामिन डी

0: अंडा हुआ, मीट हुआ, ये जो प्रोडक्ट हुए, मिल्क प्रोडक्ट हुए, दूध हुआ, पनीर हुआ और कर्ड हुआ, इन सब में जो है कैल्शियम होता है। हाँ, मूच जो है वैसे हमारी टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्प्रिंग। तो मूच जो है जोड़ के अलावा किसी और हिस्से में भी आ सकती है, जनरली जोड़ पे ही मूचें आती हैं जितनी भी है, क्योंकि जोड़ में सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो मूवमेंट होता है शरीर का हमारा, हर अंग जो है जोड़ से जो है हिल रहा है, मतलब जैसे कि हाथ के जोड़ हैं, पैरों के जोड़ हैं, कमर है, गर्दन है, ये सब हमारे जोड़ हैं जिसकी वजह से हम जो है हमारा पूरा शरीर जो है वो चलायमान है। अब होता क्या है कि जैसे मूंछ आई, तो मूंछ जो है कमर में जैसे आएगी तो कमर में भी जो है जो मसल्स होती हैं, मसल्स भी अगर जो है फुल अप हो जाती है तो वो मूंछ होती है। तो मूंछ जो है जोड़ के अलावा किसी भी जो है मसल्स की लाइन में जो है मूंछ हो सकती है।
1: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा के अंतर्गत आप सुन रहे थे जानकारी जोड़ों का दर्द और सावधानियां विषय पर। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें के अंतर्गत जानकारी आधुनिक और परंपरागत खेती का विलय विषय पर।
2: किसान आयु खेती की बातें कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के जरिए आज हम चर्चा करेंगे आधुनिक और परंपरागत खेती में विलय के संदर्भ में। किसान भाइयों, हम वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं और ये भूमि हमें हमारे बुजुर्गों ने हमें सौंपी है और हम इसी हष्टपुष्ट और उपजाऊ भूमि को अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंप देंगे और यही परंपरा वर्षों से चली आ रही है। लेकिन बात यह आती है कि आधुनिक तरीके से जो कृषि हो रही है उसमें काफ़ी बदलाव आए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम परंपरागत तरीकों को अपनाकर करते चले आ रहे हैं। जैसे भैया देखिए, हमारे पुराने समय से ही हमारे किसान भाई गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, तो आज भी वो उतना ही कारगर है और उतना ही उपयोगी है, हमारी भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने में उतना ही लाभकारी है। दूसरी बात यह है कि हमारे किसान भाई पहले से ही फसल चक्र अपनाते चले आए हैं और आज भी फसल चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे किसान भाई गन्ना बोने के बाद उस खेत में पहले गेहूं बोते थे और गेहूं बोने के बाद धान की फसल लेते थे और धान के बाद जो भी तिलहन की फसल है वो लेते थे, उसके बाद गन्ना बोते थे। तो इस तरह से बदल बदल के फसल बोने से कई लाभ होते थे। सबसे महत्वपूर्ण लाभ तो ये होता था कि भूमि जो है वो अलग अलग प्रकार की जड़ों के संपर्क में आती थी, और जो भूमि जब अलग अलग प्रकार की जड़ों के संपर्क में आती है, एक बार झकड़ा जड़ हो गई, एक बार मूसला जड़ हो गई, एक बार दूसरी तरह की हो गई, तो भूमि की जो उपजाऊ शक्ति है वो हमेशा जो है बढ़ती रहती है और उपजाऊ शक्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अब आधुनिक दौर के हम बात करें तो हम लगातार गन्ने की फसल बो रहे हैं और गन्ने की फसल बोने से भैया लगातार हमारी जो भूमि है वो अपनी बहुत सारे रोगों को छोड़ती जा रही है, यानी कि ये कहेंगे कि हमें नुकसान होता जा रहा है, हमारी जो उपजाऊ शक्ति है वो कम होती जा रही है। देखिए, हम आधुनिकीकरण की बात करें तो हम ये अब हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है कि अब मशीनीकरण का युग आ गया है। पहले समय में भैया हम सिंचाई अगर करते थे तो तालाबों पर निर्भर थी, या भैया नहर कहीं कहीं थी तो उनसे सिंचाई कर लेते थे, या भैया बहुत कम हमारे साथी ऐसे थे जिनके पास जो है वो डीजल से सिंचाई होती थी। लेकिन आज बिजली का युग आ गया है, ज़्यादातर किसान भाइयों के पास बिजली के ट्यूबवेल हैं और नहरों से सिंचाई अच्छी हो रही है, और अब सिंचाई के नए नए तकनीक भी आ गई हैं, बूंद बूंद सिंचाई योजना आ गई है। उसके अलावा ये देखिए, जब से पाइप सिस्टम आ गया है तो हमारी जो ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, ऊंची नीची ज़मीन है, वहाँ पे पाइप के जरिए हम पानी ले जाते हैं और सिंचाई की सुविधाएं हमारी अच्छी हो गई हैं। पहले ज़माने में भैया कंप्यूटर लेवलर नहीं था, आज हम अपने खेतों को समतल कर सकते हैं और अच्छे तरीके से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो देखिए, हम अगर आधुनिक दौर की बात करें तो ये जो चीज़ें आई हैं, यानी कि हमारे सिंचाई के साधन बढ़े हैं, हमारे पास रासायनिक खाद आ गए हैं, अच्छे किस्म के बीज आ गए हैं और भूमि का समतलीकरण आ गया है, मिट्टी की जांच आ गई है, तो इनका हमें लाभ उठाना चाहिए। लेकिन परंपरागत तरीकों को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि हम जिस तरह से फसल चक्र अपनाते थे वो आज भी हम अपनाएं, या हमारे जो जैविक तरीके थे उनको अपनाते थे, उन तरीकों को अपनाएं, जैविक खेती करें। तो इस तरह से हम अगर दोनों चीज़ों को समन्वय करके चलें तो हम एक अच्छी कृषि की तरफ जाएंगे और ये भूमि जो है उपजाऊ बनी रहेगी, और जिस प्रकार की उपजाऊ भूमि हमारे बुजुर्गों ने हमें सौंपी थी, एक अच्छी, एक उपजाऊ और अच्छी उपज देने वाली भूमि को हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंप देंगे। तो देखिए, हम सबका कर्तव्य ये बनता है कि हम

पुरानी जो चीज़ अच्छी हैं उनको भी ग्रहण करें, नई जो चीज़ अच्छी हैं उनको भी ग्रहण करें, और जब दोनों का हम समन्वय बनाते हैं तो एक अच्छे परिणाम की तरफ हम जाते हैं। तो इस कार्यक्रम के जरिए हम अपने किसान भाइयों को यही सलाह देना चाहेंगे कि देखिए, ना तो पहले कुछ बुरा था ना अब कुछ बुरा है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ हमें बदलनी पड़ती हैं, तो आधुनिक और उपयोगी चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए, और जो परंपरागत हमारी पुरानी चीज़ें हैं उनको भी हमें लाभ में लेना चाहिए। केंचुए की खाद का हम इस्तेमाल करें, हम गोबर की खाद का इस्तेमाल करें, हम हरी खाद का इस्तेमाल करें, फसल चक्र को अपनाएं और लगातार एक फसल को ना बोएं। समय अगर आपके पास है, अगर आपकी स्थिति ऐसी है, तो हम भदवार छोड़ दें, यानी कि गर्मियों की जुताई करके छोड़ दें, सर्दियों की जुताई करके छोड़ दें, तो इस तरह से हम अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज तो हम अपनी खेती की बातें यहीं संपन्न करते हैं, कल आपको एक नए विषय के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। किसान भाइयों, नमस्कार।

निर्देश त्यागी के गाए रुहेल खंडी लोकगीतों का। दिन में 12:05 पर श्रोता सुनेंगे शिशिर कानाधर चौधरी का वायलिन पर बजाया राग मुल्तानी, विलंबित व द्रुतगत 3 ताल में निबद्ध होगा। तबले पर संगत करेंगे संतराम। कार्यक्रम घर संसार बहने सुनेंगे दिन में 1:15 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा सकारात्मक सोच से जीवन में बदलाव। साथ ही क्रम होगा थारा स्वास्थ्य का। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा के अंतर्गत दिन में 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे शारदा सिंह के गाए राजस्थानी लोकगीत। मेरा सपना उन्नत भारत कार्यक्रम शाम 5 प्रसारित किया जाएगा। युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युवाणी शाम 5:15 पर प्रसारित किया जाएगा। किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत श्रोता सुनेंगे शाम 6:05 पर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसान भाई सुनेंगे भेंटवार्ता, विषय होगा मशरूम उत्पादन एक लाभकारी व्यवसाय।

शाम 6:45 पर कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे वार्ता भीष्म साहनी का नाट्य शिल्प। वार्ताकार होंगे डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। कानून की बात कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे शाम 7:32 पर हमारे लखनऊ केंद्र से।

0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान। शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में अल नीनो के संभावित असर संबंधित तैयारियों की हुई समीक्षा। प्रधान सचिव ने पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखने का दिया निर्देश। वाराणसी से आज शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्य के करीब 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा, मंदिर में दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में नहीं आई है कोई कमी। चढ़ावा गबन मामले में दोषियों को मिलेगा दंड। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रगति परियोजना का शुभारंभ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा की अध्यक्षता में नई दिल्ली स्थित सेवा तीर्थ में कल एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में खरीफ सीजन की प्रगति और अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर अल नीनो के संभावित असर को देखते हुए गई तैयारियों की समीक्षा की गई। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने निर्देश दिया है कि पूरी स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए, राज्यों के साथ मिलकर उन जिलों पर मानसून या देर से आए मानसून के असर का आकलन किया जाए जो ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर सुधार के लिए कदम उठाए जा सकें। यह भी निर्देश दिया गया कि चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाएं, साथ ही चारे के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाएं और राज्यों के साथ मिलकर इस बारे में नियमित निगरानी की जाए। संवेदनशील जिलों में पीने के पानी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि समस्याओं का प्रभावी ढंग से समाधान निकालने के लिए मंत्रालयों को राज्यों के साथ मिलकर आपसी तालमेल से काम करना चाहिए। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय दौरे पर कल शाम वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वहां के जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति, कानून व्यवस्था और आगामी श्रावण मास की तैयारियों की समीक्षा की एवं आवश्यक निर्देश दिए। आज श्री योगी वाराणसी से ही मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना से प्रदेश में काम करने वाले 12 लाख शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसके बाद मुख्यमंत्री चित्रकूट में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 111 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने अपनी कार्यशैली से विकास को गति दी है।
3: ये वही प्रदेश है, हमने ये डबल इंजन की भाजपा सरकार ने, एनडीए सरकार ने कोई अलग से नहीं किया। तंत्र वही, लोग वही, राज्य वही, केवल कार्य करने की स्टाइल बदली है। हर गरीब को उसका हक मिले, हर नौजवान का रोजगार पर अधिकार है, हर अन्नदाता किसान को शासन की योजना का लाभ मिले।
1: मुख्यमंत्री ने कल ही सुल्तानपुर में 819 करोड़ रुपए की लागत की 99 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रशस्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कनेक्टिविटी सुधार कर पूर्वांचल को विकास से जोड़ा है।
3: अच्छी सरकार चुनती है तो सुरक्षा का माहौल खड़ा होता है, सुरक्षा का माहौल खड़ा होता है तो विकास

0: विकास भी होता है और आवागमन के लिए अच्छी सड़कें बनती हैं। ये अच्छी सड़कें केवल कनेक्टिविटी का आधार नहीं है, हमारी प्रगति का भी आधार बनता है।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा है कि मंदिर में चढ़ावा गबन मामले के बाद भी दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने कहा कि इस मामले में न्याय होगा और दोषियों को दंड मिलेगा।
2: ये सारा जो हुआ यह निग्लिजेंस का परिणाम है, यह निगरानी न रखने का परिणाम है, सावधान न रहने का परिणाम है। हम लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए, पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तो भी हो ही जाना चाहिए, ये निश्चय ट्रस्ट ने किया है। बिल्कुल ठीक बात है, न्याय होगा, न्याय होना चाहिए और जो अपराधी है उनको दंड भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये अत्यंत गहरी चोट उन्होंने सारे राम भक्तों के अंतकरण पर की है।
1: इस मामले में श्री राम जन्मभूमि न्यास के महासचिव रहे चंपत राय ने एक पत्र में कहा कि वह SIT की अंतिम रिपोर्ट जमा होने के बाद अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब देंगे। वहीं मंदिर में चढ़ावा गबन मामले की जांच में अब पुलिस आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ का कल 24वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने की। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थियों को अपनी योग्यता पर भरोसा रखकर राष्ट्रहित में कार्य करने की जरूरत है। दीक्षांत समारोह में कुल 83 विद्यार्थियों को 84 पदक दिए गए। वहीं 62,537 विद्यार्थियों को डिग्री और 52 विद्यार्थियों को PhD अवार्ड भी प्रदान किए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांवों और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
3: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
1: प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल मिर्जापुर में बहुउद्देशीय खाद बीज और प्रसार केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों को आधुनिक संसाधनों और तकनीक से जोड़ने के लिए लगातार काम कर रही है।
4: 20 लाख रुपए के लगभग लागत से यहाँ पर किसान कृषि कल्याण केंद्र बनाया गया है। प्रदेश के भीतर लगभग 380 स्थानों पर हम लोग कृषि ब्लॉक विकास खंडों में ये अपना रहे हैं, जिसमें से एक पहाड़ी ब्लॉक मिर्जापुर जनपद के भीतर लोकार्पण करने का अवसर मिला है। इतना भव्य भवन कभी भी किसी सरकार ने किसानों के बैठने के लिए नहीं दिया।
1: प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश और बूंदाबांदी का क्रम जारी है। लखनऊ, फर्रुखाबाद, शामली, बिजनौर, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ सहित कई स्थानों पर कल बारिश दर्ज की गई। गोरखपुर सहित प्रदेश के कई पूर्वी जिलों में आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की हवाओं के बीच बारिश के आसार बने हैं। पीलीभीत जिले में बीती रात से ही तेज बारिश हो रही है। इस बीच मौसम विभाग ने आज राज्य के पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश का पूर्वानुमान

0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्य के करीब 12 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिलेगी स्वास्थ्य सुरक्षा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा, मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और उनके उत्साह में नहीं आई है कोई कमी। चढ़ावा गबन मामले में दोषियों को मिलेगा दंड। और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया प्रगति परियोजना का शुभारंभ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
2: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ही नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 7:31 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सूरज के साथ साथ।

कार्यक्रम सूरज के साथ साथ सुनने वाले सभी श्रोताओं को रेणु राजपूत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। इसी संदेश के साथ शुरू करते हैं हम आज का अपना कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से जिन्होंने अभी स्कूल जाना शुरू किया है। उनके लिए नया स्कूल, नया माहौल और नए दोस्त। तो बच्चों, शुरू में तो सभी को नए माहौल में ढलने में थोड़ा समय तो लगता ही है, पर नए स्कूल में प्रवेश करना जीवन का एक रोमांचक और चुनौतीपूर्ण अनुभव होता है। जहां एक तरफ नया माहौल और नए दोस्त बनाने की उत्सुकता होती है, वहीं नए दोस्तों के व्यवहार को लेकर थोड़ा सा भी मन में डर बना रहता है। श्रोताओं, स्कूल बदलना केवल एक इमारत का बदलना नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। जब बच्चा पहले दिन नए स्कूल में एक स्कूल के नए गेट के अंदर कदम रखता है तो उसकी धड़कनें तेज होती हैं। सब कुछ नया सा लगता है। क्लासरूम का रंग रूप, शिक्षकों का पढ़ाने का तरीका और स्कूल के नियम, यह बदलाव जीवन में ढलना सिखाता है, क्योंकि यही बदलाव बच्चे की दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है और यही स्कूल का नया माहौल बच्चे को बाहर निकलने और नई चीजें सीखने का अवसर देता है। अगर नए परिवेश को खुले दिल से बच्चे स्वीकार करते हैं तो वहां की सकारात्मक ऊर्जा आपको बहुत कुछ सिखाती है। और श्रोताओं, हमारे स्कूली जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है दोस्ती, और नए लोगों के बीच दोस्त बनाना एक कला है। जिसे ये कला आती है वो अपने सहपाठियों के साथ हंसी खुशी का माहौल बना लेते हैं। एक दूसरे की रुचि, पसंदीदा किताबों को साथ में पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्ती दोस्त ही होते हैं जो नए माहौल में अकेलापन महसूस नहीं होने देते। सभी सहपाठी लंच शेयर करते हैं, स्टडी में एक दूसरे की सहायता करते हैं और अच्छे साथ

साथी बन जाते हैं। श्रोताओं, हर बदलाव में एक अवसर होता है। यह सोचें कि आपको कुछ नया सीखने और बेहतर यादें बनाने का मौका मिल रहा है। बच्चों को स्कूल की हर गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें, चाहे वह खेल हो, वाद विवाद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम। इससे उनकी विचारधारा के दोस्त भी मिलते हैं और शारीरिक गतिविधि भी अच्छी होती है। कुल मिला

बच्चों को स्कूल की हर गतिविधि में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करें, चाहे वह खेल हो, वाद विवाद प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम। इससे उनकी विचारधारा के दोस्त भी मिलते हैं और शारीरिक गतिविधि भी अच्छी होती है। कुल मिलाकर दोस्त आपके इस सफर में आसान और यादगार बना देते हैं, आपको एक सफल और अच्छा इंसान बनाते हैं। श्रोताओं, आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने इस सेगमेंट चलते हैं अपने इस नए सेगमेंट की ओर और इंटरनेट का यूज सतर्कता से करें और ऑनलाइन फ्रॉड से बचें। श्रोताओं, आज के इस आधुनिक युग में इंटरनेट जीवन का एक मुख्य हिस्सा बन गया है। यह करोड़ों कंप्यूटरों और नेटवर्क को आपस में जोड़ने वाला एक वैश्विक जाल है। फिर चाहे शिक्षा हो या व्यापार, संचार या मनोरंजन, यह सभी क्षेत्रों के लिए अति आवश्यक है। श्रोताओं, हम ईमेल, सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और वीडियो कॉल्स के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में हम पल भर में संपर्क कर लेते हैं। घर बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर रहे बच्चे पढ़ते हैं और नए कौशल सीख रहे हैं। इंटरनेट के द्वारा ही ये सब आसान हुआ है। साथ ही ऑनलाइन पेमेंट, मनी ट्रांसफर करना और घर बैठे सामानों की खरीदारी इंटरनेट के बिना संभव नहीं है। इंटरनेट ने हमारे समय और मेहनत की भारी बचत की है, जिससे कि हमारे दैनिक कार्य काफी सुविधाजनक हो गए हैं। श्रोताओं, आज इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि जिसके बिना हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इसके साथ इसमें ऑनलाइन खतरे भी बढ़ते जा रहे हैं। इंटरनेट का सुरक्षित उपयोग और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए बेहद जरूरी है अपनी डिजिटल दुनिया को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत पासवर्ड का प्रयोग करना। किसी भी संदिग्ध लिंक या ईमेल पर क्लिक न करें और अपनी व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी, ओटीपी, पिन किसी के साथ भी साझा न करें। ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए सतर्कता बरतने की आवश्यकता होती है। श्रोताओं, बैंक कभी भी फोन पर पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगता। किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपना यूपीआई पिन, एटीएम कार्ड का सीवीवी या नेट बैंकिंग पासवर्ड साझा न करें और किसी भी लुभावने ऑफर, लॉटरी या डिस्काउंट वाले मैसेज में दिए गए अनजान लिंक पर क्लिक न करें। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट URL की जांच करके ही आगे बढ़ें तथा रेलवे स्टेशन या कैफे जैसे सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय बैंक अकाउंट में लॉग इन करने या संवेदनशील लेन देन करने से भी बचें। श्रोताओं, अपने स्मार्टफोन में केवल विश्वसनीय और आधिकारिक ऐप स्टोर से ही ऐप्स डाउनलोड करें। किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते समय उसकी अनुमतियों को ध्यान में देखें। श्रोताओं, सोशल मीडिया का प्रयोग सतर्कता से करें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे घर का पता, फोन नंबर या जन्मतिथि को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक न करें। किसी भी अनजान व्यक्ति या फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार करने से बचें और यदि कोई साइबर फ्रॉड होता है तो सबसे पहले भारत सरकार के आधिकारिक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। त्वरित सहायता और रिपोर्टिंग के लिए आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी

0: छाती को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
3: तो इंतजार किस बात का,
2: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
2: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
3: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
2: और हमारा ईमेल आईडी है
3: akashwaninajibabad@gmail.com।
2: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
3: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
4: श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। श्रोताओं, मौसम बरसात का है तो ऐसे मौसम में हमें अपने वाहन बहुत सावधानी से और सुरक्षित चलाने चाहिए, क्योंकि बरसात में गाड़ी सावधानी से चलानी चाहिए कि बारिश में सड़क पर पानी जमा होने से फिसलन बढ़ जाती है और दुर्घटनाओं का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। सुरक्षित रहने के लिए उचित दूरी बनाए रखें, सही गियर का इस्तेमाल करें और अचानक ब्रेक ना लगाएं, वाहन धीरे चलाएं। श्रोताओं, गीली सड़कों पर टायर की पकड़ कम हो जाती है, इसलिए अपनी सामान्य गति से धीमी गति में चलाएं। अपने वाहन से आगे चल रहे वाहन से कम 5 सेकंड की दूरी अवश्य बनाए रखें। गीली सड़क पर गाड़ी रोकने से ज़्यादा जगह लगती है, पानी से भरे रास्तों पर गाड़ी धीरे धीरे, अगर पानी बहुत गहरा हो तो ऐसी जगह से गाड़ी निकालने से बचें, क्योंकि इससे गाड़ी के इंजन में पानी जा सकता है। बारिश में गड्ढे छिपे होते हैं अर्थात दिखाई नहीं देते, यदि पानी भरा हो तो गाड़ी को बहुत धीमे और स्थिर गति से निकाल लें। साथ ही श्रोताओं, वाहन के रखरखाव पर भी विशेष ध्यान दें, जैसे टायरों में सही हवा का दबाव होना और टायरों की ग्रिप अच्छी होना ताकि वे सड़क पर फिसले नहीं। विंडशील्ड वाइपर की अच्छी स्थिति में होनी चाहिए ताकि बारिश में आगे का रास्ता साफ दिखाई दे, और अपने वाहन के सभी इंडिकेटर, ब्रेक लाइट और हेडलाइट्स की भी जांच अवश्य करें। श्रोताओं, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट तिथि विशेष की ओर। आज है 8 जुलाई, तो जानते हैं आज क्या है महत्वपूर्ण। श्रोताओं, पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने यूरोप से भारत के कालीकट तक पहुंचने के लिए अपनी पहली ऐतिहासिक समुद्री यात्रा शुरू की थी 8 जुलाई 1497 को। हमारे देश की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजनाओं में से एक भाखड़ा नांगल परियोजना पर बनी सबसे बड़ी नहर का उद्घाटन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द्वारा किया गया था 1954 को। और अब जानकारी आज ही के दिन जन्म लेने वाले कुछ महान व्यक्तियों के बारे में। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज वामपंथी राजनेता ज्योति बसु का जन्म 8 जुलाई 1914 को हुआ था। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक और दादा के नाम से मशहूर सौरव गांगुली का जन्म सन 1972 में पश्चिम बंगाल में हुआ था। दुनिया की लोकप्रिय ड्रिंक कोका कोला के आविष्कारक जॉन डी रॉकफेलर का जन्म 8 जुलाई 1939 को हुआ था।

श्रोताओं, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ में। आइए अब देखते हैं आज क्या है समाचार पत्रों में विशेष। ब्रह्मोस व अस्त्र मिसाइलें खरीदेगा इंडोनेशिया, भारत के साथ ईवीएम के लिए भी समझौता। भारत ने रक्षा संबंधों को नया आयाम देते हुए इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी अस्त्र मिसाइलें निर्यात करने के लिए करार किया है। ये खबर है अमर उजाला की। अमर उजाला ये लिखता है, नीली साड़ी बंद गले के कोट में बिखेरेगी भारतीयता की चमक। राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय पुरुष खिलाड़ी बंद गले के कोट और महिला खिलाड़ी नीली साड़ी और पारंपरिक लंबे ब्लाउज पहनकर उतरेंगे। भारतीय दल पहली बार जूट विस्कोस से बनी खास हाफ जैकेट भी पहनेगा। खेल मंत्री मनसुख मांडविया, आईओए अध्यक्ष पीटी उषा और केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह की अगुवाई में मंगलवार को राष्ट्रमंडल खेलों की सेरेमोनियल और स्पोर्ट्स किट का अनावरण किया गया। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, झमाझम बारिश से झूम उठे लोग, गर्मी से मिली राहत। जिले में मंगलवार को सुबह मौसम में अचानक करवट ली और दोपहर तक तेज हवा के साथ शुरू हुई झमाझम बारिश से कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत दिलाई।

हिंदुस्तान टाइम्स प्रमुखता देता है सबांग बंदरगाह के लिए के जरिए भारत के करीब आएगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया दौरे के दौरान दोनों देश रणनीतिक रूप से अहम समांग बंदरगाह को विकसित करने का फैसला किया है। दैनिक जागरण लिखता है जून में सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंची इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री। देश में जून में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खुदरा बिक्री यूनिट के अब तक के सबसे उच्चतर पर पहुंच गई है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक यह आंकड़ा पिछले साल के समान अवधि के मुकाबले 63% ज्यादा है।

0: साथ साथ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सूरज के साथ साथ। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बज रहे हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे समाचार।
2: हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस से जुड़े बैंक खातों में वित्तीय अनियमितताओं के सिलसिले में कोलकाता में कई स्थानों पर छापेमारी की। होर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर हमलों के बाद अमरीका ने ईरान पर हमले किए। ईरानी तेल पर प्रतिबंधों में छूट भी वापस ली। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की है। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। जकार्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोयो सुबियांतो के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंतर्गत नामित आतंकवादियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने का आग्रह किया। एक रिपोर्ट।
5: दोनों नेताओं ने आतंकवाद और उग्रवाद की रोकथाम और इसका मुकाबला करने में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। इसमें आतंकवाद के वित्त पोषण पर अंकुश लगाने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने वाले मानकों के कार्यान्वयन को मजबूत करने, आतंकवादी समूह द्वारा उभरती प्रौद्योगिकियों का दुरुपयोग को रोकने और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नफरत फैलाने से निपटने के उपाय शामिल है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग समझौता ज्ञापन के शीघ्र संपन्न होने का भी स्वागत की। इस पर जल्दी हस्ताक्षर होने का उम्मीद है। दोनों देश ने आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधी का रोकथाम, साइबर सुरक्षा, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा उद्योग, समुद्र सुरक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में दोनों नेताओं ने विकसित भारत 2047 विजन और सहयोग बढ़ाने के लिए तीसरे भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद का स्वागत किया। इंडोनेशिया के इंडोनेशिया इमास 2045 एजेंडा के बीच समानताओं का भी उल्लेख किया। इंडोनेशिया।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। जकार्ता में इंडोनेशिया के सांसदों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने साझा सभ्यतागत विरासत, लोकतांत्रिक मूल्यों और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के एक नए युग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि भारत इंडोनेशिया के साथ लोकतांत्रिक संबंध मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने भारत की विकास यात्रा और 2047 तक विकसित भारत तथा 2045 तक स्वर्णिम इंडोनेशिया की परिकल्पनाओं के बीच तालमेल का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने व्यापार, निवेश, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया।
2: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं। हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं। हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में है। हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं। हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्याकार्ता में प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे। नौवीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है और दक्षिण पूर्व एशिया की उत्कृष्ट स्थापत्य कलाकृतियों में से एक है। मूल रूप से इस परिसर में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव को समर्पित 240 छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री अपनी तीन देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने तीन दिन के दौरे के दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी प्रवासी भारतीयों की एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री माननीय एंथनी अल्बनीज के बीच होने वाली द्विपक्षीय वार्ता से दोनों देशों के संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी और रणनीतिक सहयोग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की संभावना है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2025 में 33 अरब अमरीकी डॉलर का आंकड़ा पार कर चुका है। अब दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़ते हुए दोनों देशों की साझेदारी अब डिजिटल और उभरती प्रौद्योगिकियों पर भी केंद्रित हो रही है। इसका प्रमुख उदाहरण एयरट्रक द्वारा भारत में AI तैयार डेटा सेंटरों के विकास के लिए 30 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता है। वहीं 4.5 अरब अमरीकी डॉलर की प्रोजेक्ट सेरेस उर्वरक परियोजना मेक इन इंडिया और मेक इन ऑस्ट्रेलिया के सफल तालमेल का सशक्त उदाहरण है। मेलबर्न से सुहास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं नवीन सक्सेना।
4: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के विभिन्न क्षेत्रों पर संभावित प्रभाव और तैयारियों की समीक्षा के लिए कल उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्र की अध्यक्षता में ये बैठक सेवा तीर्थ में हुई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में 15 से अधिक मंत्रालयों के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
2: डॉक्टर पीके मिश्रा ने कहा कि स्थिति की लगातार निगरानी की जानी चाहिए और संवेदनशील जिलों पर मॉनसून या विलंबित मॉनसून के प्रभाव का आकलन राज्यों के समन्वय से किया जाना चाहिए, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पशु चारे की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भी कदम उठाए जाएं। संवेदनशील जिलों में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता पर भी श्री मिश्रा ने बल दिया। बैठक के दौरान मौसम विभाग के अधिकारियों ने कल तक जून और जुलाई में हुई कुल वर्षा की जानकारी दी। कृषि मंत्रालय के सचिव ने खरीफ मौसम के दौरान अल नीनो के संभावित प्रभाव से निपटने की तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने जिलों में स्थित कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अल नीनो के जोखिमों के प्रबंधन के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं जारी की हैं। संवेदनशील राज्यों में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड कवरेज के लिए अभियान शुरू किए गए हैं और कृषि वित्तीय सेवा और सहकारिता विभागों को समयबद्ध तरीके से अधिकतम लाभ निश्चित करने का सुझाव दिया गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने लू, उच्च आर्द्रता और डेंगू के प्रकोप की निगरानी के लिए सलाह जारी की है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने चावल, गेहूं और दालों के खुदरा मूल्यों और बफर स्टॉक की पर्याप्तता की स्थिति की जानकारी दी। ग्रामीण विकास विभाग ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन के तहत 1 जुलाई से शुरू किए गए कार्यों की जानकारी दी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ बैंक खातों से संबंधित वित्तीय लेनदेन, अवैध रूप से धन संग्रह और संदिग्ध धन के हस्तांतरण के संबंध में कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की है। एक रिपोर्ट।
3: प्रवर्तन निदेशालय की शुरुआती जांच के अनुसार संदिग्ध गतिविधियों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के जरिए से 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया। ईडी ने बताया कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के खातों से निजी विमानन कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई को लगभग 160 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। निजी कंपनी ने 2023 से इस वर्ष के बीच एक अन्य नवगठित संबद्ध इकाई को 82 करोड़ से अधिक का हस्तांतरण भी किया। ईडी ने कहा कि एम्ब्रियर लेगेसी 600 विमान और अगस्ता 109 SP हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए निजी कंपनी की एक संबद्ध इकाई को बड़ी राशि हस्तांतरित की गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन खरीदों के लिए 112 करोड़ रुपए खर्च किए गए। ईडी ने आरोप लगाया कि अगस्ता हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए कुछ विदेशी धन का भी उपयोग किया गया, जबकि अधिकांश धनराशि सीधे तृणमूल कांग्रेस के खातों से प्राप्त की गई। मामले की जांच जारी है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: अमेरिका ने ईरान पर फिर हमले किए हैं। ये हमले होर्मुज जलडमरू मध्य में 3 व्यापारिक जहाजों पर ईरान की कार्रवाई के बाद किए गए। अमेरिका ने कहा कि होर्मुज में ईरान का वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने के बाद ये हमले किए गए हैं।
4: अमेरिका के एक अधिकारी ने बताया कि अमेरिका की सेना ईरान की वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय निगरानी प्रणालियों, मिसाइलों और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों को भी निशाना बना रही है। ईरान में बंदरगाह सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा रहा है। ईरान के उपविदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि अमेरिका के ये ताजा हमले समझौते का उल्लंघन है। अमेरिका ने शत्रुता समाप्त करने के लिए हुए अंतरिम समझौते के तहत ईरानी तेल की बिक्री को अधिकृत करने वाला लाइसेंस भी रद्द कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द किया गया क्योंकि होर्मुज में ईरान की कार्यवाही अस्वीकार थी। ईरान के विदेश मंत्रालय ने लाइसेंस रद्द करने के अमेरिका के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह अंतरिम समझौते का उल्लंघन है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अतिरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सके। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। अंतिम 16 के एक अन्य मैच में अर्जेंटीना ने मिस्र को 3-2 से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में पहुंचने की संभावना व्यक्त की है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के तराईवाली क्षेत्रों, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंडोनेशिया की संसद में संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता के अनुसार विकास का मार्ग अपनाता है भारत, विस्तारवाद का नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इंडोनेशिया के तर्कश में सजेंगे भारत के अस्त्र, ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें खरीदने का समझौता हुआ। देशबंधु के अनुसार मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। हिंदुस्तान ने साख का सवाल शीर्षक से संपादकीय में दिया है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्र की विदाई देर से ही सही, पर एक दुरुस्त फैसला है। जो घटित हो चुका है उसका फैसला अब कानून और अदालत को करना है, मगर जो आगत है उसे निष्कलुष रखने का दायित्व ट्रस्ट के कंधों पर ही रहेगा। दैनिक जागरण का शीर्षक है, अहमदाबाद सिलसिलेवार बम धमाकों के 38 दोषियों की मौत की सजा बरकरार, गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष कोर्ट का फैसला सही ठहराया, उम्र कैद पाए दोषियों को भी राहत नहीं। पंजाब केसरी के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह ने किया 70 लाख पौधारोपण का आगाज, दिल्ली बनेगी और हरी भरी, 300 इलेक्ट्रिक बसों को दिखाई हरी झंडी, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गृह मंत्री ने किया दिल्ली रिज के पुनर्जीवन का शुभारंभ। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, क्रायोजेनिक इंजन का इसरो ने सफल परीक्षण किया, गगनयान में भी होगा इस्तेमाल। परीक्षण का उद्देश्य इंजन की उड़ान के लिए पूरी तरह तैयारी का पता लगाना था। अमर उजाला की सुर्खी है, भारी बारिश, दिल्ली जयपुर हाईवे पर सड़क धंसी, 12 किलोमीटर तक लंबा जाम, दोपहर 11:30 बजे 47.5 डिग्री जैसी तपिश, आसमान से राहत बरसते ही शिमला की तरह सुहानी होती गई दिल्ली की शाम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और इंडोनेशिया ने आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की, इस खतरे से निपटने के लिए निर्णायक और समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अल नीनो के प्रभाव की समीक्षा की, केंद्रीय मंत्रालयों से राज्यों के साथ मिलकर काम करने को कहा, और फीफा फुटबॉल विश्व कप में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals of FIFA World Cup. India and Indonesia have strongly condemned terrorism in all its forms and called for decisive, coordinated international efforts to combat the threat in accordance with international law. In a joint statement issued after bilateral talks between Prime Minister Narendra Modi and Indonesian President Prabowo Subianto in Jakarta, the two leaders urged action against globally proscribed terrorist and terrorist organizations, including those designated under the UN Security Council's 1267 Sanctions Committee. We have more from a correspondent.
7: The two leaders agreed to deepen cooperation in preventing and countering terrorism and violent extremism conducive to terrorism. The cooperation will include measures to curb terror financing, strengthen implementation of internationally agreed anti-money laundering, and countering the financing of terrorism standards, prevent the misuse of emerging technologies by terrorist groups, and tackle online radicalization and recruitment through digital platforms. Reaffirming a zero-tolerance approach to terrorism, the two sides pledged to continue disrupting terror financing networks and enhance bilateral and multilateral cooperation, including through the United Nations and the Financial Action Task Force, FATF. Recognizing the links between terrorism and transnational organized crime, India and Indonesia agreed to strengthen information sharing and exchange of best practices in line with their domestic laws and international obligations. They also welcomed the early conclusion of Memorandum of Understanding on Counter-Terrorism Cooperation, which is expected to be signed soon. The two countries welcome the planned third India-Indonesia Security Dialogue as a platform to expand cooperation in counter-terrorism, transnational crime, cyber-security, emerging technologies, defense industry, maritime security and space. Both leaders also agreed to explore greater cooperation in the cyber domain through policy dialogue, capacity building and exchange of expertise and best practices. Shundipan Dashgupta, Akashvani News, Jakarta.
6: Prime Minister Narendra Modi has become the first Indian Prime Minister to address the Parliament of Indonesia. Addressing Indonesian lawmakers in Jakarta, Mr. Modi called for a new era in bilateral relations anchored in shared civilizational heritage, democratic values and a common vision for the future. Describing India as a mother of democracy, the Prime Minister said New Delhi is committed to strengthening democratic linkages with Indonesia.
8: भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और इंडोनेशिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है भारत में सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं तो इंडोनेशिया में भी सैकड़ों भाषाएं और अनेक परंपराएं हैं भारत में वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र है तो इंडोनेशिया में भिन्ने का तुंगल इक्का का विचार
6: The Prime Minister noted that shared historical experiences, common developmental challenges and the aspirations of the people have brought India and Indonesia closer as strategic partners. Highlighting India's development journey and the synergies between the vision of Viksit Bharat 2047 and Golden Indonesia 2045, Indonesia Emas 2045, PM Modi called for deeper collaboration in trade, investment, connectivity, food and energy security. Digital public infrastructure and emerging technologies.
8: यहाँ इंडोनेशिया में आप एमास 2045 के महत्वाकांक्षी विजन पर चल रहे हैं और भारत में हम विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं अपने इन लक्ष्यों को हासिल करने में हम एक दूसरे के पूरक बन सकते हैं हम दुनिया की सबसे यूथफुल सोसाइटीज हैं हम दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ रही बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हैं हम दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स हैं हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है
6: Prime Minister Modi will visit the iconic Prambanan Temple in Yogyakarta along with Indonesian President today. The visit underscores the deep cultural and civilizational ties that have connected India and Indonesia for over 1,000 years. Built in the 9th century, Prambanan is Indonesia's largest Hindu temple complex and one of Southeast Asia's finest architectural masterpieces. Originally comprising 240 large and small temples dedicated to Brahma, Vishnu and Shiva, the complex stands as a remarkable testament to the spread of Indian cultural influence across the region. Its magnificent stone reliefs depict scenes from the Ramayana, reflecting how Indian epics crossed the seas and became an integral part of Javanese culture. In the second leg of his three-nation tour, Prime Minister Modi will reach Melbourne today on a three-day visit where he will participate in the third India-Australia annual summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. Mr. Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum where he will address a gathering of top business leaders from both countries. He will also address a large gathering of the Indian diaspora and constitute a strong pillar of the India-Australia relationship. Our correspondent has filed this report.
9: The bilateral discussions between Prime Minister Modi and his Australian counterpart, Anthony Albanese, are set to advance cooperation across several key domains. The economic engine of this relationship is accelerating at an unprecedented pace, with two-way trades in goods and services already crossing $33 billion in 2025. The ambition to reach $100 billion by 2030 is now a tangible objective. The India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement, providing duty-free access for all Indian exports since January 2026, has catalyzed massive capital flows. Beyond traditional trade, the partnership is now defined by digital-first investments, such as Airtrunk's $30 billion commitment to AI-ready data centers in India. Simultaneously, the $4.5 billion Project Ceres fertilizer plant exemplifies Make in India, Make in Australia synergy, with Indian industrial expertise providing the modular backbone for Australian production. Defense and security cooperation has rapidly evolved into a primary pillar of the partnership. Following the second defense ministers dialogue in New Delhi on June 1st of 2026, the two nations continue to deepen industrial integration and maritime security. Suhas Ram, Akashwani News, Melbourne, Australia.
10: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The Prime Minister's Office, PMO, held a high-level review meeting to review possible impact of El Nino on various sectors and preparedness measures. The meeting was held under the chairmanship of Principal Secretary to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra, at the Seva Tirth yesterday. Secretaries and senior officials of more than 15 ministries were present at the meeting. Dr. Mishra directed that the overall situation should be continuously monitored and the impact of the monsoon or delayed monsoon on vulnerable districts must be assessed in coordination with states so that remedial action can be taken up when necessary. He emphasized that ensuring adequate availability of drinking water in vulnerable districts must be a top priority and directed optimal reservoir water utilization and judicious use of available water. We have more from a correspondent.
11: During the meeting, officials of the India Meteorological Department presented the overall rainfall situation in June and July. The Director General of the Met Department updated on the status of monsoon coverage in the country and the possible impact of El Nino. He informed that weak to moderate El Nino is expected in July and August. Secretary Agriculture made a detailed presentation on the preparedness for possible impact of El Nino during the Kharif season. He underlined that weekly meetings of Crop Weather Watch Group along with states are being convened to enable timely decision-making and contingency response. He noted that district agriculture contingency plans have been updated for 262 vulnerable districts and campaigns for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana and Kisan Credit Card coverage in vulnerable states have also been initiated. During the meeting, the Department of Animal Husbandry and Dairying was asked to assess the availability of dry fodder, green fodder and cattle feed at both macro and micro level. Department of Drinking Water and Sanitation informed that they are continuously monitoring and the situation as on date is stable. With Anupam Mishra, Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
10: The Enforcement Directorate, ED, has conducted searches at five premises in and around Kolkata in connection with alleged dishonest financial dealings, unlawful collection of money and routing of suspected funds through certain bank accounts of the All India Trinamool Congress, AITC. The searches were carried out at the premises linked to the private firm Carewell Group of companies operating in the aviation sector, its directors and one purported electoral trust. According to the ED's preliminary investigation, more than 150 crore rupees were routed through aviation and travel companies for suspicious purposes. The US military has launched new strikes against Iran hours after three merchant ships were struck in the Strait of Hormuz. In a statement, US Central Command said that American forces have launched strikes to impose heavy costs for targeting and attacking commercial shipping crewed by innocent civilians in an international waterway. Iran's Deputy Foreign Minister Kazem Garibabadi said that the new attacks by the US are a violation of the agreement. Moreover, the United States has also revoked a license that had authorized the sale of Iranian oil as part of the interim deal to end the fighting between the two countries. On to sports and football, Argentina and Switzerland have stormed into the quarterfinals of the FIFA World Cup we have a report. Switzerland defeated Colombia 4-3 in the penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. Colombia faltered when Davinson Sanchez smashed his spot kick against the bar and Cucho Hernandez had his effort saved by goalkeeper Gregor Kobel before Ruben Vargas scored to book a quarterfinal date with holders Argentina. The two sides were tied after extra time with no goals. In another round of 16 match, Argentina defeated Egypt 3-2 in Atlanta. Argentina was trailing by 2 goals till 78th minute when the defending champions pulled off a stunning comeback with Cristiano Romero scoring the first goal at 79 minutes. The equalizer came through Messi in 83 minutes while Enzo Fernandez completed the turnaround with the winner in the extra time. Chirag Jha from Sports Desk.
12: In men's cricket, England defeated India by 125 runs in the third T20 International at Trent Bridge in Nottingham last night, chasing a target of 202 runs set by England. India lost wickets in quick succession and were all out with a paltry score of 76 in 11.4 overs. For England, Josh Tung took four wickets, while Jofra Archer scalped three. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun.
3: Thank you, Abhishek. The wide-ranging talks in Jakarta between PM Modi and Indonesian President Prabowo Subianto is noticed prominently by the dailies Brahmos, Astra, EVMs in focus as India-Indonesia Inc. 14 packs headlines the Tribune. Dinan Express in an editorial piece writes the end of football's superpower dump. The paper elaborates, world football's beloved giant Brazil is sinking in a World Cup where tiny nations like Cape Verde and Curaçao showed that they even can compete, and where Germany and Holland went home early while Italy were a no-show. And finally, Ernest Hemingway's novel, The Sun Also Rises on Bull Runs Turn 100. Well, Dean and Express writes that Nobel laureates work places Spanish city Pamplona on the map for millions of people. And with that, it's back to you, Abhishek.
12: Thank you, Shagun. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India and Indonesia strongly condemn terrorism in all its forms and call for decisive and coordinated international efforts to combat this menace. Prime Minister Narendra Modi becomes the first Indian Prime Minister to address Indonesian Parliament, calls for deeper strategic partnership between the two countries. Prime Minister's office reviews El Nino impact, asks central ministries to work with states on preparedness measures. ED conducts searches at multiple locations in Kolkata in connection with financial irregularities involving bank accounts linked to Trinamool Congress. US launches strikes against Iran after attacks on vessels in Strait of Hormuz, also revokes its sanctions relief on Iranian oil. And in football, Argentina and Switzerland enter quarterfinals.

0: दोनों मेजर मैरिटाइम पावर्स है, हम ग्लोबल साउथ की मजबूत आवाज है।
1: वजीराजम मोदी आज इंडोनेशिया के सदर के साथ योग्यकर्ता में मशहूर प्रम्बलन मंदिर के दर्शन करेंगे। उनके इस दौरे से गहरे सकाफती और तहजीबी रिश्तों की अहमियत का इजहार होता है, जिनकी वजह से भारत और इंडोनेशिया 1000 साल से ज्यादा अरसे से एक दूसरे से वाबस्ता हैं। प्रम्बलन 9वीं सदी में तामीर किया गया था और ये इंडोनेशिया का हिंदू मंदिर का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स है, जो जुनूब मशरकी एशिया के बेहतरीन तामीराती शाहकारों में शामिल होता है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कल जकार्ता में भारतीय बिरादरी की तरफ से दिए गए एक इस्तकबालिया में शिरकत की। खुसूसी इशारे के तौर पर इंडोनेशिया के सदर जनाब सुबियांतो ने भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी के साथ इस तकरीब में शिरकत की। इज्तिमा से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने भारत में हालिया बरसों में काबिले जिक्र तरक्की को उजागर किया। भारत ने ये तरक्की अगले दौर के बुनियादी ढांचे की तरक्की से लेकर स्टार्टअप इनकलाब तक की है और सामाजिक तरक्की के प्रोग्रामों में खातिरखा तौसी भी की है, जिससे 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आ सके हैं।
0: बीते 12 साल में 50 लाख करोड़ रुपए डायरेक्ट लोगों के बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। जब ऐसी व्यवस्था बनती है तब लोगों का भरोसा बढ़ता है, तब लोगों में आत्मविश्वास आता है और तब 25 करोड़ भारतीय गरीबी को हरा करके, गरीबी को परास्त करके, गरीबी से बाहर निकल करके शांत से जिंदगी जीने आरंभ करते।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी तीन मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में ऑस्ट्रेलिया के 3 दिन के दौरे पर मेलबर्न पहुंचने वाले हैं। जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के अपने हमनसब एंथनी एल्बनीज के साथ तीसरी सालाना सरबराह मीटिंग में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया CEO फोरम में भी शिरकत करेंगे, जहाँ वो दोनों मुल्कों के सरकर्दा कारोबारी रहनुमाओं से खिताब करेंगे। जनाब मोदी भारतीय बिरादरी के लोगों के एक बड़े जलसे से भी खिताब करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: दोनों वज़ीर-ए-आज़म के दरमियान बाहमी बातचीत से कई अहम शोबों में इश्तराक को फरोग हासिल होगा। दोनों के ताल्लुकात में इक्तिसादी सरगर्मियां तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं, जिसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। अशिया और खिदमात के शोबे में दोतरफा तिजारत 2025 में पहले ही $33 अरब से तजावुज कर गई है और अब 2030 तक इसे $1 खरब तक पहुंचाने का निशाना रखा गया है। दिफाई और सिक्योरिटी इश्तराक तेजी के साथ साझेदारी के एक अहम सुतून के तौर पर उभरा है। गुज़श्ता महीने नई दिल्ली में वज़राए दिफा के दूसरे मुज़ाकरात के तनाजुर में दोनों मुल्क सनती इश्तराक और बहरी सिक्योरिटी को मजीद मुस्तहकम बना रहे हैं। मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर PMO ने मुख्तलिफ शोबों पर एलनीनो के मुमकिना असरात और तैयारी से मुतालिक इकदामात का जायजा लेने के लिए आला सतह की जायजा मीटिंग मुनाकिद की। वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर PK मिश्रा की सदारत में ये मीटिंग सेवा तीर्थ में हुई। इस मीटिंग में 15 से ज्यादा वजारतों के सेक्रेटरीज और आला अहदेदार मौजूद थे। तफसील हमारे नामनिगार से।
3: इस मीटिंग में डॉक्टर मिश्रा ने यह हिदायत दी कि मजमूई सूरतेहाल पर लगातार नजर रखी जाए और रियासतों के साथ तालमेल कायम करके जल्द मुतासिर होने वाले जिलों पर मानसून या ताखीर से पहुंचने वाले मानसून के असरात का जायजा लिया जाए ताकि जरूरत पेश आने पर जरूरी इकदामात किए जा सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन जिलों में पीने के पानी की मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने दस्तियाब पानी का इस्तेमाल मुनासिब अंदाज से किए जाने की जरूरत उजागर की। इधर भारतीय मौसमियात महकमे के अफसरों ने जून और जुलाई में बारिश की मजमूई सूरत हाल का खाका पेश किया। पीने के पानी और सफाई सुथराई के महकमे ने बताया कि वो लगातार नजर रखे हुए हैं और फिलहाल सूरत हाल मुस्तहकम है। दिल्ली से प्रिया वंडाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
1: एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कोलकाता और उसके अतराफ 5 ठिकानों पर तलाशी की कार्रवाई की है। ये कार्रवाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के बाज बैंक खातों के जरिए मुश्तबा रकूम की मुंतकली गैर कानूनी तरीके से रकम इकट्ठा करने और मुबैना गैर कानूनी माली लेन देन के सिलसिले में की गई है। तलाशी की यह कार्रवाई एविएशन के शोबे में काम करने वाली प्राइवेट फर्म केयरवेल ग्रुप और उसके डायरेक्टर्स और एक मुबैना इलेक्टोरल ट्रस्ट से वाबस्ता ठिकानों पर की गई। ईडी की इब्तदाई छानबीन के मुताबिक 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मशकूक

0: मकासद के लिए एविएशन और ट्रैवल कंपनियों के तवस्सुत से मुंतकिल की गई। एजेंसी ने इंकशाफ किया है कि अप्रैल 2023 और इस साल जून के दरमियान तृणमूल कांग्रेस के खातों से तकरीबन 160 करोड़ रुपए प्राइवेट एविएशन फर्म और उससे वाबस्ता इदारे को मुंतकिल किए गए। अमरीकी फौज ने ईरान पर ताजा हमले किए हैं। ये हमले आबनाए हुरमुज में तीन तजारती जहाजों पर हमले के कुछ ही घंटे बाद किए गए हैं। अमेरिका की मरकजी कमान ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा है कि अमेरिकी फौजों ने यह हमले एक बैन अलावी गुजरगाह में कमर्शियल जहाजों पर हमले करने के का सख्त बदला लेने के लिए किए हैं जिनमें बेकसूर शहरी सवार थे। इधर ईरान के सरकारी मीडिया ने भी किशम और बंदरगाह और बंदर अब्बास में इन धमाकों की इत्तला दी है। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरीब आबादी ने कहा कि अमरीका की तरफ से ये ताजा हमले माहदे की खिलाफ वर्जी है। अमरीका ने एक लाइसेंस को भी मंसूख कर दिया है जिसके तहत अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई को खत्म करने से मुतालिक एक अबूरी समझौते के हिस्से के तौर पर ईरान के तेल की फरोख्त की इजाजत दी गई थी। अमरीका के अफसर ने बताया कि यह लाइसेंस इसलिए मंसूख किया गया है कि आबनाए हुरमुज में ईरान की कार्रवाई नाकाबिले कबूल है और जरूरत है कि ईरान इसका नतीजा भुगते। फुटबॉल में स्विट्जरलैंड वंकूवर में पेनल्टी शूट आउट में कोलंबिया को 3-4 से हराकर 1954 के बाद से पहली मर्तबा फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचा है। इजाफी वक्त के बाद भी दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी थी। इधर प्री क्वार्टर फाइनल के एक और मैच में एटलांटा में अर्जेंटीना ने मिस्र को 2-3 से हरा दिया। अर्जेंटीना 78वें मिनट तक 2 से पीछे चल रहा था। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना की तरफ से क्रिस्टियानो रोमारो ने 79वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद 83वें मिनट में मेसी ने गोल करके स्कोर 2-2 से बराबर कर दिया और एंजो फर्नांडेज ने इजाफी वक्त में फैसलाकुन गोल करके अर्जेंटीना की जीत की राह हमवार कर दी। मर्दों की क्रिकेट में नॉटिंगम में ट्रेंट ब्रिज के मकाम पर कल रात तीसरे T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 125 रन से हरा दिया। इस तरह इंग्लैंड ने 5 की सीरीज में 2-0 की सबकत हासिल कर ली है। इंग्लैंड ने भारत के सामने 202 रन का निशान रखा था लेकिन भारत की पूरी टीम 11 ओवर्स और चार गेंदों में सिर्फ 76 रन बनाकर आउट हो गई। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं कोनैन हैदर।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे से मुतालिक खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, भारत इंडोनेशिया में शराकतदारी के सुनहरे बाब का आगाज। वजीर आजम मोदी को इंडोनेशिया के आला तरीन शहरी एजाज से नवाजे जाने की खबर को भी अखबारात ने पहले सफे पर पेश किया है। माहौलियाती तहफ़ के बगैर तरक्की सरासर बेमाना है, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को इनकलाब और दीगर अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने केरलम के वायनाड में बड़े पैमाने पर चट्टान खिसकने के वाकई में कम से कम 3 अफराद के हलाक और मुतादे के जख्मी होने की खबर को अपने पहले सफे पर शाये किया है। इसके अलावा आज के अखबारात की चंद बैन अलावी खबरों की सुर्खियां इस तरह हैं, धमकियां जारी रही तो हतमी मुआहदे पर मुजाकिरात शुरू नहीं होंगे, ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराग़ची का बयान, अमरीका का तुर्किया पर आई पाबंदियां खत्म करने का ऐलान।
0: और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत और इंडोनेशिया ने हर तरह की दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत की है और इस लानत से निपटने के लिए तालमेल के साथ फैसलाकुन बैन अलावी कोशिशों की जरूरत उजागर की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की पार्लियामेंट से खिताब करने वाले पहले भारतीय वजीर आजम बन गए हैं। जनाब मोदी ने दोनों मुल्कों के दरमियान और ज्यादा मजबूत कलीदी साझेदारी पर जोर दिया है। वजीर आजम के दफ्तर ने अलनीनो के असरात का जायजा लिया है और मरकजी वजारतों से कहा है कि वो तैयारी के इकदाम पर रियासतों के साथ मिलकर काम करें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने तृणमूल कांग्रेस से वाबस्ता बैंक खातों में माली बेजाब्तगियों के सिलसिले में कोलकाता में कई मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। अमरीका ने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों पर हमलों के बाद ईरान के खिलाफ हमले किए हैं और ईरान के तेल पर अपनी पाबंदियों में नरमी को मनसूख कर दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 8:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। पेश है कार्यक्रम का ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म राम तेरी गंगा मैली से। गायक स्वर हैं लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के। श्रोताओं, पहाड़ों की सुंदरता प्रकृति की एक अद्भुत और मनमोहक रचना है। गगनचुंबी पर फैली चोटियां, कलकल करते झरने, हरी भरी घाटियां और शांत वातावरण मिलकर एक ऐसा दृश्य बनाते हैं जो आंखों को सुकून और मन को अनंत शांति प्रदान करते हैं।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स। आइए अब सुनते हैं फिल्म हे रांझा का एक गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने और गीत को लिखा है कैफी आजमी ने और संगीत है मदन मोहन का। श्रोताओं, इश्क, अत्यधिक प्रेम या जुनून, किसी के प्रति दीवानगी, यह है इश्क। यह सामान्य प्यार का ही एक बहुत गहरा, तीव्र और निस्वार्थ रूप है, जिसमें पाने की चाहत से ज्यादा समर्पण की भावना होती है।

क्रांति, ये है फिल्म का नाम। स्वर है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश के। शब्द रचना संतोष आनंद की है। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, प्रेम की सबसे अद्भुत बात है, बल्कि एक खूबसूरती है कि ये बातों में एक यह है कि समय के साथ साथ रहता है और मानव जीवन का एक गहरा हिस्सा बना है। प्रेम का हर अनुभव सुंदर और व्यक्तिगत विशेष के लिए अनोखा होता है, लेकिन भावनाएं सार्वभौमिक होती हैं।

आइए अब सुनते हैं शैलेंद्र सिंह को फिल्म बॉबी में। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और शब्द रचना आनंद बख्शी की है। प्यार एक ऐसा एहसास है जो इंसान को पूरी तरह बदल देता है। प्रेम में लोग अपने सुख दुख को भूलकर अपने

साथी की खुशी के लिए कवि, शायर, रसोइया, सलाहकार, यहाँ तक कि मददगार बनते हैं। यह भावना इंसान के भीतर छुपी रचनात्मक और परवाह को बाहर लाती है। यही है प्रेम।

कार्यक्रम के अंत में पेश है फिल्म मोहरा का गीत, जिसे आवाज दी है पंकज उधास और साधना सरगम ने। गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत दिया है विजू शाह ने।

0: पंकज उदास और साधना सरगम के गाए इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गोल्डन हिट्स अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ही नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 9:15 हो रहे हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे कानपुर नगर और मैनपुरी जिले की हलचल। कानपुर नगर और मैनपुरी जिलों की हलचल।
1: जिले की हलचल आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कानपुर नगर और मैनपुरी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कानपुर नगर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजेश श्रीवास्तव का।
2: चेतक कानपुर नगर में पिछले दिनों प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया, जिसका लाइव प्रसारण कानपुर नगर के HBTU ऑडिटोरियम नवाबगंज में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के साथ सांसद अकबरपुर देवेंद्र सिंह बोले मौजूद रहे। गौरतलब है कि योजना के माध्यम से प्रथम बार नियोजित कर्मचारियों एवं अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है, जिससे विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सहायता मिलेगी। इस दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए आभार जताया।
3: ये जो हमें भारत सरकार की वजह से पैसे मिले हैं PMVBRY की वजह से, इससे हमें बहुत ज्यादा खुशी है और मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ और मैं मोदी सरकार को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ।
2: जनपद कानपुर नगर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय CSA के लाल बहादुर शास्त्री कृषक सभागार में पिछले दिनों एक दिवसीय मंडल स्तरीय पोल्ट्री कॉन्क्लेव 2026 कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश कुमार सचान ने किया। कॉन्क्लेव में पहली बार पोल्ट्री उद्योग से जुड़े अग्रणी उद्यमियों, विशेषज्ञों एवं प्रमुख फार्मा कंपनी के प्रतिनिधियों, किसानों और पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ तकनीकी संवाद किया गया। इस दौरान आधुनिक कुक्कुट पालन उत्पादन विविध तथा उद्योग की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस दौरान पशुपालन विभाग के विशेषज्ञों, पोल्ट्री उद्योग के प्रतिनिधियों एवं फार्मा कंपनियों के विशेषज्ञों ने मुर्गियों में होने वाले प्रमुख रोगों की रोकथाम, उन्नत दवाओं एवं टीकों का उपयोग, गुणवत्ता पूर्वक फीड सप्लीमेंट तथा आधुनिक प्रबंधन तकनीक पर विस्तृत जानकारी दिया, जिससे किसान वैज्ञानिक पद्धतियों द्वारा कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने पोल्ट्री कॉन्क्लेव को आवश्यक बताते हुए कहा,
4: पोल्ट्री उद्योग बढ़ाने की जरूरत है, इससे ज्यादा लोगों को जोड़ने की जरूरत है। जितनी डिमांड है उतना उत्पादन हमारे यहाँ नहीं है। प्रचार प्रसार करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ करके, ताकि लोगों को रोजगार भी मिलेगा और जो आवश्यकता के अनुरूप डिमांड है आपूर्ति पर आत्मनिर्भर बनने का काम।
2: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग सूर्य प्रताप शाही ने चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण कर कृषि कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि भारत सरकार की मंशा के अनुरूप विकसित कृषि और खेती को लेकर देश में धरती बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। रासायनिक फर्टिलाइजर का कम प्रयोग किए जाने और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, गोमूत्र और कंपोस्ट खाद, बायो फर्टिलाइजर के उपयोग करने और हरी खाद खेतों में लगाने और दलहन तथा तिलहन की खेती करने के लिए किसानों को योजनाओं के तहत प्रोत्साहित किया जा रहा है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा,
5: इस साल सुपर एलिनो के प्रभाव की वजह से वर्षा की कम संभावना है, इसलिए उन क्षेत्रों में जहां पर बरसात कम होती है या नहरों के साधन नहीं है, वहां पर दलहन और तिलहन की खेती को ही करना श्रेयस्कर होगा। हम लोग लगभग 5,00,000 मिनी के विभिन्न जनपदों के भीतर दलहन और तिलहन के निःशुल्क बीज विभाग के द्वारा वितरित किया जा रहा है, तो उसके लिए अच्छा होगा कि वो अपना बीमा कवरेज भी अपने फसलों का करा लें, तो उससे उनको एक सुरक्षा कवच मिल जाएगी और उनके नुकसान का 25% से लेकर 40% भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से कराई जा सकती है।
2: जनपद कानपुर नगर में पिछले दिनों मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों तथा प्रमुख उपलब्धियों को लेकर सांसद कानपुर रमेश अवस्थी के साथ बीजेपी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने मीडिया संवाद का आयोजन बीजेपी महानगर कार्यालय में किया। इस दौरान सांसद रमेश अवस्थी ने कानपुर में किए गए विकास, जन कल्याण, स्वास्थ्य एवं जनहित कार्यों को साझा किया। पिछले दिनों कानपुर नगर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर का सांसद कानपुर रमेश अवस्थी, विधायक सुरेंद्र मैथानी सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। सांसद अनुराग ठाकुर ने परमठ पार्क में वृक्षारोपण किया और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मीडिया संवाद के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत सहित दुनिया भर के देश युद्ध से प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध से असुरक्षा का वातावरण बना है, अर्थव्यवस्थाओं को बड़ा नुकसान हुआ है और एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर दुनिया भर के देश इससे प्रभावित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले दिन से ही कहा था भारत शांति के पक्ष में है, भारत बुद्ध में विश्वास रखता है, युद्ध में नहीं। अनुराग ठाकुर ने शिप पर हुए हमले पर कहा कि भारत ने संज्ञान लेते हुए अमेरिकी दूतावास से शब्दों में हमले की निंदा की और कहा कि इस तरह के हमले स्वीकार नहीं है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जल्दी भारत सरकार एक प्रोजेक्ट लेकर आ रही है जिससे देश में खेलों का आधारभूत ढांचा सुदृढ़ किया जाएगा। खेलो इंडिया फिट इंडिया को बल दिया जा रहा है। बजट को 800 करोड़ से बढ़ाकर 4000 करोड़ किया गया है।
1: कानपुर नगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मैनपुरी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है नीरज शर्मा का।
6: मैनपुरी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का आयोजन 11 जुलाई को होगा। इस आयोजन में 200 से अधिक जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे। जिला प्रशासन इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए तैयारियों में जुटा है। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने मुख्य विकास अधिकारी नेहा बंधु के साथ निरीक्षण कर श्रीदेवी मेला क्षेत्र को सामूहिक विवाह आयोजन के लिए चुना और मौके पर अधिकारियों को भव्य आयोजन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस समारोह में लगभग 200 से अधिक जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधेंगे, इसलिए कार्यक्रम स्थल पर लगभग 4,000 से 5,000 व्यक्तियों के उपस्थित रहने की संभावना है। संख्या के अनुसार वर्षा को ध्यान में रखकर सभी व्यवस्थाएं कार्यक्रम से पूर्व सुनिश्चित की जाएं। मैनपुरी जिले में आजकल मिशन समाधान चर्चा का विषय है। मिशन समाधान के दौरान जहां हजारों बीघा सरकारी जमीन कब्जा मुक्त हुई, वहीं उन गरीबों के चेहरों पर खुशियां देखने को मिली जिनके जीने का सहारा छीन लिया गया था। कई मामले ऐसे देखने को मिले जहां 48 साल बाद जमीन कब्जा मुक्त हुई और जमीन पर वास्तविक हकदार को कब्जा दिलाया गया। कुरावली ब्लॉक का यह मामला बहुत ही सुर्खियों में रहा। मिशन समाधान के अंतर्गत ही जिलाधिकारी ने तहसील भोगांव के ग्राम उस्मानपुर में लगभग 17 वर्ष पुराने भूमि विवाद का भी मौके पर पहुंचकर निस्तारण कराया। शिकायतकर्ता चेतराम वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने स्वयं करीब 1 घंटा 30 मिनट तक खेत की मेड़ पर खड़े रहकर दोनों पक्षों की मौजूदगी में राजस्व टीम से भूमि की विधिवत पैमाइश कराई। सभी अभिलेखों एवं सीमांकन का परीक्षण कराने के उपरांत मौके पर ही विवाद का समाधान कराया, जिससे वर्षों से चला आ रहा विवाद समाप्त हो गया और शिकायतकर्ता को न्याय मिल सका। मैनपुरी शहर के 20,000 बिजली उपभोक्ताओं का लोड बिजली विभाग द्वारा बढ़ा दिया गया। उपभोक्ताओं को बिजली विभाग द्वारा मैसेज देकर यह सूचना दी गई है। इस संबंध में विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता मुकेश कुमार ने कहा कि उपभोग के अनुसार लोड बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि अगर लोड बढ़ने से किसी उपभोक्ता को शिकायत है तो वह अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, बिजली विभाग उसका समाधान कराएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने जिला विद्यालय यान परिवहन समिति की बैठक में परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कोई भी विद्यालय वाहन बिना फिटनेस के संचालित न हो। सभी विद्यालय वाहनों से सुरक्षा मानकों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित कराया जाए। बच्चों की सुरक्षा से किसी भी स्तर पर खिलवाड़ न हो। उन्होंने जानकारी करने पर पाया कि जनपद के 252 विद्यालयों के नाम 745 वाहन पंजीकृत हैं, जिसमें से 240 वाहनों में फिटनेस परमिट, बीमा, प्रदूषण आदि कमियां हैं, जिस पर उन्होंने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से ऐसे स्कूली वाहनों की फिटनेस सहित अन्य कमियों को दूर कराएं। यदि विभाग में किसी के द्वारा स्कूली बसों के स्वामियों का शोषण किया गया तो दोषियों को चिन्हित कर उसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी अनफिट वाहन छात्रों को लाने ले जाने का कार्य न करे। यदि किसी भी विद्यालय में अनफिट वाहनों के संचालन के कारण कोई दुर्घटना घटित हुई तो संबंधित विद्यालय प्रबंधन की जिम्मेदारी तय कर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। स्कूली वाहनों की फिटनेस के संबंध में जारी निर्देशों पर सुदिति ग्लोबल एकेडमी के निदेशक लव मोहन ने बताया कि स्कूली वाहनों की फिटनेस पर संस्था द्वारा पूरा ध्यान दिया जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा के प्रति सतर्कता बढ़ती जाती है। स्कूल बस की गति के लिए भी नियम निर्धारित है। एआरटीओ सिद्धार्थ यादव ने कहा कि अभियान चलाकर स्कूली वाहनों की चेकिंग की जा रही है। अनफिट पाए जाने वाले वाहनों के स्कूल संचालकों को नोटिस दिए जा रहे हैं। स्कूल संचालकों को बता दिया गया है कि विद्यालय के वाहन में कोई कमी पाए जाने पर स्कूल संचालक जिम्मेदार होंगे।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। प्रातः के 9:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत के कार्यक्रम धरती गाती है के अंतर्गत निर्देश त्यागी के गाय रोहेल खंडी लोकगीत।

0: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
1: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
0: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं निर्देश त्यागी के गाए रुहेल खंडी लोक गीत। कार्यक्रम है धरती गाती है।

0: निर्देश त्यागी के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम धरती गाती है अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। सवेरे के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित कार्यक्रम गीत तुम्हारे। कार्यक्रम गीत तुम्हारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेणु राजपूत
1: और मेरा यानी सुनीता रावत का
0: प्यार भरा नमस्कार
1: जी।
0: स्वागत है श्रोताओं आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। और कार्यक्रम का पहला गीत है श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्म मेला का। ये गीत जिसे आवाज दी है उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल ने और पसंद करता है आप सभी श्रोतागण कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा सिटी दीवान।
1: और ये है बीट शहर से महाराष्ट्र से केशव पटेल प्रकाश पगारिया पराग पगारिया माणिक पगारिया प्रदीप पगारिया सरला प्रकाश परीक्षा कोटेचा।
0: शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा से आफ्ताब अंसारी रियाज अंसारी मोहम्मद कैफ अनवर मास्टर लुबना अंसारी और आलिया अंसारी।
1: और आप हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता नीलम बत्ता नितिन पलक करण गीतू निहारिका और वंश बत्ता।
0: और रिंगनी से इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।
1: और नवापुरा मुरादाबाद से आप हैं बबली अंजन सूरज राजू टिल्लू गीता कश्यप रणवीर कश्यप शरद पायल बेबी राधिका।
0: सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा माया देवी वर्मा राहुल कुमार वर्मा विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा।
1: जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर से आप हैं मुकेश कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य और सोनी।
0: सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया रीटा भाटिया रजत भाटिया मंजू भाटिया और मयंक भाटिया।
1: और आप हैं दंतरेगी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।
0: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं नसीब रेडियो श्रोता संघ नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर अब्दुल हक डावर और जियाउल हक डावर।
1: मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से आप हैं विमल वर्मा विनय वर्मा और इनके मम्मी पापा।
0: इसी गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी शन्नो साबरी मुदस्सिर साबरी मुजस्सिर साबरी और जरीफ साबरी।
1: भाटापारा से आप हैं सोहन जोशी अर्चना जोशी पायल जोशी और अंकिता जोशी।
0: माल्यान सरधना मेरठ अनिल जैन जैन साहब संयम जैन मुस्कान जैन मास्टर जेवीएम जैन और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: तो रेनू सुनवाए इनको अपने श्रोताओं को गाना।
0: जी दीदी बिल्कुल। और सुनते हैं फिल्म मेला का ये गीत।
1: जी बिल्कुल।

0: कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म बाजीगर से, स्वर है विनोद राठौर के और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं
1: जी
0: दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा।
1: और आप हैं गांधी पार्क मनुपुरा से, मनुपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से, मनोज नामदेव, मयंक नामदेव, राहुल नामदेव, खुशबू नामदेव और ममता नामदेव।
0: इसी गीत को सुनना चाहते हैं नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, गुलनाज हाशमी, सलमा नाज, असद अरहम और मोहम्मद आलम हाशमी।
1: जी और ये पत्र हमें भेजा है मोहल्ला अफगानान शेरकुर से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, अजहर अहमद, अफसारुल हक और इनके सभी परिवार के सभी सदस्य।
0: और अगला मैसेज हमें प्राप्त हुआ है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, परवीन रोजी, परवीन बिट्टू भैया, साजदारानी और हीना कौसर का।
1: जी और ये पत्र हमें भेजा है कमल सिंह कुशवाहा, राजकुमार कुशवाहा, गोलू, कृष्णा, वर्षा, पूनम, मोहिनी और इन्होंने हमें पत्र भेजा है पुरानी छावनी सकतपुर रोड जिला गुना मध्य प्रदेश से।
0: और अगला पत्र हमें मिला है दत्रेगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का।
1: और ये मैसेज हमें किया है श्री गंगानगर से बजरंगलाल शर्मा और कपिल कुमार शर्मा ने।
0: गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, राम राम और इनके भाई राम राम जी।
1: जी बिल्कुल। दौलतबाग मुरादाबाद से आप हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी।
0: और चकला बाजार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, पप्पू महक खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, हसमुख लाल जिंदल, बुलबुल शक्ति खुशदिल, संजीव बंटी और इनका पूरा खुशदिल परिवार।
1: जी बिल्कुल। और ये पत्र हमें भेजा है नई बस्ती गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजम बेगम, आरफा नूर, इरम नूर, असद यासीन, मोहम्मद कलीम अंसारी और मोहम्मद उस्मान अंसारी ने।
0: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंधेल, मोरस जंधेल, अनिल चंदेल, अजीत कुमार, आयुष जंधेल और नंदिनी जंधेल।
1: और दंतरेगी से आप हैं भागवत वर्मा और लेवई से आप हैं गुलाब दास।
0: वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला वैत नाम से जयराम सिंगणकर, दीक्षांत सिंगणकर और अर्पिता।
1: आप हैं पोटिला कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक और सीमा साहू।
0: जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद फरहान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून।
1: जी फसील का पंजाब से आप हैं भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, टिवांशी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, दीपा, आशा और जीवन बुक।
0: तो आइए अब सुनते हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्म बाजीगर का एक गीत जिसे आवाज दी है विनोद राठौर ने।
1: जी बिल्कुल।

0: और अब पेश है हमारे श्रोताओं की पसंद पर फिल्म बादल का ये गीत, जिसे स्वर दिया है सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति ने, और पसंद करता श्रोता है कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले और जीविका दले।
1: आप हैं पट्टी मेहर, बड़ौद से रामानंद कश्यप, बिमलेश कश्यप, आर्यन कश्यप, पाली राम भगत, राजेश भगत, आयुष आदित्य और इनके मम्मी पापा।
0: श्री गणेश अविका आर्ट श्री रामपुर से डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका, शानू कुम्भार और अर्चना कुम्भार।
1: आप हैं गांधी समाधि रोड रामपुर से गफ्फार खान, राजिया, रूमा बॉबी और शमा मिक्की।
0: बटिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लकी नारंग, तानिया नारंग और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: श्री गंगानगर से आप हैं हिमांशु शर्मा और हितेश शर्मा।
0: बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शाबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी।
1: मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना पंजाब से आप हैं विनोदपुरी, वीपी रंजू, अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, अनीतापुरी, ममतापुरी, मेघापुरी, पूजापुरी, गगनपुरी, गुंजनपुरी, लालसा कपूर, रामा मलिक, कुणाल मलिक, निधि मलिक, हरीशपुरी, सतीशपुरी, राकेश, विनोद, पाली, डीसीपुरी और अरुणपुरी।
0: फिल्म बादल के इसी गीत को सुनना चाहते हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा और नितिन शर्मा और मयंक शर्मा।
1: और आप हैं मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी से करगेना बरेली उत्तर प्रदेश से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उपबंटी, रूपी भारती, रचना भारती, एकता भारती, कुमारी दिव्या भारती, ममता चौधरी, श्रीमती उमवती भारती, बेटी खनक, नकुल लैंसी और सारांश।
0: साउथ एक्सटेंशन नवी दिल्ली से गुरमीत सिंह, मीता और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: मलॉट कैंप पंजाब से आप हैं सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल मिगलानी, अनमोल, धर्मपाल और रमेश मिगलानी।
0: शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, सायरा सपकाल और विशाल सपकाल।
1: पटेल नगर मलॉट से आप हैं पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और बेबी आरजू जाजोरिया।
0: गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा।
1: ये मैसेज हमें भेजा है सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज से पवन गौड़, कुसुम गौड़, सुयश, आशीष और राधिका गौड़ ने।
0: इसी गीत को सुनना चाहते हैं शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार।
1: मोहल्ला थाना 3 रामपुर से आप हैं इकराम अली प्रेमी, फैजान अली प्रेमी, एहसान अली प्रेमी, शहनाज गुलनाज, रूमा गुड्डू, अप्पी साहब, भैया जहीर और आसिफ भाई।
0: गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता।
1: कृष्णा पार्क से आप हैं सुखविंदर सिंह जौड़ा, सीटी दीवाना और पिंटू दीवाना।
0: तो अब हम सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को फिल्म बादल कहेगी, जिसे आवाज दी है सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति।
1: जी बिल्कुल रेनू।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत तुम्हारे, और आइए अब सुनते हैं फिल्म नगीना का एक गीत जिसे आवाज दी है मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल ने। तो अब देखते हैं हमारे पास जो नया पत्र है ये किसका है?
2: जी रेनू, ये पहला पत्र जो हम इस समय पढ़ रहे हैं इस गीत का, वो है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मास्टर मनीष का।
1: और ये व्हाट्सएप मैसेज हमें प्राप्त हुआ है रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार का।
2: जी
1: ये हमें फरमाइश करते हैं महाराष्ट्र से इसी गीत को सुनने की।
2: जी और रेनू, ये अगला पत्र हमें भेजा है महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से, राजेश कुमार धनजय, राहुल कुमार धनजय, विशाल कुमार धनजय, शीला धनजय, गायत्री धनजय, खुर्दी रोड मानपुर से आप हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद।
1: दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया जिला गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल।
2: छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से आप हैं चंतुलाल सिंगरौल, नारायणी सिंगरौल, नोमेश सिंगरौल, नेहा सिंगरौल और वान्या सिंगरौल।
1: मेन रोड तलहारा से प्रकाश पोहारकर, नर्मदा पोहारकर और कुमारी सुजाता पोहारकर।
2: करुला मुरादाबाद से आप हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शोएब खान और नावेद खान।
1: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांद गांव छत्तीसगढ़ से बबलू शाह, जामुन देवी शाह, प्रेम पूजा, दुष्यंत।

0: शेंडे, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभा गुनाने।
1: और आप हैं ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, कुमारी संगीता, कुमारी सरिता साहू, नेत राम और भूपेंद्र साहू।
0: और ये अगला मैसेज हमें मिला है विशाल प्रिया, पूनम गगनेजा और सुरेश गगनेजा का। ये हमें मैसेज भेजते हैं जलालाबाद वेस्ट से
1: जी। और ये हमें पत्र भेजा है आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा ने।
0: ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, मुन्ना भाई, निशा परवीन, तमन्ना और आशिक हुसैन अंसारी
1: जी। और ये पत्र हमें भेजा है ग्राम जुझैला थाना शिवाला कला बिजनौर से राशिद अंसारी, परवीन शाह उर्फ गोड़िया अंसारी, निशात आयशा आलिया अंसारी और मोहम्मद अफ़ान ने।
0: अगला मैसेज हमारी स्क्रीन पर है उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश का।
1: और ये पत्र हमें भेजा है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, कालका से शुभ चंद्र बजाज और करनाल से आप हैं जग्गी दुआ।
0: मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूभाई वर्मा, अतुल वर्मा, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा।
1: दंतरेगी छत्तीसगढ़ से आप हैं भागवत वर्मा और गुलाब दास।
0: तो अब हम इन्हें सुनाते हैं इनकी फरमाइश का एक गीत जिसे हमने लिया है फिल्म नगीना से।
1: रेनू, अब हम जो अब श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं और जिन्हें हमारे इस मैसेज करने के लिए जो है नंबर नहीं पता है, उनको हम क्यों ना अपना नंबर बता देते हैं। तो श्रोताओं, हमें हाँ गाने सुनने के लिए आप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9457078288। एक बार पुनः सुन लीजिए 9457078288। अब रेनू चलिए गाना बजाते
0: हैं, श्रोताओं की फरमाइश पर ये गीत।
1: जी बिल्कुल।

0: कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म सुर से, जिसे आवाज दी है लक्की अली ने, और सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, तन्वी, मानवी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह।
1: और आप हैं अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, बेबी गव्या, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा और एस के पाठक।
0: सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोड़ाना।
1: इस्लामपुरा सनावत से आप हैं मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, रमेश कौर और मोहम्मद शादाब खत्री।
0: गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनके परिवार के सभी सदस्य हैं।
1: और आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा।
0: तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुहारुद्दीन, फैजान लल्ला और फरान लल्ला।
1: परीमहल कासगंज से आप हैं आबाद खान, गजाला खान, आरफा आफरीन, इल्मा नबील, असलफ सैफी और इनके परिवार के अन्य सदस्य।
0: ऑरेंज सिटी नागपुर से विठल जाधव, अनुसुईया जाधव और पवन राजे जाधव।
1: छत्तीसगढ़ बाटा पारा दंतरेगी से आप हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा।
0: छत्रपति संभाजी नगर से मंगेश इंगले, संध्या इंगले और स्वराज विराज।
1: रेलवे रोड गंज डुंडवारा से आप हैं मोहम्मद कलीम सकमी, भुवन प्रकाश गौतम, एम फारूक शेख, अब्दुल सत्तार अंसारी।
0: अनारकली बाजार जगराव पंजाब से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक।
1: मोहल्ला सराय रफी चांदपुर से आप हैं काजी परिवार, महशर परवीन, नासिर अहमद, शाहिद अहमद, अनम जहां, फाहत शकील और जावेद अहमद।
0: और अगला पत्र हमें मिला है

0: गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का।
1: अगले गीत के लिए जो ये फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता है, आप हैं गुरु नानक नगर मलौट पंजाब से राजीव सेतिया, रजनी सेतिया, आरती सेतिया और तनीश सेतिया,
0: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश।
1: आप हैं सुंदरखेड़ा राजमाता नगर बुल्लाड़ा महाराष्ट्र, नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार। तो रेनू सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये प्यारा सा गीत फिल्म लकी से।
0: जी।

0: आइए अब सुनते हैं अपने श्रोताओं की फरमाइश पर फिल्म क्योंकि का ये गीत। युगल आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की,
1: और इस गीत को सुनना चाहते हैं हमारे ये श्रोता। ये पत्र हमें भेजा है निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज से आप हैं कल्लू भाई मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम मैकेनिक, मोहम्मद नसीम एडवोकेट।
0: जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी।
1: मोहम्मद इमाम बाड़ा शेरकोट से आप हैं अजीजुल हसन, इनाम अजीज, शादमान अजीज, इमरान अजीज, नौमान अजीज, शाजदा बेगम, इनाया इनाम और सनाया शादमान।
0: तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख।
1: पुराना तालाब डुमराव से आप हैं वलीउल्ला अंसारी, आसमान नाज अंसारी और इनकी प्यारी बिटिया सोनम। सारिमपुर बक्सर से आप हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातमा नाज अंसारी और मोहम्मद समी अंसारी। इंदिरा विहार दिल्ली से आप हैं डब्लू अंसारी, वसीम अकरम और बेबी अंसारी। छटिया पोखरा डुमराव से आप हैं लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। हुसैनपुरा मऊनाथ भंजन से आप हैं निजामुद्दीन अंसारी, इश्तियाक अहमद और जंकी अहमद।
0: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं अनारकली बाजार जगराव से कमल पाठक, सुनील पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये लगता है रिपीट हुआ है मैसेज
1: जी रेनू, हम अपने श्रोताओं से ये बोलना चाहेंगे जिनके नाम जो है बोल चुके हैं और वो अपना जो है मैसेज दोबारा से ना भेजे, क्योंकि जो हमारे श्रोता जो बिल्कुल लाइन पे लगे रहते हैं कि नाम सुनने के लिए तो वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं, फिर टाइम भी थोड़ा वेस्ट होता है। चलिए अगला पत्र ले लेते हैं।
0: पाकुड़ झारखंड से ये मैसेज हमें प्राप्त हुआ है उत्तम नगर भगत और श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव और सत्यमानंद का।
1: हाँ, और आप हैं मोहल्ला अफगानन शेरकुट से नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी, अजीम बाकी, अदीम बाकी, महशर परवीन और अब्दुल गनी।
0: महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से रमेश नाचानी, भारती नाचानी, विनीत नाचानी और मिथिल नाचानी का।
1: जी बिल्कुल, और आप हैं हजरत खान शाह वली कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद शकील सलमानी, मोहम्मद अनस सलमानी, मोहम्मद आमिर सलमानी, नाजिया सलमानी और समस्त सलमानी परिवार के सदस्य।
0: आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे और विजय शुभम, पवन और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: जी पंडित नगला बाईपास मुरादाबाद से आप हैं अख्तर हुसैन, और बेटला सिरसी से आप हैं डॉक्टर महमूद हुसैन, नाजिम अली, बाबू अंसारी और बीबीपुरा से आप हैं मकसूद हुसैन।
0: इसी गीत को सुनना चाहते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू।
1: जी मेन बाजार नेटवर से आप हैं एम जुल्फकार राही, एम मुमताज राही, एम जुनैद राही, अल सबागुल, गुलफिशा रानी और मोहम्मद अयान फरीदी और मोहम्मद कैफ फरीदी।
0: गनगोला दांतागंज जिला बदायूं से इसरत खान, शायरा बेगम, रहूब खान, सावरीन बेगम, शाहबाज खान, सैफ खान और ईशान खान।
1: जी और आप हैं तहसील रोड सरधना से मेहरबान अली अंसारी, अमीना परवीन, इरम अंसारी, सबिया नाज और मोहम्मद आमिर।
0: मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन और मुस्कान जैन।
1: जी और बिलराम गेट कासगंज से आप हैं एम असलम सैफी, जैबुनिशा बेगम, अकरम सैफी, जाहिद सैफी और आबाद खान।
0: डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी, सदानंद मंदूरकर और कुमार गौरव मंदूरकर।
1: जी लच्छनपुर से आप हैं रामजी साहू और जीवन लाल रजक, और पिरदा कोरासी से आप हैं रोहित कुमार साहू, हरीश कुमार, पुष्पलता और राधा साहू।
0: मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान ताइडे, वसंतराव भोजने, निर्वती आडोकर।
1: और गांव लुदेसर से आप हैं पप्पूराम, कुमारी साक्षी, कुमारी आस्था, कुमारी रुचिका।
0: कस्बा उघैती से हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज बजाज, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता और कार्तिक गुप्ता।
1: जी और मसीता डबवाली से आप हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग।
0: और इसी गीत को सुनना चाहते हैं गांव कैरो जिला तरन तारण पंजाब से गुरदर्शन, लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और पोत्रा गुरशबद।
1: जी बिल्कुल, अब रेनू अब सुनवा देते हैं श्रोताओं को ये प्यारा सा गीत।
0: युगल आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की, और फिल्म है क्योंकि।
1: जी बिल्कुल।

श्रोता, इसी गीत के साथ पत्रों और व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम गीत तुम्हारी संपन्न करने की अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, हम आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय प्रातः के 11 बजे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

0: श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था फिल्म ममता से। आवाज़ लता मंगेशकर की थी। गीत के वो लिखे थे मजरू ने और संगीत दिया था रोशन ने। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने से पहले सुनते हैं ये जरूरी संदेश।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700001424।
1: ओ 8700001424। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700001424 पर।
0: लीजिए श्रोता, पेश है लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में लव स्टोरी फिल्म का ये गीत। गीत के बोल लिखे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

लीजिए श्रोताओं, पेश है अनूप घोषाल की आवाज में मासूम फिल्म का ये गीत। गीत की बोली लिखे हैं गुलजार ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

श्रोता इस समय सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट संगीत। लीजिए कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से, आवाज किशोर कुमार की। गीत के बोल लिखे हैं अनजान ने और धुन तैयार की है कल्याण जी आनंद जी ने।

किशोर कुमार की आवाज़ में अभी आपने मिस्टर एक्स इन बॉम्बे फिल्म का ये गीत सुना। कार्यक्रम के अंत में लीजिए पेश है लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में नूरी फिल्म का ये गीत। गीत की बोली कहें जान निसार अख्तर ने और संगीत दिया है खयाम ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ चित्रपट संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 11:30 हुए हैं। लीजिए पेश है प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NCERT।

0: नंद।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी।
3: वाह क्या बात है, जिंदगी जितनी सादी होगी परेशानी उतनी ही आधी होगी। आगे लिखते हैं,
2: योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग जरूर करें।
3: वाह ये भी एक बड़ी खूबसूरत कविता बन गई, योग जरूर करें और वक्त आने पर एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत सुंदर विचार भेजा आपने, धन्यवाद स्वीकार कीजिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेड़था बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊ दास, जय दास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
2: ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र कुमार चंसौलिया और श्रीमती कल्पना चंसौलिया।
3: और बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय के साथ साथ बेबी किट्टू ने लिखा है, आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी सादर नमस्कार।
2: हम उमंग कार्यक्रम के नियमित श्रोता हैं, सोमवार से शुक्रवार तक एक एक जानकारी सुनते हैं, समीक्षा भी भेजते हैं। गुजरे सप्ताह आपने 15 जून को केवल नाम पढ़ा लेकिन समीक्षा नहीं पढ़ी।
3: आपके संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आश्वासन दिलाना चाहते हैं कि आगे से हम जरूर इस बात का खास ख्याल रखेंगे
2: जी।
3: अगला संदेश हमें मिला है राजा जी नगर बेंगलोर से NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का।
2: आप सबके संदेशों के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं।
3: श्रोताओं इन दिनों हम बात कर रहे हैं पेड़ पौधों के रोचक संसार की
2: जी।
3: कल हमने जाना था कि पेड़ पौधे आपस में किस प्रकार से संचार करते हैं। आज हम जानेंगे पेड़ों के बारे में एक और रोचक बात
2: जी।
3: तो विमलेश जी आपने कल बातचीत में प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी सर जगदीश चंद्र बोस के बारे में कुछ बताया था
2: जी। अजीत जी मैं याद कर रही थी उनके बचपन की एक घटना को। ऐसा कहते हैं कि जब वे बच्चे थे तो एक शाम वे गेंद से खेल रहे थे, गेंद पास की झाड़ियों में फंस गई थी।
3: बालक जगदीश चंद्र बोस ने एक डंडा लिया और लगे झाड़ी को हिलाने
2: जी।
3: वे बहुत प्रयास करते रहे लेकिन गेंद झाड़ी में उलझी रही
2: जी।
3: शाम ढलने लगी थी तभी उनकी माँ ने उन्हें बुलाया और कहा, बेटा पौधों को तंग ना करो, ये उनके सोने का समय है।
2: श्रोताओ यही वो समय था जब बालक जगदीश चंद्र बोस के मन में वैज्ञानिक चेतना जागी। तो श्रोताओ आज हम चर्चा करेंगे कि क्या पेड़ पौधे भी सोते हैं।
3: श्रोताओ इसका उत्तर है जी हाँ, लेकिन हमारी तरह नहीं। वैज्ञानिकों ने शोध करके पाया है कि रात में पेड़ों की गतिविधियां धीमी हो जाती हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं होने के कारण प्रकाश संश्लेषण की गति बहुत कम हो जाती है।
2: पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह भी दिन के मुकाबले कम हो जाता है। पेड़ों की स्कैनिंग से ये भी पाया गया है रात के समय कुछ पेड़ों की शाखाएं और पत्तियां 5 से 10 सेंटीमीटर तक नीचे झुक जाती हैं और सूर्योदय के बाद फिर से ऊपर उठ जाती हैं।
3: अरे वाह ये तो बड़ी रोचक बात है। यही कारण है कि ये कहा जाता है कि पेड़ भी सोते हैं। विमलेश जी आजकल सुना जाने लगा है कि पेड़ों पर रात को तीव्र प्रकाश वाले बल्ब नहीं जलाने चाहिए, ऐसा क्यों कहा जाता है?
2: जी जी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रात में पेड़ों पर बल्ब नहीं जलाने चाहिए।
3: क्यों?
2: इसके कई कारण हैं। पहली बात, इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं, तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता।
3: जी विमलेश जी, श्रोताओ एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियों के झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर ही निर्भर करती है, जबकि कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है।
2: एक और बात, कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीटों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है
3: जी।
2: सजावट या सुरक्षा कारणों से भी कभी कभार सीमित समय के लिए बत्तियां जलाई जा सकती हैं, लेकिन अच्छा यही है कि जहां तक हो सके उन्हें प्राकृतिक पर्यावरण में ही रहने दिया जाए
3: जी। तो श्रोताओ ये थी हमारी आज की रोचक जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आई है तो लिख भेजिए अपना संदेश। और अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। हमारा प्रश्न है, पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए?
3: श्रोताओ आप अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर

0: 800-440-5559 पर या हमारे ईमेल पर यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है खेल संध्या।
1: ये कार्यक्रम हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित है, जिसे एक गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। गीत में बच्चे विशेषकर भारत के पारंपरिक खेलों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि उन्हें खेलने कूदने में कितना आनंद आता है।
0: खेल संध्या। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
2: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
2: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
2: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
2: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
2: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
2: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
2: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
2: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
2: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
2: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
2: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
2: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
2: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
2: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत। अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है, सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को। मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आपने सुना ये प्यारा कार्यक्रम।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।
1: इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रेलिया की जनजातियों और उनकी परंपराओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है और बताया गया है कि किस प्रकार से उन्होंने आज भी अपनी संस्कृति को बनाए रखा है।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी।

कहते हैं अरबों वर्ष पहले पृथ्वी पर जमीन का एक विशाल टुकड़ा था। किसी कारणवश बड़ा भयंकर धमाका हुआ। और जमीन के टुकड़े अलग अलग छिटक गए। उसी से बने द्वीप और महाद्वीप।

0: ये भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसके पश्चिम और दक्षिण में हिंद महासागर है, पूर्व में प्रशांत महासागर है और उत्तर में टिमोर और अराफुरा सागर है।
1: क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया भारत से दुगने से भी अधिक है, लेकिन भारत की जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या से लगभग 6 गुना अधिक है।

0: ऑस्ट्रेलिया का अधिकतर भाग सूखा और गर्म है। हमारे देश की गंगा नदी में जितना जल है, ऑस्ट्रेलिया की सारी नदियों में कुल मिलाकर उसका आधा जल भी नहीं है।
1: एक बात और, दक्षिण गोलार्ध में होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के मौसम उत्तरी गोलार्ध में स्थित देशों से उल्टे होते हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत में गर्मियां होती हैं तो ऑस्ट्रेलिया में जाड़ा होता है, और जब भारत में जाड़ा होता है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का मौसम आ जाता है।
0: दुनिया के इस सबसे छोटे महाद्वीप की खोज सन 1770 में एक अंग्रेज नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। इसका मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया की खोज से पहले वहां लोग नहीं रहते थे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी तो पाषाण युग से रहते चले आ रहे हैं। और शायद तुम्हें ये जानकर हैरानी हो कि उनमें से कुछ के जीने के तरीके में आज भी कोई अंतर नहीं आया।
1: मतलब ये कि आज भी ये शिकार करके अपना पेट पालते हैं। इन्होंने न खेती करना सीखा न पशु पालना। पशु के नाम पर डिंगो नाम का एक कुत्ता पालते हैं, जो शिकार के समय भी बराबर इनके साथ रहता है।
0: शिकार करने के लिए ये लोग आज भी पत्थर और लकड़ी के हथियारों का प्रयोग करते हैं। इनका एक हथियार है वो मेरा, जिसकी मदद से ये अपने भाले को 130 मीटर की दूरी तक फेंक सकते हैं।
1: एक और हथियार होता है बूमरैंग, जो घुमावदार होता है। इस हथियार की विशेषता यह है कि अगर शिकारी इसे चतुराई से फेंके और किसी कारणवश वह निशाने पर न लगे तो शिकारी के पास वापस आ जाता है।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी सभी तरह के पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, जैसे एम्यू पक्षी, सांप, छिपकली, कछुआ, कंगारू आदि।
1: कंगारू, इस शब्द की एक रोचक कहानी है। अंग्रेजों ने जब पहली बार इस विचित्र जीव को देखा तो आदिवासियों से इसका नाम पूछा। आदिवासी अंग्रेजी तो समझते नहीं थे, बस इतना समझ पाए कि गोरे लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं। उन्होंने अपनी भाषा में कहा, कंगारू यानी तुम क्या जानना चाहते हो? अंग्रेज समझे कि कंगारू इस विचित्र जीव का नाम है, बस तभी से उसका नाम कंगारू पड़ गया।
0: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासियों के बारे में इतना जान लेने के बाद ये जानने की भी इच्छा होती है कि शताब्दियां बीत जाने पर भी जिन लोगों की जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं आया, वो देखने में कैसे लगते हैं?
1: इनका रंग गहरा होता है, कद सामान्य, शरीर छरहरा लेकिन गठा हुआ, आंखें छोटी और भीतर को धसी हुई, नाक चौड़ी और चपटी, जबड़ा कुछ बाहर निकला हुआ और बाल घुंघराले।
0: हमारी दृष्टि से भले ही ये लोग पिछड़े हों, लेकिन शारीरिक और बौद्धिक दृष्टि से ये पीछे नहीं। इनकी भाषाएं काफी विकसित हैं और लगभग 500 बोलियां प्रचलित हैं। हाँ, ये बात और है कि इनके यहाँ पढ़ाई लिखाई की कोई व्यवस्था नहीं।
1: तुम सोच रहे होगे कि क्या मजे की बात है, आदिवासी बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, न होमवर्क करना पड़ता है और न ही परीक्षा देनी पड़ती है। बस सारा दिन मौज मस्ती करो, खेलो कूदो।
0: हाँ, ये तो है। आदिवासी बच्चों ने अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह के खेल बना रखे हैं।
1: ऑस्ट्रेलियाई आदिवासियों का पारिवारिक संगठन बहुत मजबूत होता है। ये सब कुछ मिल बांट कर खाते हैं और प्रेम से रहते हैं। इनके यहाँ छोटे बड़े का कोई भेदभाव नहीं होता, सभी बराबर माने जाते हैं। हाँ, बड़े बूढ़ों और अनुभवी लोगों का आदर अवश्य किया जाता है।
0: इन्हीं बड़े बूढ़ों पर पवित्र स्थलों की जिम्मेदारी होती है। यही लोग धार्मिक अनुष्ठान करवाते हैं और नौजवानों को अपने रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं। ऐसे अवसरों पर नृत्य और संगीत अवश्य होता है।
1: हाँ, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। स्त्री पुरुष अपने शरीर पर सफेद मिट्टी और गेरू से टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं खींचते हैं, आकृतियां बनाते हैं, माथे पर रस्सी की पट्टियां बांधते हैं और उनमें पक्षियों के रंग बिरंगे पंख खोस लेते हैं, और फिर होता है सामूहिक नृत्य।
0: ऑस्ट्रेलिया के ये सीधे साधे आदिवासी हंसते खेलते अपना जीवन बसर कर रहे थे, लेकिन फिर अंग्रेजों को इस अद्भुत महाद्वीप का पता चल गया। और उन्होंने वहां अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी।
1: अंग्रेजों के अलावा अन्य यूरोपीय लोग भी यहां आए। पहले पहल अंग्रेज समुद्र तट पर आकर बसे, फिर उन्होंने अंदर की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे अंग्रेज आगे बढ़े, वैसे वैसे आदिवासी अंदर के दुर्गम क्षेत्रों में सिमटते गए। बेचारे क्या करते, अपने सीधे साधे हथियारों से अंग्रेजों का मुकाबला थोड़े ही कर सकते थे।
0: अंग्रेजों ने आदिवासी क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और वहां खेती बाड़ी शुरू कर दी। कहीं कहीं आदिवासियों ने अपना क्षेत्र खाली करने से इनकार किया तो अंग्रेजों ने छल कपट से काम लिया। ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न नगर इसका जीता जागता उदाहरण है। इस नगर को बसाने के लिए अंग्रेजों ने आदिवासियों से 40,000 हेक्टेयर जमीन ली, और जानते हो उसके बदले में उन्हें क्या दिया?
1: 100 कंबल, 50 चाकू, 50 कुल्हाड़ियां, 40 कैंचियां, 50 शीशे, 20 जोड़ी कपड़े और 2 टन आटा।
0: ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी छोर पर एक छोटा सा द्वीप है, तस्मानिया। ये भी ऑस्ट्रेलिया का एक हिस्सा है। यहाँ के आदिवासियों को भी अंग्रेजों ने उसी तरह धकेलना शुरू किया। अंग्रेज उन्हें खाना कपड़ा तो देते थे, लेकिन बेचारे अंग्रेजों की उतरन पहनकर भी ठंड से नहीं बच पाए। सन 1847 तक इनकी संख्या 2000 से घटकर केवल 47 रह गई, और सन 1869 तक आते आते आखिरी आदिवासी ने भी दम तोड़ दिया। इस तरह पूरी की पूरी एक जाति लुप्त हो गई।
1: आज पशु पक्षियों की दुर्लभ जातियों के संरक्षण को बहुत महत्व दिया जा रहा है। उनके शिकार पर रोक लगा दी गई है, उनके लिए अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। लेकिन तस्मानिया के आदिवासियों के बारे में तब किसी ने भी नहीं सोचा।
0: ऑस्ट्रेलिया के इन आदिवासियों की दशा में काफी सुधार हुआ है। उन्हें अब समानता के अधिकार मिल गए हैं। वो वोट दे सकते हैं, अपने प्रतिनिधि को देश की संसद में भेज सकते हैं।
1: यही नहीं, आदिवासियों को भूमि के अधिकार भी मिले हैं। इनके लिए कुछ आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं जहां किसी और का कोई दखल नहीं। ये लोग अपनी मर्जी से जैसे चाहें रह सकते हैं।
0: उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में अर्नहैम लैंड नाम का एक ऐसा ही आरक्षित क्षेत्र है। इसमें ककाटो नाम का एक राष्ट्रीय पार्क भी बनाया गया है। सन 1988 में इस राष्ट्रीय पार्क की फिल्म बनाने के लिए एक अमरीकी दंपति वहां जाकर महीनों रहे थे।
2: हम लोग आपके इस ककाटो पार्क की फिल्म बनाने आए हैं, और उसके लिए पूरे परिवेश को अच्छी तरह जानना समझना बहुत जरूरी है।
3: तब तो आप भी हम गागुजू आदिवासियों जैसे ही हैं। हम लोग अपने आप को प्रकृति का एक हिस्सा मानते हैं।
4: लेकिन मिस्टर नीजी, मनुष्य तो अपने को प्रकृति का मालिक मानता है।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए, नहीं तो वन देवी नाराज हो जाएंगी। वन देवी ने समुद्र से निकलकर जमीन बनाई, पेड़ पौधे बनाए, जीव जंतु बनाए, मनुष्य को जन्म दिया, और फिर वो भी इन्हीं में समा गई।
2: अच्छा, तो ये सब वन देवी ने किया?
3: यही नहीं, हमारी मिमी देवी ने हमें शिकार करना सिखाया और चित्र बनाना सिखाया।
4: कैसे चित्र?
3: जीव जंतुओं के चित्र, आदमी के चित्र।
2: क्या आप हमें ऐसे कुछ चित्र दिखा सकते हैं?
3: क्यों नहीं, अभी चलिए।
2: चलिए
3: आइए।
2: देखो वेरिंडा, ये अजगर का चित्र।
4: अरे इसमें तो अजगर की हड्डियों का ढांचा तक दिख रहा है, जैसे ये कोई एक्सरे फोटो हो।
2: और ये देखो, ये गुफा की दीवार पर गेरू से बनी ये मछली।
4: इधर ये कछुए, मेंढक, कंगारू और ये प्लेटिपस के चित्र भी हैं। और ये देखो आदिवासी का ये चित्र।
2: मिस्टर नीर जी, क्या आप लोग अब भी ऐसे चित्र बनाते हैं?
3: गुफाओं में तो नहीं, हाँ पेड़ों की छाल पर जरूर बनाते हैं। आप कल हमारे कबीले में आइए, मैं आपको अपने भाई से मिलवाऊंगा, वो बहुत अच्छे चित्र बनाता है।
2: ठीक है, कल सुबह हम वहां आएंगे, अभी इन चित्रों की फिल्म तो उतार लें। गुड मॉर्निंग मिस्टर नीट जी।
3: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आइए आइए आइए।
2: हमारे आने से आपको कोई असुविधा तो नहीं हुई?
3: जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। ये मेरा भाई है इल्किर।
2: अच्छा अच्छा।
3: ये आपकी भाषा नहीं बोल सकता, लेकिन आपको चित्र दिखाएगा। कल इसने ये छाल उतारी थी चित्र बनाने के लिए, आप इसे चित्र बनाते देखना चाहते हैं?
4: ये तो बहुत अच्छा होगा, फिर हम उसकी फिल्म भी उतार सकते हैं।
3: जी।
2: अरे वाह, ये तो बड़ी तेजी से हाथ चला रहे हैं। देखो वेलिंडा, इनकी कोई गलती भी नहीं हुई, और देखो ना कुछ मिटाना भी नहीं पड़ा।
4: वाकई कमाल है।
3: अभ्यास से गलतियां नहीं होती, हमारे बनाए चित्र तो अब दुनिया भर में बिकते हैं।
2: सचमुच?
4: स्टेन, एक चित्र हम भी खरीद लें?
2: हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। वो अजगर वाला चित्र बड़ा आकर्षक है।
3: लीजिए, ये आपका हुआ।
2: इसकी कीमत?
3: कीमत नहीं लूंगा, हम गगुज्जू आदिवासियों की तरफ से आपको भेंट है।
4: सच?
2: धन्यवाद।
1: ऑस्ट्रेलिया के ये आदिवासी अच्छे चित्रकार तो हैं ही, आज उन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपना स्थान बना लिया है। वो देश की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे हैं।
0: लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें ये आधुनिकीकरण पचता नहीं, वो अपनी जीवन पद्धति नहीं बदलना चाहते, और क्योंकि अब उन्हें भूमि के अधिकार मिल गए हैं इसलिए वो अपने क्षेत्र में अपने ढंग से जी सकते हैं, एक तरह से अच्छा भी है। आज हम चाहें तो पाषाण युग की जीवन शैली को प्रत्यक्ष देख तो सकते हैं।
5: ऑस्ट्रेलिया के आदिवासी, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार।
7: उमंग उमंग उमंग उमंग।
8: श्रोता भी सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे NCERT। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कुछ शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

शास्त्रीय संगीत में दिन में 12:05 पर श्रोता सुनेंगे शिशिर कानाधर चौधरी का वायलिन पर बजाया राग मुल्तानी। मिड डे मेलोडी कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 12:30 पर। घर संसार कार्यक्रम में दिन में 1:15 पर सुनेगा चर्चा, सकारात्मक सोच से जीवन में बदलाव। इसके अलावा क्रम रहेगा थारा स्वास्थ्य, इसके अंतर्गत प्रीतम कौर से अंजना की बातचीत का विषय रहेगा गर्भधारण के दौरान सावधानियां। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में दिन में 1:45 पर सुनेगा शारदा सिंह के गाए राजस्थानी लोकगीत। व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम संदेश.com का समय रहेगा दिन में 2:30 पर। मेरा सपना उन्नत भारत में शाम 5:00 जानकारी दी जाएगी पीएम गति शक्ति योजना और रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना पर। युवाणी कार्यक्रम में आज शाम 5:15 पर आज के क्रम रहेंगे बूझो तो जाने कुछ खास है आज, यूथ कनेक्ट, लव स्टोरी, बूस्टर और साथ ही सुनिएगा फिल्म संगीत। कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:05 पर डॉक्टर श्यामलाल गुप्ता से नरेश पाल सिंह की बातचीत का विषय रहेगा खरीफ में दलहन और तिलहन उत्पादन। विविधा कार्यक्रम में शाम 6:45 पर सुनिएगा वार्ता भीष्म साहनी का नाट्य शिल्प, वार्ताकार होंगे डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। छाया गीत कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 6:55 पर। कानून की बात शाम 7:32 पर हमारे लखनऊ केंद्र से रिले की जाएगी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में शाम 7:45 पर सुनिएगा शब्द, कलाकार होंगे सुरेंद्र कौर। गीत संध्या कार्यक्रम का समय रहेगा रात्रि 8:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। चर्चा का विषय है रात्रि 9:30 पर हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया का समय रहेगा रात्रि 10:00। श्रोताओं ये तो थी कुछ कार्यक्रम संबंधी जानकारियां।

आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दिन के 12:05 हो रहे हैं। शास्त्रीय संगीत में लीजिए पेश है शिशिर कानाधर चौधरी का वायलिन पर बजाया राग मुल्तानी, विलंबित व द्रुतगत 3 ताल में निबद्ध है और आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं संत राम जी।

शास्त्रीय संगीत में श्रोता भी सुन रहे थे शिशिर कानाधर चौधरी का वायलिन पर बजाया राग मुल्तानी। विलंबित व द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध थे आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे संतराव। हम आकाशवाणी की नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम मिड डे मेलेडी। कार्यक्रम का पहला गीत लता मंगेशकर के आवाज़ में फिल्म अभिनेत्री से, गीत की बोली के हैं मजरू ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2026 हेतु प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार PMRBP के लिए नामांकन आमंत्रित किए गए हैं। ये प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के उन बच्चों को प्रदान किया

0: जाता है जिन्होंने बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त की हों। सभी इच्छुक अभ्यर्थी एवं संस्थाएं योग्य बच्चों के नामांकन सिफारिशें केवल ऑनलाइन माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर भेज सकती हैं। पोर्टल है https://awards.gov.in। नामांकन भेजने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। विशेष रूप से बालिकाओं, कमजोर वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति तथा दिव्यांग बच्चों में से प्रतिभाशाली बच्चों को चिन्हित कर उनके नामांकन हेतु प्रोत्साहित किया जाए। अधिक जानकारी हेतु राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अथवा संबंधित विभाग से संपर्क किया जा सकता है। सूचना समाप्त हुई।
1: लीजिए श्रोता, पेश है हेमलता की आवाज में आप तो ऐसे न थे फिल्म का ये गीत। गीत की वो लिखे निदा फाजली ने और संगीत दिया है उषा खन्ना ने।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम मिड डे मेलोडी श्रोता इस समय आकाशवाणी नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए अब पेश है आर डी बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरूह का लिखा गीत आवाज मोहम्मद रफी की और फिल्म का नाम है अभिलाषा।

लीजिए, पेश है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की युगल आवाज़ों में अभिमान फिल्म का ये गीत। गीत की वो लिखे हैं मजरू ने और संगीत दिया है SD बर्मन ने।

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चे मर जाओ।

0: किशोर कुमार के गाए अजनबी फिल्म के इसी गीत के साथ मिड डे मेलोडी कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इंडोनेशिया के योग्यकार्ता स्थित प्रामानन मंदिर में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उनके लिए विशेष महत्व रखता है और इसके विकास की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी उन्हीं पर है। श्री मोदी ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ महादेव के आशीर्वाद से उन्हें हमेशा मार्गदर्शन मिला है। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर के पुनर्निर्माण का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें इन परियोजनाओं में योगदान का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
2: यहाँ पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा विष्णु महेश इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ।
1: प्रधानमंत्री 3 देशों के दौरे के दूसरे चरण में आज मेलबर्न पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी भारत ऑस्ट्रेलिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि इस संयुक्त समिति ने उप समितियों को उनके संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए रणनीतिक मार्गदर्शन दिया और उनसे लंबित मुद्दों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा है। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता मजबूत होगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा ओडिशा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल ओडिशा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चानपोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बातचीत की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र

0: सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद हैं। 5 लोग अब भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। इस बीच केरलम में 11 जिलों में तेज वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड जिले में बारिश की तीव्रता में कमी आई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में आज सुबह बारिश हुई। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर ताजा हवाई हमले किए। अमेरिका की केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने कहा है कि हमलों में ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, कमान और नियंत्रण केंद्रों, तटीय रडार स्थलों, जहाजरोधी मिसाइल प्रणालियों और होर्मुज जलडमरू मध्य तथा उसके आसपास स्थित इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की 60 से अधिक नौकाओं को निशाना बनाया गया। ईरान ने हमलों की पुष्टि करते हुए कहा है कि बंदर अब्बास, केशम और सिरिक में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi today said that he considers it his good fortune to have had repeated opportunities to connect with Lord Shiva at various sacred sites. Addressing at the Prambanan Temple in Yogyakarta, Indonesia, the Prime Minister said he was born in Vadnagar, home to Hatkeshwar Mahadev, and that the Somnath Jyotirling in Gujarat, the first among the 12 Jyotirlings, holds special significance with him having direct responsibility for its development. Mr. Modi also noted that his parliamentary constituency, that is Kashi, Varanasi, is home to Kashi Vishwanath Mahadev, whose blessings, he said, have always guided him. Referring to the redevelopment of the Kedarnath Temple and the Mahakaleshwar Temple in Ujjain, the Prime Minister said he had the privilege of contributing to these projects. He added that his visit to the Prambanan Temple had also given him the opportunity to initiate renovation efforts, describing it as a matter of great fortune.
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: द प्राइम मिनिस्टर हैज सिंस डिपार्टेड फॉर ऑस्ट्रेलिया। इन द सेकेंड लेग ऑफ हिज 3-nation टूर, Prime Minister Modi will reach Melbourne today on a 3-day visit where he will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit with the Australian Prime Minister Anthony Albanese. Mr. Modi will also participate in the India-Australia CEOs Forum where he will address a gathering of top business leaders from both the countries. Mr. Modi will also address a large gathering of the Indian diaspora. The Enforcement Directorate is conducting search operations at 5 premises in Delhi, NCR, in connection with the ongoing investigations into 3 cases involving cheating of home buyers through subvention schemes. The investigation conducted by CBI revealed that the builders have cheated the home buyers and investors in the name of subvention schemes. It is further revealed that the builders floated no EMI till possession schemes, whereby the home buyers availed housing loans and booked flats. However, even after the lapse of several years, possession of the flats has not been delivered to them, causing wrongful loss to the home buyers. Union Home Minister Amit Shah today spoke to Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis regarding the heavy rainfall and flood-like situation in the state. During the conversation, Mr. Shah assured the Chief Minister of all possible assistance from the central government to support the Maharashtra government in dealing with the situation. Several parts of Maharashtra have been affected by heavy rainfall over the past few days. In Jammu and Kashmir, police today said that one terrorist has been killed in an encounter with security forces in Chanapura area of Shopian. Police said that the operation was conducted jointly with Army and the CRPF. Talking to Akashwani News, Inspector General of Police V.K. Birde said a body has been found with arms and ammunition at the spot and the identity is being ascertained. Iran has launched retaliatory strikes on U.S. military installations following the U.S. attacks on its Hormuzgan province and the port city of Mashhad. According to Iranian media, the Islamic Revolutionary Guard Corps, Navy and Aerospace Forces carried out a joint missile and drone operation targeting 85 U.S. military facilities. Meanwhile, Bahrain's Ministry of Interior has urged residents to take shelter after warning sirens sounded across the country. Earlier, the U.S. carried out a fresh round of airstrikes on Iran, targeting more than 80 locations in response to Iran's latest attacks on commercial ships passing through the Strait of Hormuz. In football, Switzerland beat Colombia 4-3 in a penalty shootout in Vancouver to reach the quarterfinals of FIFA World Cup for the first time since 1954. In another round of 16 match, Argentina defeated Egypt 3-2 in Atalanta to enter the quarterfinals of the tournament. With this win, Argentina will play against Switzerland in the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-आला योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में चीफ मिनिस्टर टीचर कैशलेस मेडिकल स्कीम का आगाज किया। ये स्कीम 12 लाख असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले और उनके ज़ेर किफालत अफराद को सेहत की हिफाजत फराहम करती है।
4: 30 लाख रुपए से 80 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, अस्थाई या आंशिक विकलांगता की दिशा में 30 लाख से 80 लाख रुपए, 15 लाख से 40 लाख का इंश्योरेंस कवर और ईयर एक्सीडेंट की दिशा में 30 लाख से 80 लाख तक का इंश्योरेंस कवर और कार्मिक के साथ किसी अनहोनी की दिशा में कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर प्रदान किया जाएगा।
3: उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 10 लाख असातिज़ा और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के समाजी तहफ्फुज़ के लिए एक मफाहमत नामे पर भी दस्तखत किए। वज़ीर आला ने यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए 1.10 करोड़ तालिबे इल्म के वालिदैन के खातों में DBT के जरिए 1200 रुपये फ़ी तालिबे इल्म मुंतकिल किए। इसके अलावा वज़ीर आला ने कौमी सतह पर मुंतखब होने वाले क्लीन एंड ग्रीन स्कूलों के प्रिंसिपलों और हेडमास्टरों को भी एजाज से नवाजा। वज़ीर आला चित्रकूट और मानिकपुर असेंबली हलकों में 951 करोड़ रुपए के 124 अवामी बहबूद के मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे और संगे बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल प्रतापगढ़ में 384 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 111 तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन वाली हुकूमत ने अपने काम करने के अंदाज से तरक्की को तेज़ किया है। वज़ीर आला ने कल ही सुल्तानपुर में 819 करोड़ रुपए के 99 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। तकरीब के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों से मुस्तफीद होने वालों में चेक और सर्टिफिकेट तकसीम किए। वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत ने कनेक्टिविटी को बेहतर बनाकर पूर्वांचल को तरक्की से जोड़ा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर P.K. मिश्रा की सदारत में कल नई दिल्ली में एक आला सतही मीटिंग हुई। मीटिंग में खरीफ सीजन की पेशरफ्त और मईशत के दीगर शोबों पर अलनीनो के मुमकिन असरात की रोशनी में की गई तैयारियों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने हिदायत दी कि सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जाए और मानसून या ताखिर से होने वाले मानसून के असरात का अंदाज़ा रियासतों के साथ मिलकर उन इजला पर किया जाए जो सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर इसलाही इकदाम किए जा सकें। मीटिंग में इस बात पर भी जोर दिया गया कि हसास इजला में पीने के पानी के मुनासिब दस्तियाबी को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कल प्रगति प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। इसका मकसद 20,000 से ज़्यादा ज़रई कारोबारी अफराद और 20,00,000 किसानों को बाइख्तियार बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब चौहान ने तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने के लिए ज़रई तरक्की, खुशहाल गाँव और खुशहाल किसानों की ज़रूरत पर जोर दिया।
5: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है। विकसित भारत के लिए विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान, उसमें सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
3: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने बताया कि मंदिर में चढ़ावे के गबन के बावजूद यहां आने वाले अकीदतमंदों की तादाद और उनकी जोश व खरोश में कोई कमी नहीं आई है। उन्होंने यकीन दिलाया कि इस मामले में इंसाफ किया जाएगा और मुजरिमों को सजा दी जाएगी। इस मामले में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के साबिक जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने एक खत में कहा कि वो SIT की हतमी रिपोर्ट पेश करने के बाद अपने खिलाफ तमाम इल्जाम का जवाब देंगे। इस दरमियान राम मंदिर चौहावा घोटाले के 3 मुलजमीन का पुलिस रिमांड शुरू हो गया है। पुलिस उन्हें जेल से पुलिस लाइंस ले गई, वहां 3 मुलजमीन का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। इसके बाद पुलिस नकदी और जेवरात बरामद करने की कोशिश करेगी जिनकी उन्होंने शनाख्त की थी। रियासती वजीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने कल मिर्ज़ापुर में एक मल्टीपर्पज़ खाद, बीज और तौसीई मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ज़राअत ने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों को जदीद वसायल और टेक्नोलॉजी से जोड़ने के लिए मुसलसल काम कर रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
6: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम घर संसार।

घर संसार कार्यक्रम सुनने वाली सभी प्यारी बहनों को थारी बहना कुमुद की प्यार भरी राम राम। और सुनाओ बहनों, सब राजी खुशी? थारा परिवार, थारे ढोर डंगर सब चोखे तो हैं? बहना राजी खुशी तो बूझ लें थारी, तो जरा सा महाराज जी हल्का हो जा, जरा तसल्ली सी हो जा हमें भी। अच्छा लगे हमारी बहने ठीक ठाक है, हमारे मन को तसल्ली हो जा। अरे नू तो बहना जरा हमारा दुख तकलीफ तो लगी रहे जिंदगी में। अरे इनसे घबरान लगे तो बहना बस जी ली हमने तो जिंदगी। अरे बहना दी के कितनी भुलक्कड़ होगी मैं तो, थारी गैल बातें तो करने बैठ जाऊं। अयो तो तुमसे बताना ही भूल गया क्या क्या हैगा आज के कार्यक्रम में। बहना आज का कार्यक्रम भी हर बार की तरह खास ही हैगा थारे लियो। हाँ बहना, चार सूख रहा था राधे के बादल हो रहे हैं, बूंदना पड़ जाना तो सारी मेहनत थारी खराब हो लगी हो। देख क्या खुशबू आ रही, मारे खाने को जी कर आ रही, मुंह में पानी आ रहा। तो बहना इसमें को हाथ निकालती रही हो और कार्यक्रम सुनती रही हो। अभी सुन लें कुछ जरूरी संदेश, फिर थारी मारी बातचीत तो चलो ही जाएगी।

लेके हाजिर है थारी भेना कुमुद। तो बहनों, आज सबसे पहले थारी से बात करेंगे सकारात्मक सोच से जीवन में बदलाव इस बारे में। बिना पुरानी कहावत है गी, अख मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। मतलब जब थारे मन ने सोच लिया तो तुम जीत जाओगे, और सोच लिया रे ना हमारे बस की ना है यो काम, तो पहले ही हारो बैठे तुम तो। मतलब किसी भी काम में कामयाब होना हमारी सोच पे निर्भर करा है। सच्ची बात तो हैगी बहना, अगर हम काम में हाथ डालने से पहले ही सोचने लगे अख जने यो काम ठीक भी होगा अख ना, बस यो ही सोच तो हमारा काम बिगाड़ दे है। सही बताओ बहना, तुम भी जब कोई नवा काम शुरू करना लगो तो दो मन हो जान, एक तो कह दे कर ले देखी जाएगी हो जाएगा काम ठीक, और दूसरा कह दे ए नया काम शुरू कर रहे जाने हमारे से बस की होगा अकना ठीक होगा अकना। तो भिन्न ये जो दूसरा मन है ना, जो हमारे मन में डर पैदा कर रहा, इसे ही तो नकारात्मकता कहवे हैं। यो ही सोच तो एक तरफा हमें आगे बढ़ने से रोक के है, और दूसरी तरफा हमारे चारों तरफा ऐसा माहौल बना दे और हम अपनी कामयाबी पर शक करने लगे। और भिन्ना ऐसा यो ही ना कि बस थारी मारी गैली हो रहा, आजकल जिंदगी में इतना तनाव हैगा कि क्या बालक क्या बड़े सब इस नकारात्मकता से घिरे हुए हैंगे। हम सब अक्सर इस सोच को भी ना इस कदर अपने पर हावी कर ली हैं कि जिंदगी पर हमारा विश्वास ही खत्म हो जाए, काम करने की इच्छा भी ना ही रहती, फिर नहीं नहीं रहने दे बस अपने बस की ना है। इंसान को लगन लगे भेना कुदरत ने सबसे ज्यादा परेशानी दुख तकलीफ सब हमारे नसीब में लिख दिए। इसका भी एक कारण हैगा बहना, हम में से ज्यादातर लोग महज अपनी कमजोरियों को ही देखे हैं। जो हमारे गुण हैं, जो हमारे काम करने की क्षमता है उसको वो तो देखते ही ना हैं हम, जब इतने नकारात्मकता के घिर जाए तो। अब बार बार मिल रही हो नाकामयाबी से हमारे ऊपर इस कदर असर हो जा कि हम अंदर से भी टूटा हुआ महसूस करने लगे खुद ही। बिना ऐसे ही हालातों में जब एक बार इंसान घिर जा ना, तो देखिए बड़ा लंबा टाइम लगे उसे बाहर निकलने में। अब बिना अगर जिंदगी अछवाई तरह जीनी है तो सबसे पहले तो हमें इस नकारात्मक सोच को अपने से अलग करना होगा, चीजों को देखने का अपना तरीका बिल्कुल बदलना पड़ेगा। और बहना यकीन करियो, जैसे ही थारी सोच बदलेगी सकारात्मक सोचने लगोगी तो जो काम तुम्हें नामुमकिन लगे था उन्हें भी तुम बड़ी आसानी से कर भागोगी। हमारा नजरिया ही तय करे है कि हम किसी काम में कामयाब होंगे या नाकामयाब। देखिए एक जीती जाती मिसाल तो हमने अपने बालपन में देखी, जब हम स्कूल में पढ़ा करें थे तो हमारे साथ एक लड़की पढ़े थी, और बहना जन्म से ही दोनों पाँव खराब थे उसके। और उस टाइम तो देखिए इतनी दवाई ववाई ना थी, इलाज भी ना था, फिर भी माँ बाप से जितना हो सका करवाया इलाज। और शुरू शुरू में तो बहना वो भी बड़ी मायूस रह कर रही थी, पर धीरे धीरे उनने क्या करा अपनी इस कमजोरी पर पार पाया। उनने महसूस करा कि भगवान ने भले ही मुझे दोनों पाँव से महरूम कर रखा, पर हाथ आँख कान और दिमाग तो दिया। वह बहना उन्हें जी जान लगा के मेहनत कर ली पढ़ाई में, अव्वल आने लगी क्लास में, और अपनी सोच और मेहनत के दम पे सरकारी स्कूल में मास्टरनी बनी थी वो। हाँ तो सच्ची कहूँ तो सकारात्मक सोच रखने वाले लोग अपनी नाकामयाबी को भी कामयाबी की इस तरह एक सीढ़ी बना दिए हैं, और इसीलिए वे हार के भी जीतने की कला जानना है। देखिए दुनिया में जितने भी बड़े आदमी हुए हैं उनमें से ज़्यादातर की जिंदगी आसान ना ही थी। जीवनी पढ़ के देखो उनकी तो पता चलेगा कि कितने बुरे बुरे हालात झेले उन्होंने भी, लेकिन उनकी लगन सकारात्मक सोच ने उन्हें आखिरी तक हारने ना ही दिया, उन्होंने वो करके माने जो उन्होंने ठान रखी थी। सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों का देखो मानसिक स्वास्थ्य तो बेहतर हो गई है, अभिना कई तरह की जो शारीरिक बीमारियां हैं उनसे भी वे दूर है जहाँ अपनी सोच की बदौलत। और ये सोच हमें अंदर से इतना मजबूत बना दे कि हम हारने के बजाय चुनौतियों का डट के सामना करने लगे हैं। और देखो बहना सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर हमारी सोच सकारात्मक रहेगी तो हमारे आसपास के लोग भी उससे प्रेरित रहेंगे, औरे धोरे का माहौल भी बढ़िया हो जा और रिश्ते तो

0: या हो ही जान। देखो जी, जब तुम किसी से प्यार से बोलोगे, खुश होकर बोलोगे, तो उसके चेहरे पर तो अपने आप ही मुस्कुराहट आ जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले तो उन चीजों के लिए शुक्रिया अदा करो जो थारे द्वारा दिया भगवान जी ने। संगत भी ऐसे ही लोगों की रखो जिनकी सोच बढ़िया हो, जो बिल्कुल गलत ना ही सोचते हो, नकारात्मक ना ही सोचते हो, और खुद में बुराई देखने की बजाय अपने गुणों की तरफ भी देख लिया करो। और कभी कभी अगर किसी काम में कामयाब हो जाओ तो अपनी पीठ खुद ही थपथपा लिया करो, अरे शाबाश, तेने बड़ा बढ़िया काम करा। अपने आप को ही शाबाशी देने में कोई हर्जा थोड़े ही। और अपने अंदर कमी देखो तो भिन्न सुधारने की कोशिश करो। तो भिन्न इस तरह अगर अपनी सोच को सकारात्मक रखेंगे तो अपनी जिंदगी में बढ़िया तरह बदलाव ला सकें और अपनी जिंदगी को बढ़िया जीने लायक बना सकें हैं। इसी बात पे एक बड़ी बढ़िया कविता हैगी, मुझे तो बड़ी पसंद है, सुनोगी उसकी 4 लाइनें? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। क्यों बिना, कैसी लगी कविता? बढ़िया। तो बिना यो तो हुई थारे से मानसिक स्वास्थ्य की बात, पर बिना बड़ा ही जरूरी है अगर हम अपने मन के साथ साथ तन की सेहत का भी खूब ध्यान रखें। तन मन तंदुरुस्त रहेगा जब तो जिंदगी बढ़िया बना पाओगी अपनी। तो लो, आज के खास क्रम थारा स्वास्थ्य में हम लेकर आए हैं ये पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, जिसमें प्रीतम कौर से बातचीत करी है अंजना ने। विषय है गर्भधारण के दौरान सावधानियां।
1: बहनों, आज हमारे बीच उपस्थित है श्रीमती प्रीतम कौर, आप हैं शेखुपुर गढ़ू में आशा, और आज हम आपसे बात करेंगे गर्भधारण के दौरान सावधानियां। तो प्रीतम जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: धन्यवाद।
1: और हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब कोई भी महिला यदि गर्भ धारण करती है तो उसे कैसे पता लगता है कि वह गर्भवती है?
2: महिला की माहवारी बंद होते ही हम जितनी जल्दी हो सके महिला गर्भवती है या नहीं, एक निश्चित किट द्वारा उसकी जानकारी लेते हैं। और ये एक परीक्षा कार्ड होता है जिसके द्वारा हमें ये पता लगता है कि महिला गर्भवती है या नहीं है।
1: अच्छा।
2: अगर उसमें एक लाइन आती है तो महिला गर्भवती नहीं है, अगर दो आ जाती हैं तो समझ लो महिला गर्भवती है, और उसका परिणाम जो है पॉजिटिव आ जाता है। अगर दो लाइन होती है तो हमें पता लग जाता है कि हमारी ये महिला गर्भवती है।
1: अच्छा, अगर आपको पता लग गया है कि महिला गर्भवती है तो उस समय उसको आप किन किन बातों का ध्यान रखने के लिए बोलती हैं?
2: जब महिला के गर्भवती होने का पता चलता है तो हम तुरंत उसे जितनी जल्दी हो सके पहले तो उसका पंचीकरण कराते हैं।
1: अच्छा।
2: यह पंचीकरण गांव में होने वाले गांव स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के दौरान जो निकट में ही एक आंगनवाड़ी केंद्र हो वहां पे भी करा सकते हैं, जहां पर ANM द्वारा सभी स्वास्थ्य सेवाएं गर्भवती को प्रदान की जाती है।
1: अच्छा।
2: इसके अलावा उप केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल में भी सभी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। और शीघ्र पंजीकरण कराने से गर्भावस्था में सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि गर्भवती महिला का वजन सही से बढ़ रहा है कि नहीं, यह पता चल जाता है।
1: अच्छा, तो यानी उसका सबसे पहले आप वजन करते हैं
2: जी,
1: और उसके बाद उसको बताते हैं कि किस किस तरह से उसके खान पान का ध्यान रखना है।
2: हाँ।
1: और कब कब उसको जांच कराने के लिए आना है
2: जी।
1: तो इन बातों का शुरू में जैसे पता लग जाता है कि उसका वजन इतना है, तो कितना वजन उसका हर महीने बढ़ना चाहिए?
2: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान शुरू से लेके 9 माह तक कम से कम 9 से 10 किलो तक गर्भवती का वजन बढ़ना बहुत जरूरी है।
1: अच्छा।
2: गर्भावस्था का पता लगने पर गर्भवती की महिला को शिशु की अनुमानित तारीख की गिनती भी करने में मदद होती है।
1: अच्छा।
2: क्योंकि उसे जो पिछले माह महावारी हुई थी उस तारीख से उसके आने वाले 9 महीनों की गणना करके और 7 दिन का समय जोड़कर हम उसे उसके होने वाले जो प्रसव की तिथि है वो भी हम उसको बता देते हैं।
1: अच्छा।
2: जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी महिला के गर्भवती होने का पता चलना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: अच्छा, ये तो उसको पता लग ही गया है और उसको खान पान का भी उसको ध्यान रखना है। जब वो गर्भवती होती है तो शुरू में ऐसा लगता है कि उसको वॉमिटिंग हो रही है, उल्टियां आ रही है, तो उसके बचाव के लिए वो अस्पताल भी पहुंचती है कि किसी तरह से उल्टियां आना बंद हो जाए, तो आप क्या करती हैं उसके साथ में? क्योंकि

0: में आपको महिलाएं मिलती हैं, महिलाएं ऐसी ऐसी बातें आपसे पूछती भी होंगी, तो आप उसको जांच के लिए अस्पताल लेकर के आती होंगी।
1: गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिला की हमें चार जांचें बहुत जरूरी हैं। पहली जांच 12 सप्ताह के भीतर होती है, इसी बीच में उसे टिटनेट का इंजेक्शन भी लग जाता है।
0: अच्छा।
1: और उसे जो परेशानी होती है वो अपनी बताती हैं, अगर उल्टी आती है तो उसकी दवाई भी दी जाती है उनको, ठीक है, जिससे ज्यादा उल्टी ना आए, क्योंकि ज्यादा उल्टी आएंगी तो फिर महिला भी कमजोर हो जाएगी, बच्चा भी कमजोर हो जाएगा, ठीक है। और फिर टिटनेस का एक इंजेक्शन हमारा लग जाता है, और उसके दूसरा इंजेक्शन जो है अगले इंजेक्शन के एक माह के बाद लग जाना जरूरी होता है, एक माह का अंतर रख के दूसरा इंजेक्शन भी लग जाता है। इसी बीच उसके खून की जांच भी होती है,
0: अच्छा,
1: यानी महिला एनीमिक तो नहीं है, इसका भी पता लग जाता है।
0: अच्छा,
1: प्रोटीन और शुगर की जांच भी जरूरी है, समय समय पर उसका ब्लड प्रेशर भी दिखाते रहना चाहिए, एनीमिया की कमी को दूर करने के लिए उसे आयरन की गोली खाते रहना चाहिए।
0: अच्छा अच्छा, आयरन की आपने दवाई की बात की कि आयरन की जो गोली होती है उसे खाते रहना चाहिए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको वॉमिटिंग सी होती है, जी मिचलाता है आयरन की गोली खाने से, तो उसके लिए आप उसको क्या सलाह देती हैं?
1: उसके लिए हम उसे कहते हैं कि तुम रात को सोते हुए खा लो,
0: अच्छा,
1: ठीक है, तब इतनी परेशानी नहीं होती, खा के अपना सो जाओ।
0: अच्छा,
1: ठीक है,
0: ऐसा नहीं है कि अगर वो भोजन खा रही है तो उस बीच में
1: भी खा सकते हैं।
0: अच्छा।
1: दोपहर में खाने के बाद भी कह देते हैं कि दोपहर का जब खाना खाओ साथ में अपनी आयरन की गोली भी खा लो।
0: अच्छा, गर्भावस्था के समय में गर्भवती महिला को अधिकतर खाने में रुचि नहीं होती या किसी विशेष भोजन में रुचि होती है
1: जी,
0: तो वो कभी कभी उसको फायदा भी दे जाता है और कभी उसके लिए नुकसानदायक भी होता है, तो ऐसे में उसको आप क्या सलाह देती हैं?
1: उसको हम यही सलाह देंगे जो उसका मन करता है उसे वो खाना चाहिए।
0: अच्छा,
1: ठीक है, खाना खाने पे तो उसे विशेष ध्यान देना है, जो चीज उसको अच्छी लगती है, वैसे ज्यादातर हो सके तो पौष्टिक आहार ही उसको लेना चाहिए, और पौष्टिक आहार लेना उसके लिए बहुत जरूरी है। घर परिवार के लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए कि उसे किस चीज पे उसकी उसका मन ज्यादा करता है उसको लाकर दें, उसको खाने के दें, क्योंकि घर परिवार वालों को ही उसका पूरा ध्यान रखना है। अगर जो पहली बार कोई महिला माँ बन रही है तो उसे कुछ इतनी जानकारी भी नहीं होती कि उसे कुछ पता भी नहीं होता, तो परिवार के लोगों को उसको समझाना चाहिए कि समय पे हर एक एक समय होता है कि उसको आराम भी करना है, उसको पौष्टिक आहार भी लेना है, खाने पीने की चीजों पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। और हमारी जो है ये तीन जांचें बहुत जरूरी होती हैं। पहली जांच हमारी 12 सप्ताह में हो जाती है
0: जी,
1: दूसरी जांच हमारी 14 से 26 सप्ताह के बीच में जरूर होनी चाहिए, और तीसरी जो है 28 से 34 सप्ताह के बीच में, और चौथी जांच जो है हमारे 36 सप्ताह के बीच में होनी चाहिए।
0: अच्छा, और आपने जांच की बात की, कभी कभी आपके सामने ऐसा भी समय आता होगा कि कुछ महिला ऐसी होती हैं कि वो जांच ही कराना पसंद नहीं करती, क्योंकि वो अशिक्षित महिला अगर होगी तो वो कहेंगे कि अरे हम जांच करा करके क्या करेंगे, ये तो सभी के सामने आता है, और वो जांच कराने से इनकार कर देती हैं, तब आप उसको कैसे समझाती हैं आशा के रूप में?
1: आशा के रूप में जाके हम बहुत अच्छे से उनको समझाते हैं, बार बार बताते हैं कि देखो किसी का नुकसान ना हो, इसलिए हम उसे पूरी अच्छे से समझाते हैं कि उसकी पीलिया की जांच है, ब्लड प्रेशर की जांच है, और कई बार ऐसा होता है कि बार बार बुखार आना शुरू हो जाता है मरीज को, और रक्त स्राव शुरू हो जाता है, पैरों हाथों व चेहरे पर सूजन हो जाती है, तो हम उसे समझाते हैं कि ये चीजें जो है गर्भवती महिला के लिए सही नहीं है, आप इसे स्वास्थ्य केंद्र में लेके जाएं या जिला अस्पताल में जाके इसको दिखाएं। और कई बार अब तो बहुत लोग ऐसे हैं जो कि बात को सुनते भी हैं,
0: अच्छा।
1: बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो कि इस तरह की बातों को ना सुनते होंगे, लेकिन अब जो है बहुत विशेष ध्यान रखा जा रहा है गर्भवती महिलाओं का, और सरकार भी बहुत सारी सुविधाएं प्रदान कर रही है जिसका वो लोग लाभ उठा रहे हैं।
0: अच्छा, कभी कभी बहुत गरीब महिला गर्भवती है और उसके पास खाने के लिए भी नहीं है इतना, और वो एनेमिक भी है
1: जी,
0: तो उसके खाने के भी व्यवस्था आप करती है या नहीं?
1: उसकी व्यवस्था सरकार ने एक ये हमारे मोदी जी ने एक सर जो प्रधानमंत्री जी ने एक मातृ वंदना योजना चलाई है, उसमें जब पहला टीका गर्भवती को लगता है तो उसके अकाउंट में पैसे आते हैं, उसे 5,000 रुपए दिए जाते हैं जब तक उसका प्रसव होता है, वो उसके खाने पीने के लिए है, उसके देखभाल के लिए। जो पहला जो चेक आता है उसको पहला टीका लगने के बाद आता है 1,000 रुपए का, ठीक है, उसके बाद फिर उसको जब दूसरा टीका लगता है तब मिलते हैं, और जब उसका बच्चा हो जाता है उसको भी तब भी मिलते हैं, 2,000 करके तब वो मिलते हैं।
0: तो ये तो सभी महिलाओं के लिए
1: सभी महिलाओं के लिए है।
0: अच्छा,
1: हाँ
0: अच्छा,
1: सभी के लिए।
0: अच्छा, ये जो जांच आप कराते हैं तो क्या ये आप स्वयं ही लेकर के आते हैं या उनसे बोल देते हैं?

0: महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान देखभाल में विशेष रूप से पौष्टिक भोजन खाने, आराम करने और प्रसवपूर्व सभी सेवाएं लेनी चाहिए जो कि सरकार उनको दे रही है।
1: अच्छा,
0: गर्भावस्था के दौरान संतुलित भोजन जिसमें अनाज हैं, दालें हैं जिसमें फलियां, गिरियां आदि शामिल होती हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, अगर वो मांसाहारी है तो दूध भी पी सकते हैं, अंडा मांस मछली शामिल होने चाहिए उनके उसके खाने में। परिवार वालों को गर्भवती के पौष्टिक भोजन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए उसको कि वो पौष्टिक भोजन खाए ज्यादा से ज्यादा।
1: अच्छा।
0: और गर्भावस्था के दौरान किसी भी तरह के खाने का परहेज जैसे करना नहीं चाहिए। अगर
1: अच्छा।
0: वो नहीं खा पाती है चलो वो दूसरी बात है।
1: हाँ।
0: लेकिन उसे किसी भी तरह के खाने का परहेज नहीं करना चाहिए, उसे सभी कुछ खाने के लिए देना चाहिए।
1: अच्छा, घर का वातावरण कैसा होना चाहिए गर्भवती महिला के लिए?
0: गर्भवती महिला के लिए घर का वातावरण खुशमय होना चाहिए, उसे किसी तरह की टेंशन ना हो, परेशानी ना हो, उसका परिवार वालों को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए।
1: अच्छा, इसके अतिरिक्त?
0: इसके अतिरिक्त तो भाई अपना पूरा ध्यान खुद भी रखना चाहिए गर्भवती को, पूरे समय पे अपना आराम भी करें, अपना खाना समय पे खाएं, जब भूख लगती है तभी खाना खाएं, ये नहीं कि इंतजार करती है कि अब खाने का समय होगा तभी हम खाएंगे, लेकिन जब उसको भूख लगती है उसे तभी कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा खा लेना चाहिए।
1: अच्छा, चार जांच तो आपने बता दी है
0: जी।
1: लेकिन जब उसका आखिरी पड़ाव होता है यानी नवा महीना चला होता है तो उस समय उसकी परेशानी अधिक बढ़ जाती है, तो उस समय आप उसको क्या सावधानी रखने के लिए कहती हैं?
0: उसके उसको हम उसको बता देते हैं कि कभी जैसे 36 सप्ताह हो जाते हैं, 9 माह पूरे हो गए, तो हम उसको बता देते हैं कि अगर आपको कोई रक्त स्राव की दिक्कत हो या बहुत ज्यादा पानी जा रहा हो तो आपको घर में नहीं रुकना है, सीधा आपको स्वास्थ्य केंद्र जाना है, वहां जाके अपने चेकअप कराने हैं।
1: अच्छा, जांच भी हो गई और हॉस्पिटल भी बुला लिया, उसके बाद जब बच्चे को वो जन्म देती है तो उसके बाद भी बहुत सारी बातों को ध्यान रखना होता है, तो उस समय आप उसको क्या सलाह देती हैं?
0: उसके लिए हम कहते हैं कि एक तो जैसे ही प्रसव होता है, प्रसव के बाद तुरंत पहले शिशु का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। शिशु को 1 घंटे के बाद ही माँ का दूध देना चाहिए, स्तनपान कराना चाहिए, स्तनपान उसके लिए बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, और फिर उसको माँ के पास ही लिटाना चाहिए जिससे उसे गर्मी मिले और बच्चे को गर्म रखना चाहिए।
1: अच्छा, जो माँ का दूध होता है वो कितनी देर बाद पिला देना चाहिए बच्चे को?
0: ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे के बाद।
1: अच्छा, 1 घंटे
0: तो तुरंत ही कह देते हैं तुरंत पिला दो, नहीं तो 1 घंटे के बाद तो दे ही देना चाहिए।
1: अच्छा, 1 घंटे के अंतराल पर बच्चे को दूध पिला देना चाहिए। कभी कभी माँ को दूध नहीं उतरता तो उस स्थिति में क्या करें?
0: लगाते रहो, स्तनपान कराते रहो बच्चे को।
1: अच्छा,
0: आप दूध उतरेगा?
1: अच्छा, तो अगर ना उतरे तो?
0: ना उतरे तो वैसे तो ऊपर का देना नहीं है क्योंकि बच्चे फिर बीमार हो जाता है, अगर हम ऊपर का कुछ उसे खिलाते पिलाते हैं या दूध देते हैं तो बच्चे के बीमार होने की संभावना बढ़ती है
1: जी। अच्छा, महिला को जो पहला गाढ़ा पीला दूध आता है जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं
0: जी,
1: तो अधिकतर बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं कि गाढ़ा पीला जो दूध होता है वो बच्चे के लिए सही नहीं होता।
0: वो गाढ़ा पीला दूध माँ का जो दूध है वो बहुत अच्छा है बच्चे के लिए, बहुत स्वास्थ्यवर्धक
1: अच्छा।
0: है वो, जो हम वो एक तरह का बच्चे के लिए टीकाकरण का काम भी करता है
1: अच्छा।
0: बच्चे को कई बीमारियों से बचाता है,
1: रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है,
0: रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, वो बच्चे को जरूर पिलाना चाहिए।
1: अच्छा,
0: निकाल के फेंकना नहीं चाहिए उस दूध
1: जी,
0: जरूर पिलाना चाहिए वो बच्चे को।
1: हमने जान लिया कि जांच भी, चार जांच होनी चाहिए, उसके बाद उसको खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आराम का ध्यान रखना चाहिए, और जैसे ही उसको गर्भ ठहरने का पता लगता है तो यदि उसको उल्टियां हो रही हैं तो उसके विषय में भी डॉक्टर से सलाह ले लेनी चाहिए जिससे कि वो एनेमिक ना हो। इसके अतिरिक्त आप हमारी बहनों से कुछ विशेष बात कहना चाहें तो संक्षेप में बताइए।
0: संक्षेप में यही कहना चाहेंगे कि एक एक बहुत ही सुखद अनुभव है महिला के लिए, और इसमें उसको घबराना नहीं चाहिए, गर्भवती महिला को पूरा अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए, समय समय पर अपने चेकअप जो है वो कराते रहना चाहिए, पौष्टिक आहार लेते रहना चाहिए, और अपना समय पे अपना जो समय है उस समय के अनुसार अपना आराम भी करना चाहिए, सारा दिन उसे काम में भी नहीं लगा रहना चाहिए
1: जी। यानी माँ बनना एक सुखद अनुभव है
0: बहुत,
1: और इससे घबराना नहीं चाहिए और अपना पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए,
0: एक पूरे परिवार में एक नया माहौल हो जाता है
1: जी।
0: ठीक है, इस माहौल को खुशनुमा ही बनाना चाहिए
1: जी। तो प्रीतम जी, आपने हमारी बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: बहनों, अभी तुम सबने सुनी यो पूर्व प्रसारित भेंट वार्ता, विषय था गर्भधारण के दौरान सावधानियां, जिसमें प्रीतम कौर से बातचीत कर रही थी अंजना। तो देखो, प्रीतम कौर जी ने कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई, हमें पूरी उम्मीद है कि जो बहनें इस टाइम माँ बनने वाली हैं उनके लिए ये भेंट वार्ता बहुत लाभदायक होगी, उन्हें बड़ा फायदा होगा इससे।

ध्यान दी से सुना होगा उन्होंने, और इन जो जो बातें उन्होंने बताई उनका वे खूब ध्यान रखेंगी और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगी। ओहो, ये देखियो रीना भिन्ना क्या खुसुर कर रही हैं पिंकी जीजे के कानों में। हाँ हाँ, समझ गए थारा इशारा। अब जय थारा जी कर रहे एक प्यारा से लो गीत सुनने का। तो लो बहना, थारे मन की बात भला कैसे ना पूरी होगी, आओ सुन लें यो प्यारा सा लोकगीत।

ए भिना, कैसा लगा लो गीत तुम्हें? देखिए मैं तो टाइम देखना भूल गई, आज थारी गैल बातें करने बैठ जाऊं तो टाइम ही भूल जाऊं। लो जी, होने वाला कार्यक्रम का वक्त पूरा। जाने से पहले थारे से जरूर कहेंगे कि आज का कार्यक्रम थारे को कैसा लगा। अपनी राय हमें चिट्ठी में लेके जरूर भेजियो, और भिन्ना कार्यक्रम में कुछ नापसंद लग रहा हो तो वो भी भेजियो चिट्ठी में लिख के, हम सुधार करने की कोशिश भी करेंगे। अगर थारा साथ और थारा प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहा तो चिट्ठी लिखने के लिए हमारा पता लिख लो, कार्यक्रम घर संसार, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 2467-63। अगर भिन्ना व्हाट्सएप चलाना जानती हो तो कार्यक्रम के बारे में अपनी राय हमें व्हाट्सएप मैसेज पर भी भेज सको हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख लो, 9457078288। इसी के साथ अपनी भिन्ना कुमुद को दो कार्यक्रम का समापन करने की अनुमति। बहनों, राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम घर संसार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम लोकधारा में श्रोताओं लीजिए पेश है शारदा सिंह के गाए राजस्थानी लोकगीत।

0: मैं बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है, वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है।
1: भारत और इंडोनेशिया ने उच्च शिक्षा में सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घोषणा की कि भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए अब रवाना हो गए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य प्रवासी समुदाय पर विशेष ध्यान देते हुए दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती प्रदान करना है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में मेलबर्न स्थित प्रख्यात फार्मासिस्ट और ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के सदस्य दीपक संघवी ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में अपने विचार साझा किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन आज से केरलम के कोची में आज सवेरे शुरू हुआ। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी तथा मंत्रालय में सचिव अनिल मलिक सहित अन्य मंत्री सम्मेलन के मुख्य सत्र में शामिल हुए। मुख्य सत्र के दौरान संयुक्त वक्तव्य जारी किया जाएगा। सम्मेलन में भाग ले रहे मंत्री ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के सिलसिले में आयोजित एक प्रदर्शनी का दौरा करेंगे और शिक्षा मंत्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महिला नेतृत्व आधारित विकास में भारत की उपलब्धियों को दर्शाने वाली प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। भारत वस्तु समझौते से संबंधित 13वीं आसियान भारत व्यापार संयुक्त समिति की नई दिल्ली में बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य आसियान भारत व्यापार समझौते की समीक्षा को आगे बढ़ाना है। संयुक्त समिति की बैठक और उससे जुड़ी बैठकें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से 10 जुलाई तक जारी रहेंगी। इन बैठकों से भारत और आसियान के बीच सहयोग और आपसी समझौता होगा। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय नवाचार चुनौती हथकरघा हैकाथॉन 2026 का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य देश के हथकरघा क्षेत्र को मजबूती देने के लिए प्रौद्योगिकी, डिजाइन और उद्यमशीलता का उपयोग करना तथा सतत समाधान प्रदान करना है। इस पहल का आयोजन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। ऑनलाइन पंजीकरण 20 जुलाई तक खुले हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समुद्री जैव विविधता का संरक्षण करते हुए खुले समुद्र में सतत मत्स्य पालन के लिए प्राधिकार पत्र तथा उड़ीसा गहरे समुद्री मत्स्य पालन मिशन का दस्तावेज कल उड़ीसा के भुवनेश्वर में जारी करेंगे। मत्स्य पालन विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में लगभग 1000 मत्स्य किसान और मछुआरे भाग लेंगे। प्राधिकार पत्र वर्ष 2026 के भारतीय ध्वज वाले मत्स्य पोतों द्वारा खुले समुद्र में मत्स्य संसाधनों के सतत दोहन संबंधी दिशा निर्देशों के तहत एक अनिवार्य प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली एनसीआर में 5 परिसरों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये छापेमारी सब्सिडी पर मकान खरीदारों को ठगने के 3 मामलों की चल रही जांच के सिलसिले में चलाया जा रहा है। इससे पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई जांच में पता चला है कि बिल्डरों ने सब्सिडी योजनाओं के नाम पर मकान खरीदारों और निवेशकों को धोखा दिया है। इससे ये भी पता चला है कि बिल्डरों ने पोजेशन तक कोई ईएमआई नहीं योजना शुरू की है, जिनके तहत घर खरीदारों ने आवास ऋण लेकर फ्लैट बुक किए। हालांकि कई साल बीत जाने के बाद भी उन्हें फ्लैटों का पोजीशन नहीं दिया गया है। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के बरोईपुर में दुष्कर्म और हत्या मामले का मुख्य आरोपी प्रभास मंडल मुठभेड़ में मारा गया है। मंगलवार और बुधवार की रात लगभग 12:45 पर घटना के नाटकीय रूपांतरण के दौरान प्रभास ने पुलिस अधिकारी की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश की और एक राउंड गोली चलाई। मुठभेड़ में प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे अस्पताल में मृत घोषित किया गया। इस मामले में गिरफ्तार 3 अन्य आरोपी फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया के चनापोरा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। ये सेना और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का संयुक्त अभियान था। आकाशवाणी से बातचीत में पुलिस महानिरीक्षक वीके बर्डी ने बताया कि घटनास्थल से हथियारों और गोला बारूद के साथ एक शव बरामद हुआ और उसकी पहचान की जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष अप्रैल में ही अलनीनो की चुनौती से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि अलनीनो निगरानी प्रकोष्ठ और नोडल अधिकारियों के माध्यम से बुवाई, फसल और बाजार की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। श्री चौहान ने कहा कि मॉनसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन, कपास और अन्य फसलों की बुवाई प्रभावित हुई है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज तेज बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से राज्य में तेज बारिश और बाढ़ को लेकर बात की। श्री शाह ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार संकट से निपटने में महाराष्ट्र सरकार की हर संभव सहायता करेगी। पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र के कई हिस्से तेज वर्षा से प्रभावित हैं। गृहमंत्री ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से राज्य में तेज बारिश और जलभराव से उत्पन्न स्थिति के बारे में भी बातचीत की और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। इस बीच केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वायनाड आपदा के संबंध में उनसे फोन पर बात की। श्री सतीशन ने कहा कि श्री शाह ने स्थिति का जायजा लिया और राहत और पुनर्वास प्रयासों के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। केरलम के मुख्यमंत्री ने बताया कि गृहमंत्री ने घटना की उच्च स्तरीय जांच की भी आवश्यकता पर बल दिया है। केरलम सरकार ने वायनाड भूस्खलन के मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा कि वायनाड घटना की विस्तृत जांच के बाद ही फिर से काम शुरू होगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 2 टीम अभी भी दुर्घटना स्थल पर मौजूद है। 5 लोग अभी भी लापता हैं और तलाशी अभियान जारी है। लद्दाख में स्थानीय मौसम विभाग ने नालों में तेज और अचानक जलधाराओं के खतरे और बाढ़ की आशंका की चेतावनी जारी की है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड ने सिक्किम को पश्चिम बंगाल से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 10 के एक खंड को 11 से 13 जुलाई तक अस्थायी रूप से एक दिन में 5 घंटे के लिए बंद करने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने आपातकालीन मरम्मत कार्य और वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20वें माइल बरदांग स्थित NH10 के एक हिस्से को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। ये मार्ग 11 से 13 जुलाई तक प्रतिदिन सुबह 5 बजे से 10 बजे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद रहेगा। यह बंदी चल रहे आपातकालीन मरम्मत कार्य के कारण आवश्यक है। अधिकारियों ने इस दौरान यातायात जाम और सुरक्षा संबंधी जोखिम की आशंका जताई है। यात्रियों के असुविधा कम करने के लिए NHIDCL ने वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था भी की है। मानुष प्रतिम शर्मा के साथ मोइनक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गांतोक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने होर्मुज गान प्रांत और माशहर बंदरगाह पर अमरीकी हमलों के जवाब में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। ईरानी मीडिया के अनुसार इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने मिसाइल और ड्रोन हमले करते हुए अमरीका के 85 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें बहरीन स्थित सलमान बंदरगाह और अमरीका के 5वें बेड़े का मुख्यालय तथा कुवैत में अली अल सलेम वायुसेना अड्डा शामिल है। एक रिपोर्ट।
3: ईरान के बुशहर प्रांत में अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया गया। इस बीच बहरीन के गृह मंत्रालय ने चेतावनी सायरन बजने पर लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है। इससे पहले होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हाल के हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के 80 से अधिक ठिकानों पर फिर हवाई हमले किए। ईरान की केंद्रीय सैन्य कमान ने इसे आक्रामकता और आतंकवाद का कृत्य बताते हुए जवाबी हमले की चेतावनी दी है। ईरान ने यह भी कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में किसी भी तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं दी जाएगी और न ही किसी को इस पर नियंत्रण करने दिया जाएगा। इस बीच अमेरिका ने अंतरिम समझौते के तहत ईरान को दी गई तेल बेचने की छूट रद्द कर दी है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमरीकी हमले और कार्रवाई द्विपक्षीय समझौतों का गंभीर उल्लंघन है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: और अब मौसम का भी रुख कर लेते हैं। मौसम विभाग ने देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा और बिजली चमकने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 से 3 दिन में उत्तरी अरब सागर, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों सहित पूरे देश में आगे बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के निचले इलाके, सिक्किम, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, कोंकण और गोवा तथा दक्षिण कर्नाटक के भीतरी भागों में आज मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सुबह से हल्की बारिश हो रही है, जिससे गर्मी से राहत मिली है। घरेलू शेयर बाजार के

0: सूचकांक के दोपहर के कारोबार में आज लगभग 0.8% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 590 अंक फिसलकर 77,591 पर, जबकि निफ्टी 185 अंक गिरकर 24,213 पर रहा। और अब खेलों में, अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वैंकूवर में स्विट्जरलैंड और कोलंबिया अंतरिक्त समय के समाप्त होने तक कोई गोल नहीं कर सका। इसके बाद पेनल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड ने 4-3 से जीत दर्ज की। वहीं क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटीना का मुकाबला स्विट्जरलैंड से होगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्री अमरनाथ यात्रा के लिए आज एक नया परामर्श जारी किया है। इसके अंतर्गत तीर्थयात्रियों से पंजीकरण प्रक्रिया और सुरक्षा दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक तीर्थयात्री सीमा लागू रहेगी। श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे अग्रिम पंजीकरण कराएं और यात्रा केवल अपने परमिट में तय तिथि पर ही करें। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग्याकर्ता में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल प्रांगण मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा, मंदिर के संरक्षण में भारत की भागीदारी दोनों देशों की साझा सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया यात्रा संपन्न। तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना। महिलाओं के सशक्तिकरण और सतत विकास के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए कोची में ब्रिक्स देशों की महिला मंत्रियों की 2-दिवसीय बैठक शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा और आंधी तूफान का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम संदेश.com। स्वागत है सभी श्रोताओं का कार्यक्रम संदेश.com में। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपसे गीत से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि हर बुधवार को हम पूछते ही हैं, और आपको उन प्रश्नों का हमें व्हाट्सएप के माध्यम से जवाब देना है। और इसके लिए आपको हम अपना व्हाट्सएप नंबर बता देते हैं। हमारा नंबर है 9457078288

बहुत सारे मैसेज जो हैं हमें मिल चुके हैं। तो ये गीत हमने लिया था फिल्म ज़बरदस्त से। गीत किबुल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। और हमने पूछा था कि इस गीत के गायक कलाकार कौन हैं, तो सही मैसेज करने वाले हमारे जो श्रोता हैं ये मैसेज भेजा है। बाजार समाना शहर पंजाब से, पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल और संगीता रानी जिंदल। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है, किशोर कुमार जो हैं गायक कलाकार हैं। अगला मैसेज ये हमें भेजा है गांव फरासी जिला हिसार से, राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी ने। गायक कलाकार आपने लिखा है किशोर कुमार, बिल्कुल सही जवाब आपका। और ये मैसेज हमें भेजा है संघमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से, जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता जी। बिल्कुल सही जवाब आपका भी, किशोर कुमार गायक कलाकार। और ये मैसेज हमें भेजा है कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। बिल्कुल सही आंसर है आपका किशोर कुमार। और ये मैसेज जो हमें भेजा है वीरम गाम गुजरात से, अजीत भावसार ने। आपका भी जवाब बिल्कुल सही है, किशोर कुमार जो है इसके गायक कलाकार थे। चलिए अब सुनिए अगला गीत और आपको बताना है कि ये गीत हमने कौन सी फिल्म से लिया है। एक बार पुनः बता दें कि गाना सुनकर आप बताइएगा कि ये गीत हमने कौन सी फिल्म से लिया है।

0: श्रोताओं, ये गीत हमने लिया था, अभी आपको बताते हैं, आवाज़ थी शब्बीर कुमार की, गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। और हमने प्रश्न किया था कि ये गीत हमने कौन सी फिल्म से लिया था, तो फिल्म का नाम है बेताब। और सही उत्तर देने वाले हमारे श्रोता है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलीश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार। आपका उत्तर बिल्कुल सही है, बेताब। आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महाराजा आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। आपका उत्तर भी बिल्कुल सही है, बेताब। आप हैं विलेज एंड पोस्ट राहु नगली आचार्य से सत्यवीर सिंह, अलका चौहान, अक्षय चौहान और भूमिका चौहान अंशिका। आपने जवाब लिखकर नहीं भेजा है, केवल नाम लिखकर भेज दिए हैं। चलिए कोई बात नहीं। और अगला ये जो हमें उत्तर भेजा है, सिद्धार्थ नगर जिला नांदेड़ से आरती छोटी बबली रूपाली वंदना और सरूबाई ने। आपका उत्तर भी बिल्कुल सही है, फिल्म बेताब। और ये जो हमें मैसेज भेजा है अगला, चकला बाज़ार समाना शहर पंजाब से। आपका उत्तर भी बिल्कुल सही है, फिल्म बेताब। आप हैं पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल और हंसमुख लाल जिंदल। और आपने मैसेज किया है हमें मुंबई से अनु बड़जात्या, शमशुल खान और अनुराज बेनारा ने। आपका उत्तर भी बिल्कुल सही है, बेताब। और अगला मैसेज हमें ये किया है वीरम गांव गुजरात से अजीत कुमार भावसार ने। आपका जवाब भी बिल्कुल सही है, बेताब। और ये मैसेज हमें किया है कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़ और ओमकार गायकवाड़। आपका भी बिल्कुल सही उत्तर है। और ये मैसेज हमें किया है चलिए आपका थोड़ा हमें समझ नहीं रहा, चलिए अगले गाने को सुनकर आप सही आंसर दीजिएगा। चलिए अगला गाना आपको सुनना है और बताना है कि इस गीत के गीतकार कौन है। गीत सुनकर आपको बताना है कि इस गीत के गीतकार कौन है।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते

0: श्रोताओं, आपने एक गीत सुना तो आपको बता देते हैं कि ये गीत हमने लिया था फिल्म अंदाज से। आवाज़ किशोर कुमार की थी, संगीत शंकर जयकिशन का। और हमने पूछा था कि इस गीत के गीतकार कौन है, तो सही उत्तर देने वाले हमारे श्रोता हैं मुंबई से अनु बड़जातिया, शमशुल खान और अनुराज मनारा। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है हसरत जयपुरी ने। और ये मैसेज हमें भेजा है थारबू ज़िला यवतमाल से संतोष खड़ से और विनोद खड़ से। आपका जवाब बिल्कुल सही है हसरत जयपुरी। और ये मैसेज हमें भेजा है गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, दैनी पवार और मनीष पवार ने। आपका जवाब भी बिल्कुल सही है हसरत जयपुरी। और ये मैसेज हमें भेजा है चकला बाज़ार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, हंसमुख लाल जिंदल, पप्पू अनमोल खुशदिल और संगीता रानी जिंदल ने। आपका जवाब भी बिल्कुल सही है हसरत जयपुरी। श्रोताओं, आप सुनते रहिए आकाशवाणी नजीबाबाद। हम अभी हाजिर होते हैं इन संदेशों के बाद।
1: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
2: तो इंतजार किस बात का,
1: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
1: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
2: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
1: और हमारा ईमेल आईडी है
2: akashwaninajibabad@gmail.com।
1: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
2: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
3: शास्त्रीय संगीत का अमृत कलश रागम, भारतीय शास्त्रीय संगीत को समर्पित आकाशवाणी का बेहतरीन चैनल रागम, डीटीएच पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए इंटरनेट और आपके मोबाइल ऐप पर भी। रागम, आनंद की अटूट रसधार।
0: श्रोताओं, आपको सुनना है कार्यक्रम का अगला गीत और बताना है कि इस गीत के संगीतकार कौन है। हम अपने श्रोताओं को इस कार्यक्रम के लिए यानी संदेश.com के लिए अपना नंबर पुनः बता देते हैं। जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं उनको बता दें, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288 9457078288। श्रोताओं सुनिए ये गीत और मैसेज करिए कि ये जो गीत है इसके संगीतकार कौन है।

चलिए हम आपको बता देते हैं कि ये फिल्म हमने लिया था कारवां से, ये गीत हमने लिया था फिल्म कारवां से। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की। गीत की बोल लिखी थी मजरू सुल्तानपुरी ने, और हमने प्रश्न किया था कि इस गीत के संगीतकार कौन हैं। तो इस गीत के संगीतकार हैं आर डी बर्मन जी। तो चलिए यह मैसेज पढ़ लेते हैं। ये मैसेज हमें भेजा है मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताइडे और आशीष मुहरेकर। आपने जवाब नहीं भेजा है, चलिए कोई बात नहीं। ये मैसेज हमें भेजा है चकला बाज़ार समाना शहर पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल, पप्पू अनमोल, संगीता और हंसमुख ने। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि इस गीत के संगीतकार जो हैं वो आर डी बर्मन हैं। और ये मैसेज हमें भेजा है वीर माता गुजराव से अजीत भाव सार ने। आपने जवाब दिया है जवाब राहुल देव बर्मन ने। जी बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। इनका जो पूरा नाम है वो राहुल देव बर्मन ही है। और ये मैसेज हमें भेजा है गांव फरासी ज़िला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी ने। और आपका जवाब भी बिल्कुल सही है आर डी बर्मन। और ये हमें भेजा है मुंबई से अनुबट जादिया, शमशुल खान और अनुराज ने। आपका जवाब भी बिल्कुल सही है आर डी बर्मन। और आप हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलीश पवार, मनीष पवार, डैनी पवार। आपका जवाब भी बिल्कुल सही है आर डी बर्मन। तो श्रोताओं अब समय हमें इजाज़त नहीं देता है कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। तो इसी के साथ संदेश.com कार्यक्रम संपन्न करने की हमें आगे दीजिए। नमस्कार। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 314.47 मीटर यानी 954 किलो हर्ट्ज पर। इस समय दिन के 3 बज चुके हैं। अब हमारी आज की ये प्रसारण सभा यहीं पर संपन्न होती है। अपनी अगली प्रसारण सभा में शाम 5 बजे पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5 बज रहे हैं। हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के प्रसारण अब आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत। श्रोताओं, कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, इस कार्यक्रम में हम आपके लिए समय समय पर महत्वपूर्ण और उपयोगी जानकारियों के साथ साथ विभिन्न योजनाओं के विषय में भी जानकारियां लाते रहते हैं। और देखिए श्रोताओं, आज एक बार फिर हाजिर हैं हम ऐसी ही महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारियों के साथ। और श्रोताओं, इन महत्वपूर्ण और उपयोगी योजनाओं के नाम है प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना और रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना। तो श्रोताओं, सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के बारे में। श्रोताओं, आप जानते ही हैं कि हमारा देश एक विकासशील देश है जो निरंतर विभिन्न नवीन तकनीकों और आधुनिकता के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। यहाँ भारत सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन और क्रियान्वयन भारतीयों के विकास के लिए किया जाता रहा है। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 अक्टूबर सन 2021 को की गई थी। ये योजना एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान है जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना और सड़क, रेलवे, बंदरगाह और विमानन जैसे 16 विभागों को डिजिटल प्लेटफॉर्म देना तथा इनके बुनियादी ढांचों का समन्वित और त्वरित विकास करना भी है। इसके अतिरिक्त ये योजना एक एकीकृत पोर्टल भी प्रदान करती है जहां 16 से अधिक मंत्रालयों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है ताकि सभी परियोजनाओं को बिना किसी देरी के वास्तविक समय में मॉनिटर किया जा सके। इस योजना के 7 प्रमुख इंजनों में रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, जन परिवहन और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा शामिल है जिनका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देना है। श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि मास्टर प्लान उद्योगपतियों और निवेशकों को आवश्यक भौगोलिक और अवसंरचनात्मक डेटा तक सीधी पहुंच भी प्रदान करता है, भारत में व्यापार को सुगम बनाता है। श्रोताओं, इस योजना का लक्ष्य लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए, परिवहन के लिए विभिन्न साधनों को आपस में निर्बाध रूप से जोड़ना भी है जिससे रसद लागत में कमी आएगी और भारतीय उत्पाद वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे और कई व्यापारों के साथ स्वरोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले विभिन्न विभाग बिना आपसी समन्वय के साथ काम करते थे, जैसे सड़क बनने के बाद पाइपलाइन डालने के लिए फिर से सड़क खोदना, लेकिन अब इस योजना के तहत सभी विभाग मिलकर योजना बनाते हैं ताकि पैसे और समय दोनों की बचत होती है। श्रोताओं, बात करते हैं रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना के बारे में। श्रोताओं, RBI खुदरा प्रत्यक्ष योजना छोटे और व्यक्तिगत निवेशकों को बिना किसी बिचौलिए के सीधे सरकारी प्रतिभूतियों और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ऑनलाइन निवेश करने की सुविधा प्रदान करती है। इस योजना के तहत निवेशक सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के साथ निशुल्क रिटेल डायरेक्ट गिल्ट खाता खोल सकते हैं जिसके जरिए निवेशक केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिल्स, गोल्ड बॉन्ड की प्राथमिक और द्वितीयक दोनों बाजारों में आसानी से खरीद और बिक्री कर सकते हैं। श्रोताओं, बात करें इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक योग्यता की, तो भारत का कोई भी बचत खाता धारक व्यक्तिगत निवेशक जिसके पास पैन नंबर और KYC दस्तावेज हों, वो इस योजना का लाभ उठा सकता है और इसका पात्र हो सकता है। इस योजना में न्यूनतम निवेश राशि 10,000 से शुरू होती है और अधिकतम सीमा प्रतिभूति 2 करोड़ रुपए तक निर्धारित की गई है। श्रोताओं, इन प्रतिभूतियों को सरकार का समर्थन प्राप्त होता है, इसलिए इनमें पैसा डूबने का जोखिम 0 के बराबर होता है। इसे रिस्क फ्री निवेश भी माना जाता है। निवेशकों को एक तय समय पर ब्याज का भुगतान किया जाता है जिससे आय का एक स्थिर जरिया भी प्राप्त होता है। साथ ही ये आपके निवेश पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखने में और शेयर बाजार के
उतार चढ़ाव से बचाने का एक बेहतरीन जरिया भी है, और इसके सरकारी पेपर्स को बैंक में गिरवी रखकर आसानी से लोन भी लिया जा सकता है।

अभी आप सुन रहे थे पीएम गति शक्ति योजना और रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना के विषय में जानकारी। और श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम मेरा सपना उन्नत भारत अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज की सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी। सबसे पहले आज के शेष कार्यक्रमों पर नजर डालते हैं। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। रात्रि 10 आप सुन सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, जिसमें हमारा आज व्हाट्सएप मैसेज का विषय रहेगा गर्मियों के वो दिन और गर्मियों के ये दिन। श्रोताओं, इस विषय पर आपको पिछली गर्मियों के वो जो दिन होते हैं और आज की गर्मियों में जो अंतर होते हैं उनके विषय में हमें बताना है। सुरेंद्र कौर की आवाज़ में शब्द सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत में आज संध्या 7:45 पर।

कानून की बात ये कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ से रिले किया जाएगा आज संध्या 7:30 पर। कार्यक्रम विविधा में आज संध्या 6:45 पर सुनिएगा डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह की ये हिंदी वार्ता, जिसका विषय रहेगा भीष्म साहनी का नाट्य शिल्प। कृषि जगत कार्यक्रम में आज संध्या 6:05 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे खरीफ में दलहन और तिलहन उत्पादन, इस विषय पर डॉक्टर श्यामलाल गुप्ता से नरेश पाल सिंह की बातचीत।

आज संध्या 5:15 पर हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, जिसमें आज के मुख्य आकर्षण होंगे, बूझो तो जाने कुछ खास है आज, यूथ कनेक्ट, लव स्टोरी, बूस्टर्स, साथ ही सुनिएगा फिल्म संगीत। फिल्मी गीतों का आनंद आप ले सकते हैं आज संध्या 6:55 पर कार्यक्रम छाया गीत में, रात्रि 8 बजे कार्यक्रम गीत संध्या में, रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम एक ही फिल्म से में, फिल्म मैंने प्यार किया के गीतों के साथ। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष कार्यक्रमों के संदर्भ में।

45 मिनट पर हम आपको सुनवाएंगे रविंद्र त्यागी की हिंदी वार्ता, जिसका विषय रहेगा शांति और विकास, एक सिक्के के दो पहलू। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में कल प्रातः 7:05 पर जानकारी का विषय रहेगा क्या कहती है दिल की धड़कन। खेती की बातें कार्यक्रम में कल प्रातः 7:10 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे जानकारी भूमि सुधार की विभिन्न विधियां। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकधारा में कल दिन में 1:45 पर हम आपको सुनवाएंगे लता कुंजवाल के गाए कुमाऊनी लोकगीत मेरा सपना उन्नत भारत। इस कार्यक्रम में कल संध्या 5 जानकारी का विषय रहेगा मलिन बस्तियों का सुधार और सरकारी सेवाओं में भर्ती। धरती गाती है, इस कार्यक्रम में कल प्रातः 9:25 पर हम आपको सुनवाएंगे रूबी रस्तोगी के गाए रुहेलखंडी लोकगीत। कल रात्रि 10 आप सुनेंगे रूपक, जिसमें आप सुनेंगे हिंदी साहित्य में तुलनात्मक आलोचना के जगत जनक पंडित पदम सिंह शर्मा। आलेख है अमन कुमार का, प्रस्तुति सहयोग इकबाल अहमद का और प्रस्तुतकर्ता होंगे सुशील त्यागी और अनिल भारती। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों के संदर्भ में। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 5:15 हो रहे हैं। अब हमारे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: कोई अब्र उड़े किसी कुलजूम से, रसबर से मेरे वीराने पर, कोई जागता हो कोई कुड़ता हो मेरे देर से वापस आने पर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुमायला और आज आप सुन रहे हैं प्रोग्राम युववाणी। हमारे शेर से, जो मुझे लगता है आप इन्फ्लुएंस हुए होंगे हमारी और आज की कैफियत को।
1: नमस्कार, मैं हूँ सुपर जैदी और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी। देखिए, वक्त कम है, बात बारिश पर करनी है रेलगाड़ी पर और असंभव से आगे की,
0: तो तभी रस बरसे मेरे वीराने पर।
1: शुक्र करो कि थोड़ा ही सही, मगर बरसा तो, वरना तो गाने बजने वाले की जो झोंमाए झों, कल को पड़ेगी रो आज पड़ेगी बूंदा बांदी, ये गाने सुनने पड़ते।
0: हाँ, हाउ क्यूट, क्या वक्त था ना जब हमें लगता था कि अच्छा। चलो दोस्तों, आपको बताते हैं कि होता क्या था। जब बारिश नहीं होती थी तो छोटे छोटे बच्चे अपने मोहल्ले से आटा चावल इकट्ठा करके ले आते थे, शायद आज भी लेके आते होंगे। अब हम बड़े हो गए हैं तो हमारा ध्यान उस जगह से, उस वक्त से थोड़ा हट गया है, और खाना वगैरह बनता था और गीत भी गाए जाते थे। फिर सब
1: लोग मिलकर प्रार्थना करते थे कि भाई बारिश जरा इधर भी आ जाओ।
0: तो खैर, मूव ऑन, जितनी जिंदगी तेज दौड़ी कि वो गाने अब कहाँ सुनाई देते हैं।
1: तो सवाल है कि गाड़ी दौड़ी कैसे, हाउ,
0: पहियों पर,
1: बनी कब,
0: कौन?
1: अरे छुक छुक गाड़ी, ऑफ कोर्स मैं ट्रेन की बात कर रही हूँ, ना कि जिंदगी वाली गाड़ी की। कोई एसटी काइलिन बरसी आपके दिमाग पर।
0: ओहो, तो सुनो मेरे डोपामिन का कमाल। तो ट्रेनें बनी इंग्लैंड में सन था 1825।
1: ओके,
0: और इंडिया की पहली ट्रेन थी जो 3 इंजन से चलती थी, साहिब, सुल्तान और सिंध।
1: अब ये भारत में कब चली ये आप बताएंगे।
0: सेगमेंट बूझो तो जाने का सवाल बनाकर पूछते हैं हम आपसे, भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली।
1: कब चली ये आप बताइए, एबी पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के कमेंट सेक्शन में जाकर क्यों का हम बताते हैं। तो हुआ ये कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में ट्रेन चलाने का मकसद था देश अलग अलग हिस्सों में कच्चा माल आसानी से पहुंचाना
0: और सैनिकों को तेजी से इधर उधर भेजा जा सके, जिससे, और ट्रेन चली थी मुंबई से बोरी बंदर के थाने तक, यानी समझ लो आप 34 किलोमीटर तक।
1: तो जी बस आप हमारे कब वैन का जवाब दीजिए, हम आपको सुनाते हैं ठंडे मौसम में ठंडा सा गीत।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोट-पोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा।
0: जी हाँ, मजा आ गया।
3: कितना बकवास खाना बनाया है। अरे कम से कम खाना बनाना तो सीख लो, बस बातें करवा लो बैठा के।
2: ओफो पति देव, आपको स्वाद नहीं आ रहा? इतना अच्छा तो बना है।
3: अरे नहीं आ रहा है मुझे स्वाद, क्या करूं मैं, स्वाद होगा खाने में तभी तो आएगा।
2: अब आप कुछ मत करो, आराम से बैठो, जो करना है मैं करूंगी। क्या करूं, एम्बुलेंस को फोन करती हूँ। हेलो हेलो भैया, मेरे पति को कोई भी स्वाद नहीं आ रहा है, आप इन्हें फौरन ले जाइए, लगता है इन्हें क्वारंटीन होने की जरूरत है।

0: कहाँ फंसा दिया मुझे, अच्छा खासा कह देता कि स्वाद आ रहा है। अब रोज घर से टिफिन आता है और साथ में एक चिट्ठी भी। आया स्वाद?
1: जी हाँ, मजा आ गया।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: वेलकम बैक दोस्तों। तो जी, क्या आप कुड़ते हैं हमारे देर से वापस आने पर?
4: असंभव। जिस ब्रेक में गीत हो और हो बूस्टर डोज, उस ब्रेक को ब्रेक नहीं कहते सेनोरिटा, शुमाइला।
0: हाँ, और आपको मैं ड्रामा कह सकती हूँ। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा कि थॉमस एल्वा एडिसन अगर ये मान के बैठ जाते कि बल्ब बनाना असंभव है तो फिर?
4: और अगर मार्कोनी ये ठान लेते कि रेडियो उनके बस का नहीं है तो?
0: तो ना बल्ब जलता ना रेडियो होता। और ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल हैं। शाहरुख खान एक्टर नहीं होते, नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री नहीं बनते, और ये सब सिर्फ एक थॉट से आगे है, वो है असंभव से आगे।
4: वो जो हमारे घर के सुपर हीरो हैं ना, हमारे और आपके पापा और दादा, वो सब भी तो बस इस एक वाक्य से ही आगे हैं।
0: यू नो, दिल इन सबका भी घबराता है, हाथ भी कांपते हैं, फेल ये भी होते हैं, मगर इनकी एड्रेनल ग्लैंड इतना असर नहीं रखती, वो बेबस हो जाती है।
4: इन सबके जज्बे को देख कर एग्जाम्पल बहुत है। जरा एक सेकेंड, हम बात कर रहे हैं असंभव से आगे की। असंभव से आगे क्या होता है?
0: किसान होता है असंभव से आगे, जो एक बीज से एक पूरा अनाज बनाता है। पहले बीज बोता है, फिर वो उसकी देखभाल करता है और पौधा बनाता है।
4: एंड ट्विस्ट, अगर चावल उगाने हैं तो बारिश चाहिए, और बारिश नहीं होती तो किसान घबराता नहीं, सब्र और समझ से काम लेता है।
0: पानी नहर से मिल जाता है, अब फसल काटने की बारी आती है तो बारिश आ जाती है, तब भी वो समझ से काम लेता है।
4: पूरे प्रोसेस में एक बार भी असंभव नहीं आया है ना। इट मीन्स कि जो लोग अपने वादे के पक्के और इरादे के मजबूत होते हैं, वो असंभव से आगे होते हैं।
0: तो दोस्तों, ये हमारी आज की खास बातचीत सेगमेंट कुछ खास है आज में। आप अब सुनिए यूथ कनेक्ट।
4: जी, गए दिन की जहां तन्हा थे मैं अंजुमन में, यहां अब मेरे राजदा और भी हैं।
5: तो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं आकाशवाणी के स्टूडियो से बाहर। जैसे कि आप जानते हैं, आज है बुधवार और हर बुधवार को हमारा सेगमेंट जाता है यूथ कनेक्ट। तो मैं हूं शुमाइला और मेरे साथ है यहाँ पर यूसुफा। तो यूसुफा बढ़ते हैं हमारे पहले युवा साथी के और, जिसमें हम जान लेते हैं सबसे पहले इनका नाम।
6: मेरा नाम राशि शुक्ला है।
5: तो राशि, कैसी हैं आप?
6: मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ।
5: अच्छा राशि, हम आकाशवाणी से हैं और हमारा एक सेगमेंट होता है यूथ कनेक्ट, जिसके अंदर सब सेगमेंट होता है समय की सैर, यानी कि जिसमें हम आपको टाइम ट्रेवल के थ्रू पीछे भेज देते हैं, और जिसमें आपको अपनी जिंदगी का कोई भी डिसीजन जिसे आप बदलना चाहो वो बदलने का मौका मिलता है। तो अगर आपके पास कुछ ऐसा चांस हुआ जिसमें आप बदलना चाहें कुछ, तो क्या बदलेंगी?
6: मैं जो अभी एज हम जी रहे हैं, मैं इस एज को बदलना चाहूंगी और मैं वापस अपनी यंग एज में जाना चाहूंगी। जो कॉलेज से पहले और शादी से पहले वाली लाइफ है, मैं उसमें जाना चाहूंगी।
5: तो अभी आप मैरिड हैं?
6: यस, आई एम मैरिड।
5: अच्छा, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैरिड लाइफ से बेहतर हमारी अनमैरिड लाइफ होती है?
6: अनमैरिड नहीं, लेकिन हाँ, बचपन वाली लाइफ बहुत बेहतर होती है। ऐसा नहीं कि अनमैरिड लाइफ में ही बहुत सारे टेंशन हैं, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो आपकी बचपन वाली लाइफ है उसमें आपको कोई टेंशन नहीं है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, आप बहुत फ्री हैं, आप जैसा चाहे वैसे जी सकते हैं।
5: ओके, तो अच्छा, आपने आकाशवाणी नजीबाबाद के बारे में सुना है पहले?
6: जी, मैंने सुना है।
5: अच्छा, आपने किससे सुना?
6: मैंने अपनी फ्रेंड से सुना है।
5: ओके, तो आपको पता है हम सोशल मीडिया पर भी हैं आजकल?
6: जी, मुझे पता है, मैं आपकी बहुत सारी रील्स भी देखती हूँ, मैं फॉलो भी करती हूँ।
5: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच राशि।
6: थैंक यू।
5: तो यूसुफा, ये तो थी हमारी युवा साथी राशि, जिन्होंने बहुत अच्छी बात हमसे आज शेयर की है कि जो टाइम पीरियड होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है और बहुत सुकून भरा होता है। मुझे लगता है तुम भी अग्री करोगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नए युवा साथी की ओर, जो हमारा बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इनसे इनका नाम।
7: मेरा नाम सामिया है।
5: सो सामिया, कैसी हैं आप?
7: बढ़िया, आप बताएं।
5: जी, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो सामिया, हम आकाशवाणी से हैं और आज हमारा सेगमेंट है यूथ कनेक्ट, जिसमें एक सब सेगमेंट जाता है अरे दीवानो मुझे पहचानो। तो आप जानना चाहेंगे इसमें क्या होता है?
7: बिल्कुल।
5: तो इसमें एक्चुअली होता है ऐसे कि आपको अपनी एक क्वालिटी बतानी होती है और एक कमी, यानी कि क्वालिटी जो आपको आपकी बहुत अच्छी लगती है और कमी जिसे आप इंप्रूव करना चाहती हैं। तो आपकी क्या क्वालिटी है?
7: आई एम वेरी गुड शेफ।
5: ओके, तो आप बहुत अच्छी शेफ हैं। yes. और कमी?
7: मुझे एंगर इश्यूज है, शॉर्ट टेम्पर्ड है आप।
5: ओके, तो आप कुछ कर रही हैं अपने इस कमी को पूरा करने के लिए, इसे ओवरकम करने के लिए?
7: ट्राई कर रही हूँ, हो जाए।
5: ट्राई कैसे कर रही हैं आप?
7: कुछ चीजें एडजस्ट करके
5: कंट्रोल करके अपने ऊपर। ओके, एंगर इश्यूज आजकल बहुत ज्यादा नॉर्मल होते हैं दोस्तों, तो हम सभी को इस पर कंट्रोल होना आना चाहिए, है ना। थैंक यू सो मच सामिया हमसे जुड़ने के।
7: मोस्ट वेलकम।
8: तो शुमाइला, हमें हमारे सब सेगमेंट अरे दीवानों मुझे पहचानो और समय के सैर के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग आंसर मिल गए हैं, जो कि हमारे लिसनर को भी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे लगेंगे सुनने में। अब हम बारी हमारे नेक्स्ट सेगमेंट हू बहू की, और उसके लिए मुझे अब एक नई साथी भी नज़र आ रही हैं जो कि बहुत प्यारी भी लग रही हैं। आप जान लेते हैं सबसे पहले उनका नाम। आपका नाम?
9: मेरा नाम शाहरोज है।
8: तो शाहरोज, कैसी हैं आप?
9: मैं ठीक हूँ।
8: तो शाहरोज, हमारे जैसे कि आपने सुनाई है कि सब सेगमेंट का नाम है हू बहू, तो इसके अंतर्गत हमारा सवाल होता है कि अगर आपको अपनी लाइफ किसी के साथ एक्सचेंज करनी हो तो वो कौन होंगे? वो सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, वो कोई पॉलिटिकल नेता भी हो सकते हैं, और वो कोई आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं। तो आप किसके साथ अपनी लाइफ एक्सचेंज करना चाहती हैं?
9: मैं अपने पापा जैसा बनना चाहती हूँ।
8: आपके पापा में ऐसी क्या क्वालिटी हैं जो आपको बेहद पसंद आई और आप उन्हीं की तरह बनना चाहती हैं?
9: वो दुनिया में सबसे अलग थे, उनके जैसा कोई हो नहीं सकता, इसलिए मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ, उनके हूबहू कदमों पे चलना चाहती हूँ।
8: ओके, तो फिर आप उनकी तरह ही बनना चाहती हैं। तो चलिए, आप उनकी तरह बनिए और हमारा प्रोग्राम ज़रूर सुनिए। और दोस्तों, आप भी सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम, तो सुनते रहिए और लगातार बने रहिए। अब लेकर चलते हैं हम आपको अपने अगले सब सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है गलत है तो सही। अब कि देखते हैं कि हमें आंसर क्या क्या मिलने वाला है।
5: तो दोस्तों, बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट युवा साथी की ओर। तो यूसुफा, अब हमने बात की हमारे दोस्तों से, अगली जो हमारी साथी है इनसे जुड़ते हैं। दोस्तों, जान लेते हैं इनसे इनका नाम।
10: हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्वर्णिमा है।
5: हाय स्वर्णिमा, कैसी हैं आप?
10: मैं ठीक हूँ मैम, आप बताओ आप कैसे हो?
5: हम भी बहुत अच्छे हैं। आपको पता है हम आकाशवाणी से?
10: जी मैम पता है।
5: तो आप फॉलो करती हैं आकाशवाणी?
10: जी यस, मैं आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ।
5: ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप हमें फॉलो करती हैं। तो हम जो है यहाँ पे स्वर्णिमा, उसी प्रोग्राम से रिलेटेड आए हैं, आकाशवाणी नजीबाबाद के युवाणी प्रोग्राम से। तो हमारा एक सेगमेंट जाता है यूथ कनेक्ट, जिसमें सब सेगमेंट होता है गलत है तो सही है। तो हम आपसे इसमें कुछ सही क्वेश्चंस पूछेंगे जिनके जवाब आपको गलत देना है। आप समझ रही हैं?
10: यस मैम।
5: तो आपको बताना है सूरज का रंग कैसा होता है?
10: सूरज का रंग नीला होता है।
5: पेड़ क्या देते हैं?
10: आग।
5: पानी क्या काम करता है?
10: जलाने का काम करता है।
5: स्कूल क्यों होते हैं?
10: एंटरटेनमेंट के लिए।
5: बहुत अच्छा लगा हमें आपसे जुड़ के, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।
10: यस मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।
11: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: शुमाइला ने जो स्टार्टिंग में शेर कहा था, उसका मतलब यही है कि कोई गहराई से कोई अब्र उड़े और उनके वीराने पे बरस जाए, उनके लिए भी कोई तड़पे, है ना। तो ये तो शेर किसी शायर ने लिखा। आज हम आपको सुनाएंगे ऐसी मोहब्बत की दास्तान जिसका टाइटल है तुमसे ही और एपिसोड नंबर है 3, जिसे पेश किया है अक्षय त्यागी ने। तो सुनिए कि आज का एपिसोड में होता क्या है, क्या मोहब्बत किसी को मिल जाएगी या मिलेगा धोखा या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो ये पूरी दास्तान तो आपको सुनने के बाद ही पता चलेगा। तो सुनिएगा एपिसोड नंबर 3, लव स्टोरी।

0: हेलो दोस्तों, मैं अक्षय त्यागी आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी डायरी से एक बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी, तुमसे ही, जिसके दूसरे भाग में आपने सुना तरुण और अनामिका एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं और एक साल बाद भी तरुण उसकी तलाश में है। तो आइए चलते हैं आगे और सुनते हैं कि आगे क्या होगा एपिसोड 3 बिछड़ने की वजह में।
1: कर दिया मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया।
0: एक साल बीत चुका है, तरुण अब पहले जैसा नहीं रहा, हंसना तो जैसे भूल ही चुका है। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक रेडियो स्टेशन में म्यूजिक प्रोड्यूसर की नौकरी करने लगा। उसकी मेज की दराज में आज भी एक पुरानी पारदर्शी फाइल रखी है। वो वही है जो उसने पहली बार बारिश वाले दिन अनामिका को दी थी। हर साल उसी तारीख को वो उसी चाय की दुकान पर जाता, शायद इस उम्मीद में कि अनामिका एक बार फिर अचानक सामने आ जाए, लेकिन हर बार उसे सिर्फ और सिर्फ इंतजार मिलता।

0: हेलो, क्या आप तरुण बोल रहे हैं?
1: जी, मैं तरुण बोल रहा हूँ। आप कौन?
0: मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। हमारे पास अनामिका नाम की एक लड़की की पुरानी फाइल है, उसमें आपका नंबर इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के रूप में दर्ज है, तो सोचा आपसे कॉन्टेक्ट कर लिया जाए।
1: ये सुनकर तरुण जैसे पत्थर का हो गया।
0: अनामिका, कैसी है वो और कहाँ है?
1: देखिए, आप कल सुबह अस्पताल आ जाइए, मैं फोन रखती हूँ।
0: उस रात तरुण की आंखों में नींद तो थी ही नहीं, था तो बस अनामिका का चेहरा। वो सुबह जल्दी उठता है और अस्पताल पहुंच जाता है, और अस्पताल में उसके सामने एक ऐसा सच आता है जिसे सुनकर वो दहल जाता है। एक डॉक्टर उसे अपने केबिन में बुलाते हैं।
1: तरुण, आप प्लीज मेरे केबिन में आइए।
0: आप अनामिका के बहुत करीब थे ना?
1: जी, मैं उससे प्यार करता था।
0: एक साल पहले अनामिका को दिल की एक गंभीर बीमारी का पता चला था। इलाज संभव था, लेकिन सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। उसने किसी को बताने से मना कर दिया, खासकर आपको। तरुण की आंखें नम हो जाती हैं।
1: उसने मुझे क्यों नहीं बताया डॉक्टर?
0: क्योंकि उसने कहा था अगर मैं बच गई तो लौट आऊंगी, और अगर नहीं बची तो तरुण मुझे रोते हुए नहीं, मुस्कुराते हुए याद करे।
1: ये सुन तरुण कुर्सी पर बैठ जाता है।
0: उसे महसूस होता है कि जिस लड़की को उसने बेवफा समझा, वो तो आखिरी सांस तक उसी से प्यार करती रही। डॉक्टर उसे एक छोटी सी डायरी देते हैं। पहले पन्ने पर लिखा होता है, प्रिय तरुण, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद उस समय मैं तुम्हारे सामने ना हूं। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई, और ना ही मैं तुम्हारी जिंदगी में दर्द बनकर रहना चाहती थी। मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा, मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं तुम्हें टूटते हुए कभी नहीं देखना चाहती थी तरुण। और तरुण फूट फूट कर रो पड़ता है। डॉक्टर धीरे से कहते हैं, एक बात और है तरुण। तरुण उनकी ओर देखता है। अनामिका का ऑपरेशन हुआ था।
1: मतलब डॉक्टर, सच में वो बच गई?
0: ऑपरेशन सफल रहा था, लेकिन होश में आने के बाद अनामिका ने अपनी याददाश्त खो दी। तरुण के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। मगर कुछ महीनों बाद ही उसके मामा उसे दूर शहर ले गए थे। अब तो हमें भी नहीं पता कि वो कहाँ है, कैसी है। तरुण की आंखों में फिर वही उम्मीद लौट आती है।
1: डॉक्टर, मतलब तो यही है ना कि वो अभी जिंदा है? क्या हुआ अगर उसकी याददाश्त चली गई तो? मैं लाऊंगा उसकी याददाश्त वापस।
0: तरुण नौकरी छोड़ देता है। वो शहर शहर भटकता है, अस्पताल अस्पताल भटकता है, और लोगों से पूछता फिरता है। ऐसे ही दिन, महीने, साल गुजर जाते हैं, कोई सुराग नहीं मिलता। रोहन भी उसे काफी समझाता है।
1: तरुण, कभी कभी हिम्मत हमें वहीं ले जाती है जहां हमें होना चाहिए, और क्या पता किस्मत का इशारा कुछ और हो।
0: सही कह रहा है रोहन।
1: अच्छा रोहन सुन, मुझे कल एनजीओ में जाना है एक, वहां मेरा संगीत कार्यशाला है।
0: चल ठीक है, तू हो क्या।
1: तरुण, रोहन दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर

अगले दिन तरुण एक एनजीओ में जाता है जहां उसकी संगीत कार्यशाला थी, और हॉल में एक लड़की बच्चों को पियानो सिखा रही होती है। उसे वो देखता है, लेकिन उसकी पीठ तरुण की ओर होती है। वो धीरे धीरे एक धुन बजा रही होती है, वही धुन जो तरुण ने कॉलेज में पहली बार गिटार पर बजाई थी। तरुण ठिठक जाता है, उसके होंठ कांपते हैं, और वो धीरे से अचानक बोल उठता है, अनामिका। लड़की धीरे धीरे मुड़ती है, दोनों की नजरें मिलती हैं। तरुण की आंखों में उम्मीद है, लेकिन लड़की के चेहरे पर पहचान का कोई भाव नहीं। जी, क्या हम पहले कभी मिले हैं? ये सुनते ही तरुण का दिल एक बार फिर टूट जाता है। उसे समझ आ जाता है वो अनामिका है, लेकिन उसे तरुण याद नहीं। कैसे वापस आएगी इसकी यादें? क्या प्यार याददाश्त से भी ज्यादा ताकतवर होता है? क्या तरुण अपनी मोहब्बत को उसकी यादें वापस दिला पाएगा? क्या दिल दिमाग से ज्यादा ताकतवर साबित होगा? इसका जवाब आपको मिलेगा कल अगले एपिसोड में, शाम 5:15 बजे, मेरी डायरी की कहानी तुमसे ही मैं।

0: हम हंसाएंगे, आप मुस्कुराएंगे,
1: हो जाओगे हंस-हंस कर लोटपोट,
0: क्योंकि यह है लाफ्टर का सॉलिड डोज।
2: और डोज में क्या है?
1: डोज में है मजा। जी हाँ, मजा आ गया।
2: प्रभु बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मुझे मेरा बचपन लौटा दो प्रभु।
3: अच्छा बच्चा, फिर से इंग्लिश, मैथ, एलजेब्रा, केमिस्ट्री और ट्रिग्नोमेट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी और हिस्ट्री, सिविक्स, लॉ पढ़ोगे?
2: अरे नहीं नहीं प्रभु, रहने दीजिए रहने दीजिए, ऐसे ही मुंह से निकल गया था मेरे।
0: जी हाँ, मजा आ गया।
4: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।
3: तो दोस्तों, हमने आपसे पूछा था बूझो तो जाने का सवाल, भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी, जिसका सही जवाब आपने मेरे ख्याल से दे दिया है।
5: दोस्तों सही जवाब है 16 अप्रैल 1853, और सही जवाब देने वालों के नाम हैं जॉन डिकैस्ट्रो, भगवत चौबे लाडला जी, सुदर्शन शाह, नंद कुमार ठाकुर, दिनेश वर्मा, धर्मेंद्र छिप्पा, योगेश गुजराती, अबाद खान, सुरेश राठौड़, बलवंत कुमार, मोहम्मद रफीक पवार, जगदीश धाकर, राजू मिगलानी, राम कुमार रिवाड़। और इनके साथ हमें नाम भेजे हैं शाहजी बोटके, बी आई धाकर, राष्ट्रपाल गजपेय, इरशाद अहमद, अल्ताफ हुजरे, शमसुल कुमार राही, हल्के जयपाल यादव, अनिल बी गोडखे, मोहम्मद कलीम अंसारी और राधेश्याम पांडे जी, हेमंत कुमार, नवी हसन अब्बासी, अरविंद कुमार, मुकेश कश्यप, रोशन देवांगन, खलील कुरेशी, सुरेश कगनेजा, विजय सुरलकर, नवाबुद्दीन, और इनके साथ हैं मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, और हमारे जो अंतिम श्रोता हैं उनका नाम है मोहम्मद असलम सैफी। तो आप सभी के मैसेजेस हम तक पहुंच गए हैं दोस्तों, अब इंजॉय कीजिए प्रोग्राम में एक और गीत।

0: जैसे कि आप जानते हैं कि हम सोशल मीडिया पर भी आ चुके हैं, यानी कि फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, और तीनों का ही हमारा नाम है आकाशवाणी नजीबाबाद।
1: वैसे यूसुफ भाई, ये बताने की चीज तो नहीं है, मुझे लगता है इतने वक्त से हम सोशल मीडिया हैंडल जो है कर रहे हैं, तो अब तक तो हमारे लिसनर्स हमें पहचान गए होंगे और फॉलो भी कर लिया होगा।
0: फॉलो तो कर लिया है, लेकिन कमेंट सेक्शन तो हमारा भरा हुआ नजर नहीं आ रहा। वो आपको भी करना है, जैसे आप हमारे बूझो तो जाने में फेसबुक भर देते हैं, वैसे इंस्टाग्राम पर भी कमेंट तो कीजिए कि हमारी मेहनत आपको कैसी लग रही है।
1: बिल्कुल दोस्तों, तो हमें इंतजार रहेगा आपके ढेर सारे कमेंट्स का और अपने आपके फीडबैक्स का।
0: तो इसी बात पर आपके लिए पेश है ये खूबसूरत सा गीत।

0: दोस्तों, ये तो था हमारा आज का कार्यक्रम। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमारे प्रोग्राम्स आपको कैसे लग रहे हैं आप हमें खत के जरिए बता सकते हैं। और हमें खत भेजने के लिए आपका पता है, कार्यक्रम युववाणी अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन कोड 2467663।
1: हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288। तो इसी के साथ मुझे यूसुफा जैदी
0: और मुझे शुमायला को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति।
1: नमस्कार।

0: अभी हमारे युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर। हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6 बजने को हैं। अब से कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें विभिन्न पवित्र स्थलों पर भगवान शिव से बार बार जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने यह विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत हो जाएंगे।
2: योग्यकर्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रोबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए हैं। 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के दूसरे चरण में श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र में हो रहे घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी वर्षा हुई है। इससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर अब 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बात की। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ ईपीएफओ खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत आईटी सक्षम सेवा प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा कर दी जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने 19 सीटों वाले सारस MK2 के डिजाइन को सफलतापूर्वक पूरा करने पर राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं को बधाई दी है। श्री नायडू ने कहा कि सारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाता है और देश का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया हल्का परिवहन विमान है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि अब तक देश भर के 23 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़ चुके हैं। इनमें 7,81,00,000 से अधिक युवा, 5,24,00,000 महिलाएं और 17,00,000 से अधिक शैक्षणिक संस्थान भी शामिल हैं। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1,677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। निफ्टी 517 अंक की गिरावट के साथ 23,882 पर दर्ज हुआ। तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि ये पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। और इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 6:05 हो रहे हैं। अब हमारे किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को आपके भैया प्रमोद सिंह की राम राम। भैया कैसे हालचाल? सब ठीक ठाक? राजी खुशी? बहुत अच्छी बात है भैया, सबका ठीक होना बहुत जरूरी। और देखो भाई, हमारी जो खेती बाड़ी है वो जभी ठीक रह करे है जब हम ठीक होंगे। तो भाई देखो, इस टाइम पे तुम्हारे जो किसान भाई बहन हैं वो धान की रोपाई में लगे हुए हैं, और भैया यो काम इस समय करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि भैया धान की रोपाई का यो बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है। लेकिन भाई हम तो आपसे एक ही बात कहेंगे कि देखो, जब हमारी नर्सरी 20 से 25 दिन की हो गई है तो भाई अब उसकी रोपाई करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन भाई रोपाई करते समय भी बहुत सारी बात को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत पड़ेगा। जैसे सबसे पहली बात तो यह है भैया कि जब हम धान की नर्सरी से पौध को उखाड़ें तो भाई उस टाइम पर कुछ सावधानी बरते हैं, और पहला काम यो है कि हमें नर्सरी में पानी भर देना चाहिए, क्योंकि भैया अगर हम पानी भर के पौध को उखाड़ेंगे तो पौध टूटने का खतरा नहीं रहने का, पौध हमारी ठीक ठाक रहेगी। और भाई उसकी जब हम ठीक तरीके से गुच्छी बनावेंगे, उसको साफ कर लेंगे, मतलब जड़ों को साफ कर लेंगे, उसके बाद भाई उस

0: पद को हमें शोधित करना बहुत जरूरी है। शोधित करने के बाद फिर उसकी रोपाई करेंगे तो हम धान की फसल से अच्छी भैया उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। अब भाई बात ये भी आती है कि हमें अच्छे तरीके से खेत को तैयार करना चाहिए, और खेत को तैयार करने का मतलब ये नहीं होता कि भैया हमने जुताई उसकी बहुत बढ़िया कर ली, बढ़िया सी कादल हमें उसमें काटनी है, खरपतवारों को एकदम हमें उसमें से साफ करना है। ये करने के बाद भाई अगर हम अपने खेत में धान की रोपाई करेंगे तो यूं समझो कि बहुत बढ़िया फसल प्राप्त होगी, मेड़बंदी बढ़िया होनी चाहिए, पानी ठीक ठाक रहना चाहिए। और भैया धान की रोपाई करेंगे तो देखो एक चीज का ध्यान हमें रखना कि हमें पौध जो लगानी है वो लाइनों में लगानी है, और लगभग हर 3 मीटर की दूरी के बाद में हमें थोड़ी सी जगह अपने खेत में छोड़नी चाहिए, जिससे भाई हमारे खेत में खड़ी हुई फसल को हवा भी लगती रहेगी, फसल का विकास भी ठीक ठाक होगा। अगर हमें उसमें खाद या कोई और दवाई वगैरह फसल में लगानी है तो भैया उसके लिए भी हमें खेत में आने जाने का बढ़िया रास्ता मिल जाएगा। इसलिए ये कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें इस टाइम पे करनी चाहिए। किसान भाई बड़े समझदार हैं, इन सब बातों का ध्यान रख ही रहे हैं। और भैया देखो आज हम भी आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, बातें तो देखो हम कर ही रहे हैं रोजाना की तरह। आज के कार्यक्रम में भी भाई हम आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, और जानकारी रहेगी खरीफ में दलहन और तिलहन उत्पादन के संबंध में। और भाई आपका मनोरंजन भी कराया जाएगा, बातचीत तो कर ही रहे, पर भाई आओ सुन लेते हैं पहले ये कुछ जरूरी संदेश।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए 8700014242।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
0: देखो भाई संदेश हमने सुन लिए और हम बात यो कर रहे थे कि भाई इस टाइम पे किसान भाई काम धाम में लगे हुए हैं, धान की रोपाई का काम इस टाइम पे चल रहा है, बरसात भी शुरू ही हो गई है। तो भाई देखो यो काम हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि धान की फसल की जो रोपाई का टाइम है वो बहुत बढ़िया चल रहा है। और भाई एक अच्छे खेत में अगर हम धान की फसल की रोपाई करेंगे तो बहुत बढ़िया बात है। अब आप सोचेंगे कि भैया एक अच्छा खेत कौन सा खेत होता है, तो भाई हम तो आपको यही कहेंगे कि खेत सारे अच्छे होते हैं। अगर हम अपने खेत की मिट्टी को पहचान कर, मतलब मिट्टी की जांच कराने के बाद अगर हम अपने खेतों में फसल लगावेंगे तो भैया लागत भी हमारी कम आवेगी और फसल हमारी बहुत बढ़िया होगी। अब भाई जहाँ तक मिट्टी की जांच कराने की बात है तो मिट्टी की जांच करा कर हमें यूँ पता चल जाएगा कि हमारे खेत में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है, कौन से पोषक तत्व हमें खेत में डालने हैं, कौन से नहीं डालने हैं। और यो तो पता तभी चलेगा भैया जब हम मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवा लेंगे। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनवाने के लिए हमारे पास भैया क्या होना चाहिए, हमारे पास में जागरूकता का होना बहुत जरूरी है कि अगर हम जागरूक हैं, अच्छी खेती करना चाहते हैं, अपने खेत को हम उपजाऊ बनाकर रखना चाहते हैं, तो हमें अपने खेत की मिट्टी की जांच करानी होगी। और भाई मिट्टी की जांच कराने के लिए बहुत ही आसान विधि है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा शुल्क भी नहीं देना पड़ता। बस अपने खेत से एक मिट्टी का नमूना लेना है और उस नमूने को हमें भैया मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में भेज देना है। लेकिन इस काम को करने के लिए भी भाई बहुत सारी सावधानी बरतनी पड़ा है, और वो सावधानी ये है कि जो नमूना हमें लेना वो नमूना एक तो खेत की जो मेड़ है उसके आसपास से नहीं लेना, पानी की जो नाली बनी हुई है उसके आसपास से नहीं लेना, अगर खेत में कोई पेड़ खड़ा उसके नीचे से नहीं लेना, कहीं उसमें खाद की ढेरी है वहां के आसपास से या उस जगह से नहीं लेना, कहीं नमी है पानी इकट्ठा है तो वहां से भी नमूना नहीं लेना। इन जगह से भैया हमें नमूना नहीं लेना, जो हमारा और खेत बसता है उस जगह से हमें 5 या 6 जगह से एक मिट्टी का नमूना लेना है। और भैया उस नमूने को हमें लगभग आधा किलो मिट्टी को एक थैली में भर लेना, और उस थैली के ऊपर भैया अपना नाम लिखना, खेत का नाम लिखना, उसकी पहचान लिखनी, कौन सी फसल उसमें बोनी है, कौन सी बोई थी इससे पहले, वो सब जानकारी हमें जो है एक पर्ची पर लिख देनी है। और भैया उसको लेकर फिर मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में चले जाना, वहाँ हमें जो है यो पता चल जाएगा मिट्टी की जांच होने के बाद कि हमारे खेत में किस पोषक तत्व की कमी है, क्योंकि वहां से हमें मिलेगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड। तो भाई ये बहुत ही जरूरी काम है। और देखो ये हम मिट्टी की जो जांच है ना हर फसल के लिए करा सकते हैं, और हर किसान को लगभग 2 या 3 साल में मिट्टी की जांच अपने खेत की जरूर करानी चाहिए। और भाई देखो धान की फसल तो किसान भाई इस टाइम लगा ही रहे हैं, धान की फसल के साथ साथ जो दूसरी फसलें हैं चाहे वो दलहन की फसलें हों या भैया तिलहन की फसलें हों, इनकी खेती भी किसान भाई कर ही रहे हैं। खेतों को अच्छी तरीके से तैयार करके इन सब फसलों को बोने की बात हो रही है, तो भाई देखो इस बारे में भी जानकारी बहुत ही जरूरी है, ये जानकारी हमारे पास में होनी चाहिए। और भाई खरीफ का मौसम चल रहा है तो खरीफ में दलहन और तिलहन उत्पादन कैसे लिया जा सकता है, कैसे अच्छी खेती इनकी प्राप्त करी जा सकती है, आज इसी संबंध में भैया हम आपके लिए एक जानकारी लेकर आए हैं। और इस संबंध में जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर श्याम लाल गुप्ता, और भैया आपसे बातचीत कर रहे हैं हमारे भैया नरेश पाल सिंह। तो आओ सुनते हैं यो बातचीत।
3: किसान भाइयों, जैसा कि बरसात का सीजन चल रहा है और बरसात में उगाई जाने वाली फसलों को हम कहते हैं खरीफ की फसलें, तो आज हम खरीफ की फसलों के विषय में आपको जानकारी देंगे। और इसमें जानकारी का विषय रहेगा खरीफ में दलहन और तिलहन उत्पादन। तो आज इस विषय पर हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर श्यामलाल गुप्ता, जो कि KM कॉलेज धामपुर से हमारे बीच में आए हैं। तो डॉक्टर साहब, खरीफ में दलहनी और तिलहनी की कौन कौन सी फसलें आती हैं?
4: किसान भाइयों को राम राम। खरीफ की फसलों में आम तौर पे जो दलहनी फसल होती हैं वो है मूंग, उड़द, लोबिया, अरहर और सोयाबीन।
3: जी,
4: इन फसलों की खेती जो है खरीफ में की जाती है।
3: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, क्योंकि किसी भी फसल को उगाने के लिए सबसे पहले हमें उसकी उन्नतशील प्रजातियों का पता होना चाहिए।
4: जी,
3: क्योंकि उन्नतशील प्रजातियों के आधार पर ही हमारी उपज निर्भर करती है।
4: जी,
3: तो कृपया हमें मूंग, उड़द, लोबिया, अरहर, राजमा, सोयाबीन जैसी जो हमारी ये फसलें हैं, हमारे किसान भाइयों को इसकी उन्नतशील प्रजातियों के बारे में अवगत कराएं।
4: ये जो उन्नतशील प्रजातियां हैं किसान भाइयों, इसका जो है फसल की उपज पे कम से कम 40-50% प्रभाव पड़ता है।
3: जी,
4: अगर आपने प्रजातियां सही चयन की हैं तो आपकी उपज अधिक होगी, और अपने पास से या देसी प्रजातियों को अगर आप लगाएंगे तो उपज कम मिलेगी आपको।
3: जी जी।
4: जहां तक बात है मूंग की, तो मूंग की उन्नतशील प्रजातियों में आप पूसा बैसाखी ले सकते हैं, विराट ले सकते हैं, विराट गोल्ड ले सकते हैं, सम्राट ले सकते हैं, और BHU से निकाली गई है मालवीय जनप्रिया, और पंतनगर से निकाली गई है पंत मूंग 1-2, पंत मूंग 3, पंत मूंग 4।
3: जी,
4: इसी तरह से मूंग में एक और प्रजाति है MH 1142।
3: जी,
4: इसकी खेती अगर आप करेंगे तो मूंग में आपको 7-8 कुंटल जो है उपज आपको प्राप्त हो जाएगी।
3: जी जी जी जी।
4: तो इसी तरह से उड़द की बात करें तो उड़द में बसंत बहार है, T9 है, शेखर 1-2-3 है, पंत उड़द 19 है, आजाद उड़द है, और नरेंद्र उड़द 1 है।
3: जी,
4: जिनकी खेती करेंगे तो इससे अच्छी पैदावार आपको मिल सकती है।
3: जी डॉक्टर साहब, इसके अलावा हमारे किसान भाई कुछ ऐसे होते हैं जो लोबिया भी उगाते हैं।
4: जी जी।
3: तो लोबिया की कौन सी उन्नतशील प्रजातियां हैं?
4: जी देखिए, लोबिया 3 मकसद से उगाई जाती हैं।
3: जी,
4: एक तो लोबिया सब्जी के लिए जो हरी फली है उसके लिए उगाई जाती है।
3: जी,
4: कुछ किसान भाई उसके दाने के लिए करते हैं कि लोबिया का दाना जो है उसके दाल के रूप में बना खाते हैं, सब्जी भी बना खाते हैं।
3: जी,
4: और कुछ किसान भाई हरे चारे के रूप में भी लोबिया का खेती करते हैं।
3: जी जी।
4: तो जहां तक हरे फली की बात है तो लोबिया की काशी कंचन, काशी उन्नति, काशी निधि, ये जो प्रजाति हैं, इन प्रजाति की लोबिया जो है लंबाई में भी बहुत बड़ी होती है, करीब 1 फीट के आसपास हो जाती हैं और मोटी भी होती हैं, मुलायम भी होती हैं और बाजार में इसकी बहुत अच्छी मांग है।
3: अच्छा।
4: तो इसकी जो है खेती करके किसान हरी लोबिया के फली को बेच सकते हैं।
3: अच्छा।
4: और अपनी आमदनी कर सकते हैं। जहाँ तक दाने के लिए है, इसके लिए कुछ प्रजातियां हैं जैसे श्रेष्ठा है, C-152 है, अम्बा है, ये प्रजातियां जो है आप इसको दाने के लिए कर सकते हैं
3: जी।
4: और हरे चारे के रूप में यूपी से 4200 कोहिनूर है, BL1 है
3: जी।
4: इनका उपयोग जो है हरे चारे के रूप में कर सकते हैं
3: जी।
4: बस ये ध्यान रखना है कि लोबिया में जो अगर आप फली के लिए कर रहे हैं या दाने के लिए कर रहे हैं
3: जी जी,
4: तो उसमें जो है बीज दर थोड़ा कम रहता है, लेकिन हरे चारे में बीज दर 25% बढ़ा देते हैं ताकि जो है उसके हरे चारे
3: खाली ना रहे,
4: हाँ, खाली ना रहे।
3: जी।
4: जहां तक अरहर की बात है तो अरहर जो है पूरे प्रदेश में उगाई जाने वाली मुख्य दलहनी फसल है और इसके ऊपर जो है अपने प्रदेश के अधिकांश लोग जो है निर्भर करते हैं प्रोटीन के लिए। तो इनकी मुख्य प्रजातियों में पूसा अरहर 16 है, पूसा अरहर 151 है, पूसा 991 है और अपने प्रदेश के लिए जो संस्तुत प्रजातियां हैं वो आजाद हैं, विपुल हैं और MA6 है
3: जी जी।
4: इसी तरह से अगर हम बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन में प्रजातियां हैं फूले संगम, फूले दुर्वा, JS-335, NRC-150, RVSM-1135, JS-9560, PS-1670
3: जी।
4: इन प्रजातियों की खेती करके आप अच्छी पैदावार जो है ले सकते हैं।
3: डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं जानना चाहूंगा कि किसान भाई मूंग, उड़द, लोबिया जैसी जो दलहनी फसलें हैं, इनका बीज दर क्या रखें?
4: बीज दर जैसे मूंग और उड़द है
3: जी,
4: लगभग एक सी ही जो है दाने होते हैं
3: जी,
4: इनका बीज दर 5-6 kg प्रति एकड़ रख सकते हैं
3: जी।
4: और अगर हेक्टेयर में बात करें तो 10-12 किलो रख सकते हैं
3: जी जी।
4: और इसी तरह से सोयाबीन है, चूंकि मूंग उड़द से बड़ी होती है इसलिए इसकी जो है 14-16 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर रखते हैं
3: जी।
4: लोबिया की जब बात करेंगे तो 10-15 किलोग्राम प्रति एकड़
3: जी।
4: और अरहर की 8-10 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज दर रखते हैं।
3: अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम पंक्तियों में बुआई करें इनकी
4: जी जी,
3: तो इनकी जो पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे की क्या दूरी होनी चाहिए?
4: देखिए, अपने प्रदेश में किसान भाई जो है अपनी सुविधा के लिए छिटकावा विधि से भी इन दलहनी फसलों की खेती करते हैं
3: जी हाँ।
4: लेकिन छिटकावा विधि से दलहनी फसलों की खेती करने में बहुत से नुकसान है, इसमें कीट पतंगे का प्रकोप बढ़ जाता है
3: जी।
4: और साथ ही साथ जो बीज आप डालते हैं तो बहुत से बीज का हिस्सा जो है वो जमीन के ऊपर रह जाता है, जिसे पक्षियां जो है चुग लेती हैं
3: जी।
4: तो इस तरह से पौधों की संख्या आपके खेत में कम हो जाती है, जिससे उसकी पैदावार घट जाती है
3: जी जी।
4: तो आता इसको जो है अगर आप लाइनों में बोएंगे तो पैदावार अच्छी प्राप्त होगी, साथ ही साथ इन कीट पतंगों का प्रकोप भी, रोगों का प्रकोप भी कम हो जाएगा
3: जी।
4: जैसे मूंग की बात करें तो लाइन से लाइन की दूरी 45 सेंटीमीटर रखिए
3: जी,
4: और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसी तरह से उड़द में भी 45-50 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं लाइन से लाइन की दूरी, और 10-15 सेंटीमीटर रख सकते हैं पौधे से पौधे की दूरी
3: जी। डॉक्टर,
4: सोयाबीन के केस में, सोयाबीन की जब बात करेंगे तो इसमें थोड़ी सी दूरी लाइन की बढ़ा देते हैं
3: जी हाँ,
4: क्योंकि ये जो है थोड़ी और फैलने वाली फसल होती है, इसमें 45-60 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी और 10-15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है।
3: अच्छा।
4: लोबिया में भी लगभग यही स्थिति है, और जहां तक अरहर की बात है इसमें थोड़ी लाइन की दूरी इन और दलहनी फसलों से अधिक रखी जाती है
3: जी,
4: ये 60-75 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की रखते हैं और 15-20 सेंटीमीटर जो है
3: पौधे से पौधे
4: की दूरी रखते हैं
3: जी। तो डॉक्टर साहब, ये कितने दिनों में तैयार हो जाती है हमारी उड़द और मूंग, क्योंकि ये तो समान फसलें हैं?
4: ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसमें जैसे मूंग और उड़द है, ये खरीफ में अगर आप लगाते हैं तो 60-90 दिन में
3: तैयार
4: हो जाती है।
3: अच्छा।
4: इसी तरह से लोबिया की जब बात करें आप, तो अगर लोबिया से आप हरी फली लेना चाहते हैं तो ये 40-35 दिन बाद इसकी तुड़ाई शुरू हो जाती है।
3: अच्छा।
4: और लेकिन दाने के लिए अगर आपने लोबिया उगाया तो ये लगभग 90-95 दिन ले लेती है
3: दाने के लिए, मतलब ये 3 महीने का समय,
4: हाँ 3 महीने के आसपास समय ले लेती है
3: जी।
4: जहाँ तक बात है सोयाबीन की, ये 90-110 दिन लेती है, और अरहर की स्थिति में अगर आप अगेती खेती करते हैं या अल्पकालिक खेती कर रहे हैं तो ये 120 से 150 दिन में होने वाली होती है।
3: अच्छा, अच्छा।
4: और अगर देर से पकने वाली प्रजातियां आप लगाते हैं तो ये 200 से 270 दिन का समय लेती है।
3: अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम बीज उपचार की बात करते हैं
4: जी जी,
3: तो बीज उपचार किस चीज से करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए?
4: जी जी, ये दलहनी फसलों का बीज उपचार जो है बुआई

0: के पहले बहुत ही आवश्यक है। किसान भाई इसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते हैं, जबकि इसे गंभीरता से अगर किसान भाई लें तो कीट और रोगों से बहुत हद तक बचाव हो सकता है
1: जी जी।
0: और उपज जो प्रभावित होती है वो उपज प्रभावित भी नहीं होगी।
1: बीजोपचार
0: जो तीन स्टेज में करते हैं, पहला तो है आपका कवकनाशी,
1: जी हाँ,
0: दूसरा लेवल होता है कीटनाशी का,
1: अच्छा,
0: और तीसरा होता है आपके राइजोबियम कल्चर और पीएसबी से इसको उपचारित करना।
1: जी,
0: तो कवकनाशी के लिए आप कार्बोक्सिन और थायरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम ले लें,
1: जी,
0: और अगर आप कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो 1 ग्राम प्रति किलोग्राम ले लें,
1: जी जी
0: और कैप्टान या थायराम ही इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो 2 ग्राम प्रति किलोग्राम,
1: जी
0: और बावस्टीन 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से लेके, और ये बीज के ऊपर इसे छिड़क दें,
1: जी
0: और छिड़क के जो है इसे हल्का सा नम करके बीज को उस पर रगड़ दें
1: जी,
0: ताकि इसके ऊपर इन जो दवाएं हैं
1: इनकी लेयर बन जाए,
0: लेयर बन जाए, और इसको छाये में सुखाएं।
1: जी,
0: अगर धूप में सुखाएंगे तो ये कवकनाशी जो इसका प्रभाव कम हो जाएगा
1: जी। और कीटनाशी की
0: इसी तरह से कीटनाशी ये जब 2 घंटे तक इसको सुखा लें छाये में, इसके बाद आप इमिडा क्लोप्रिड है
1: जी,
0: जो
1: जी,
0: इमिडा के नाम से भी मार्केट में उपलब्ध है
1: जी जी,
0: इसकी 5 ml मात्रा जो है प्रति किलोग्राम के दर से लेकर अब इससे उपचारित करें
1: जी। डॉक्टर साहब, दलहनी फसलों में
0: जी
1: राइजोबियम कल्चर से भी बीज उपचारित करते हैं, उसका बड़ा महत्व होता है
0: जी जी।
1: तो राइजोबियम कल्चर से इन दलहनी फसलों का हम किस प्रकार से बीज उपचार करें
0: जी? अब ये जब कीटनाशी और कवकनाशी से आप उपचारित कर देते हैं
1: जी,
0: तो उसके बाद राइजोबियम कल्चर इसका पैकेट भी और बोतल भी मार्केट में उपलब्ध है
1: जी,
0: या आप अपने नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई सरकारी केंद्र हो वहां से ले सकते हैं
1: जी जी।
0: तो इससे राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना आवश्यक होता है, क्योंकि राइजोबियम कल्चर से जब उपचारित करते हैं तो इनकी दलहनी फसलों की जड़ों में गांठे बन जाती हैं
1: जी,
0: वो जो है वायुमंडल के जो नाइट्रोजन है उन नाइट्रोजन का जड़ों में स्थिरीकरण करते हैं
1: जी जी,
0: और वो पौधों के लिए फायदेमंद होती हैं, साथ ही साथ जमीन को भी उर्वर बनाती हैं, उपजाऊ बनाती हैं
1: जी जी जी।
0: अब इसकी मात्रा की जहां तक बात है, अगर आपको राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना है तो पहले 500 मिलीलीटर मतलब आधा लीटर पानी में आपको 50 ग्राम गुड़ डाल के उसका घोल बनाना होगा
1: जी जी,
0: और फिर उसमें 50 ग्राम तरल राइजोबियम कल्चर डालिए
1: जी,
0: और डाल के यह 5 किलोग्राम बीज के लिए
1: उपचार
0: के लिए पर्याप्त होती है
1: जी जी।
0: इसी तरह से साथ ही साथ एक जैविक उपचार के रूप में पीएसबी है
1: जी,
0: ये फास्फोरस जो आपके जमीन में है
1: जी,
0: ये पीएसबी से जब आप उपचारित करते हैं तो जो जमीन में फास्फोरस है और जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं
1: जी जी,
0: उनकी उपलब्धता को बढ़ाने वाले इसमें लाभकारी बैक्टीरिया होते हैं
1: जी जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे बरसात का मौसम है और कभी कभी बरसात भी हल्की होती है
0: जी जी,
1: और इस साल देख रहे हैं जो हमारे मौसम विज्ञानी हैं वो भी कह रहे हैं कि सिंचाई कम है इस बार, यानी कि वर्षा का जल इस बार कम गिरेगा
0: जी जी।
1: तो सिंचाई की बात करें तो इन दलहनी फसलों में सिंचाई के लिए क्या कहेंगे?
0: देखिए, दलहनी फसलों में बहुत सी सिंचाई की जरूरत तो नहीं पड़ती
1: जी,
0: क्योंकि ये खरीफ की फसलें हैं, खरीफ में अमूमन बारिश हो जाती है, लेकिन अगर बारिश 2 बारिश के बीच में अंतराल आ गया
1: जी
0: तो उस अंतराल पे आपको जो है मूंग और उड़द के केस में
1: जी
0: 1-2 हल्की सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। और इसी तरह से जैसे लोबिया है
1: जी,
0: तो बुआई के बाद अगर बारिश नहीं हो रही है
1: जी,
0: जमाव के बाद तो बुआई के 20 से 25 दिन बाद आप जो है वो एक सिंचाई कर दें
1: जी,
0: और अगर मौसम गर्म रहता है
1: जी,
0: तो 10 से 12 दिन के अंतराल पर सिंचाई हल्की करते रहें। इसमें गहरी सिंचाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पानी जब लग जाएगा तो फिर इनकी जड़ें सड़ने लगती हैं और उसमें हवा का संचार नहीं होने से पौधे पीले पड़ के सूखने लगते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, यदि हम रोग की बात करें
0: जी जी,
1: तो इन दलहनी फसलों में रोग कौन सा लगता है?
0: देखिए, दलहनी फसलें में ये रोग जो है सबसे भयंकर रोग है पीला मोजैक।
1: अच्छा,
0: और यह सफेद मक्खी द्वारा फैलता है।
1: तो क्या इसके लक्षण दिखाई देंगे?
0: ये सफेद मक्खी जो है ये वायरस के द्वारा इस पे जो है पत्तियों पे इस रोग का प्रकोप बढ़ाती हैं
1: जी।
0: पत्तियां पे जो है पहले तो पीले धब्बे बनते हैं।
1: अच्छा,
0: और बाद में पूरी पत्ती पीली पड़कर सूख जाती है।
1: अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसका नियंत्रण किस प्रकार से
0: किसान नियंत्रण करने के लिए इमिडा क्लोप्रिड जो है उसकी आधा ml मात्रा जो है प्रति लीटर पानी की दर से ले लें और एक से दो छिड़काव या जरूरत पड़ने पर तीसरा छिड़काव भी कर दें।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, हमने दलहनी फसलों में उकटा रोग के बारे में या विल्ट के रोग के बारे में सुना है,
0: जी जी,
1: तो ये रोग क्या है, इसका नियंत्रण किस प्रकार करेंगे?
0: जी जी, उकटा रोग या विल्ट रोग जो है
1: जी,
0: यह दलहनी फसलों का सबसे भयंकर रोग है।
1: जी जी,
0: इसमें क्या होता है कि पौधे अचानक ऊपर से सूखने मुरझाने लगते हैं
1: जी,
0: और धीरे धीरे उनकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और इनकी जड़ें सड़ जाती हैं।
1: हमने देखा है कि अरहर का पूरा पेड़ ऊपर तक सूख जाता,
0: जाता है। पूरा का पूरा पौधा सूख जाएगा।
1: जी जी,
0: तो इसके नियंत्रण के लिए जो बुआई से पहले जो है बीजोपचार आवश्यक है।
1: जी जी,
0: तभी आप इसका नियंत्रण कर सकते हैं।
1: जी, और डॉक्टर साहब इसके अलावा?
0: इसके अलावा जैसे पत्ती धब्बा रोग है, इसमें पत्तियों पे भूरे काले रंग के गोलाकार धब्बे बन जाते हैं और भारी संक्रमण की दशा में पत्तियां जो है गिर जाती हैं।
1: जी,
0: और इसके नियंत्रण के लिए जो है आपको ये जो पारा युक्त रसायन है मैंकोजेब, इसकी 2.5 ग्राम मात्रा जो है, या कार्बेंडाजिम की 1 ग्राम मात्रा जो है प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये तो हो गई रोगों की बात।
0: जी जी,
1: और दलहनी फसलों में जो है यदि हम कीटों की बात करें
0: जी,
1: तो कौन सा कीट इसमें नुकसान देता है और इसका जो है क्या हम नियंत्रण कर सकते हैं?
0: देखिए, इसमें सबसे बड़ा तो वही पॉड बोरर है
1: जी,
0: जो इल्ली के रूप में ये फलियों में घुस जाता है और फलियों के जो दाने होते हैं उनको खा जाता है।
1: अच्छा,
0: इससे उपज में 20-30% की कमी आ जाती है।
1: जी जी,
0: इसी तरह से एक होती है तना मक्खी। तो अगर आपके खेत में इल्ली लगी हुई है तो 1 से 2 छिड़काव इंडोक्सा कार्ब का जो है कर दें
1: जी,
0: और अगर तना मक्खी लगी है जो तना पीला पड़ के सूख रहा हो
1: जी जी,
0: तो प्रोफेनोफास जो दवा आती है
1: जी,
0: उसका भी आप छिड़काव 2 से 3 बार
1: कर सकते हैं।
0: और इसे तो कीट नियंत्रण के सबसे असरदार तरीका है समन्वित कीट प्रबंध,
1: IPM।
0: जी, IPM या एकीकृत कीट प्रबंध है।
1: जी जी,
0: इसमें क्या है कि इसमें कई तरह के तरीके अपनाकर कीटों के संक्रमण को रोका जाता है, उनके प्रकोप को रोका जाता है।
1: जी जी,
0: इसमें बीजोपचार प्रमुख है, उसके बाद पौधों को उचित दूरी पे लगाना इम्पोर्टेंट है
1: जी,
0: फिर इसके जैविक तरीके भी अपनाए जाते हैं, जैसे नीम का तेल ले लीजिए या ट्रैप ले लीजिए, और जरूरत पड़ने पर रासायनिक दवाओं का प्रयोग भी किया जाता है
1: जी।
0: इसमें ट्रैप के लिए कीट नियंत्रण में जैसे सफेद मक्खी, मैंने पहले बताया वो मोज़ेक की बीमारी को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है
1: जी,
0: तो इसमें प्लास्टिक के डिब्बे लेके उसको पीले रंग से रंग दें।
1: अच्छा,
0: और पीले रंग से रंगने के बाद जो है जब वो पेंट सूख जाए तो उस पे कोई चिपचिपा पदार्थ लगा दें।
1: अच्छा,
0: जैसे अलसी का तेल लगा दें या मोबिल लगा दें
1: जी जी,
0: तो इस तरह का चिपचिपा पदार्थ लगा के खेतों में 8-10 जगह पे रख दें, तो उसमें सफेद मक्खी जो छोटी छोटी हैं वो उसमें उड़ के उस पे चिपक जाएंगी।
1: अच्छा,
0: इस तरह से वो वायरस रोग फैला नहीं पाएंगे।
1: तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई दलहनी फसलों का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और डॉक्टर साहब, जैसा कि हम तिलहनी फसलों की बात करें तो खरीफ में तिलहनी कौन कौन सी फसलें होती हैं?
0: देखिए, खरीफ में तिलहनी फसलें बहुत नहीं उगाई जाती हैं अपने तरफ, और अपनी तरफ जो है उगाई जाने वाली जो मुख्य फसलें हैं वो मूंगफली हैं और तिल हैं
1: जी।
0: तो तिल की खेती अब कुछ क्षेत्रों तक सीमित रह गई है, लेकिन मूंगफली की खेती जो है अभी भी पर्याप्त क्षेत्रफल में की जा रही है।
1: डॉक्टर साहब, हम यदि मूंगफली की बात करें
0: जी,
1: तो किसान भाई मूंगफली की जो है बीज दर,
0: जी जी,
1: तो बीज दर कितनी रखें? और क्योंकि मूंगफली दो तरह की होती है
0: जी जी,
1: एक तो डॉक्टर साहब एक गुच्छेदार मूंगफली होती
0: जी
1: है
0: जी जी,
1: और एक फैलने वाली होती है, यानी कि वो जमीन पर बहुत तेजी से फैलती है, ऊपर को
0: जड़ें फैलती हैं
1: जी जी,
0: उसमें दूर दूर तक इसमें लगते हैं फली
1: जी
0: जी।
1: तो उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन कौन सी प्रजाति अच्छी होती हैं
0: जी जी
1: मूंगफली की?
0: मूंगफली की प्रजातियों में JL24 है
1: जी,
0: राज मूंगफली 4 है, TMB14 है
1: जी जी,
0: GG20 है, एक श्रीराम 444 है।
1: अच्छा,
0: और GJG22 है और TG37A है।
1: अच्छा अच्छा,
0: तो इसकी अगर आप मतलब बुआई करें
1: जी,
0: तो यह बहुत मोटे दाने वाली जो है मूंगफली होती है।
1: तो डॉक्टर साहब शीघ्रता से हमारे किसान भाइयों का बीज दर और इसका अंतरण बता दीजिए।
0: जी जी, ये अगर आप मूंगफली गुच्छेदार वाली प्रजातियां लगाना चाहते हैं तो इसमें 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर लगता है
1: जी,
0: और अगर आप फैलने वाली मूंगफली प्रजाति का चयन करते हैं
1: जी
0: तो इसमें 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का बीज दर रखा जाता है।
1: और अंतरण
0: जहां तक दूरी की बात है गुच्छेदार की दूरी रखने के लिए लाइन से लाइन की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर रखते हैं
1: जी,
0: और
1: जी।
0: अगर फैलने वाली प्रजातियों का चयन किया गया है तो इसमें लाइन से लाइन की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखते हैं।
1: डॉक्टर साहब, यदि हम खाद और उर्वरक की बात करें।
0: जी जी, तो अगर मूंगफली में आपको खाद डालनी है तो इसमें पहले तो 5 से 10 टन जो गोबर की सड़ी खाद है
1: जी,
0: इसको आप पहले जुताई के पहले इसको खेत में डाल के जुताई करके मिट्टी में मिला दें। इसके बाद नाइट्रोजन जो है 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 40 से 50 किलोग्राम और पोटास 30 किलोग्राम का प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग कर सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, तेल उत्पादन के लिए क्या कोई खास पोषक तत्व जो है ऐसा है जो हमारी जो है तेल उत्पादन में वृद्धि करे?
0: जी जी, मूंगफली में तेल की मात्रा प्रतिशत मात्रा बढ़ाने के लिए जिंक सल्फेट और सल्फर का उपयोग किया जाता है।
1: जी जी जी,
0: तो अगर जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर 30 किलोग्राम और सल्फर 20 से 25 किलोग्राम आप दे दें
1: जी,
0: तो आप में जो मूंगफली पैदा होगी उसमें तेल की प्रतिशत मात्रा बढ़ जाती है।
1: डॉक्टर साहब, यदि सिंचाई की बात करें तो सिंचाई की जरूरत पड़ती है मूंगफली को?
0: मूंगफली में कम से कम 4 से 5 सिंचाई की जरूरत पड़ती है।
1: अच्छा, वर्षा ना हो तो?
0: जी, पहली सिंचाई बुआई से 20 से 22 दिन बाद, दूसरी फल आते समय 35 से 40 दिन बाद, तीसरी फली बनते समय 70 से 75 दिन बाद और चौथी दाना भरते समय 90 दिन बाद सिंचाई करनी जो है आवश्यक होती है।
1: डॉक्टर साहब, अंत में हम जल्दी से तिल की बात कर लेते हैं, तो तिल की प्रजाति हमारे किसान भाइयों को बताइए जो उन्नतशील प्रजाति है।
0: अगर कोई किसान भाई तिल की खेती करना चाहते हैं तो वह प्रजातियों के रूप में T12, 13, T78, प्रगति, प्रताप, शेख, माधवी, हरियाणा तिल आदि प्रजातियों को उगाकर इसकी सफलतापूर्वक खेती कर सकते। किसान भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि तिल की खेती, तिल के मार्केट में बहुत डिमांड है
1: जी,
0: तो इसकी मांग को देखते हुए तिल की खेती के प्रति जो है थोड़ा सा रुझान करें
1: जी,
0: तो इस खेती से भी आप अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं।
1: तो डॉक्टर श्यामलाल गुप्ता जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को खरीफ ऋतु में दलहन और तिलहन की खेती पर आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और किसान भाई राम राम।
2: खरीफ में दलहन और तिलहन उत्पादन, किसान भाइयों, इस संबंध में भी आपने डॉक्टर श्यामलाल गुप्ता से भैया नरेश पाल सिंह की यह बातचीत सुनी और भाई इस बातचीत को सुनकर आप लाभ ज़रूर उठाएंगे। और देखो भैया, बातचीत हम आपसे बहुत देर से कर रहे हैं, आप भी सोच रहे होंगे कि भैया आज मनोरंजन तो होना ही चाहिए, तो देखो भैया मनोरंजन तो रोज़ाना ही हम आपका कराते हैं और भाई अब आपके इस इंतज़ार को ख़त्म कर देते हैं और सुन लेते हैं यो रागनी।

दुनिया में दहेज। दोस्तों, किसान भाइयों, ये रागनी आपने सुनी नरेंद्र सिंह की आवाज़ में। उम्मीद है भैया ये रागनी आपको अच्छी लगी होगी, आपका मनोरंजन भी हुआ होगा और शिक्षा भी इस रागनी से आपको जरूर मिली होगी। और भाई देखो, अब आपको मौसम के संबंध में जानकारी दे देते हैं। मौसम की ये चिट्ठी हमारे पास में आई है, भारत मौसम विज्ञान विभाग, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, मोदीपुरम मेरठ से। इन्होंने लिखा है कि भाई आने वाले अगले 4 दिनों तक बिजली गरज, आंधी और तेज हवा के साथ मध्यम से भारी बरसात होने की संभावना है। और कह रहे हैं कि ऐसे मौसम की प्रतिकूलता को देखते हुए किसानों को सलाह दी जाती है कि मूंग, उड़द और मूंगफली की बुआई को अभी किसान भाई टाल दें, क्योंकि अधिक नमी या लगातार बारिश के कारण बीज सड़ सकते हैं या अंकुरण प्रभावित हो सकता है। तो देखो भाई, ये तो मौसम की बात है, मौसम के हिसाब से हमें काम करना चाहिए। और भाई इस मौसम में, क्योंकि कहते हैं कि बदलते हुए मौसम में, जैसे भी ये बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात शुरू हो गई है, तो हमें अपने पशुओं की भी सही तरीके से देखभाल करनी चाहिए, पशुओं का टीकाकरण भी जरूर कराना चाहिए, क्योंकि जो संक्रामक रोगों के लगने की संभावना पशुओं में रहती है वो हम समाप्त कर सकते हैं, मतलब कि पशुओं को हम टीकाकरण के माध्यम से सुरक्षित रख सकते हैं। तो पशुओं में टीकाकरण जरूर कराएं। ये काम करने के लिए हम अपने निकट के राजकीय पशु चिकित्सालय के जो पशु चिकित्सक हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं। और हम तो कहेंगे कि अब पूरे गांव के पशुओं का टीकाकरण एक साथ अगर कराएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसकी चेन टूटनी नहीं चाहिए। तो भाई देखो, यो बात हो ही रही है, और भाई बात तो यो भी बहुत जरूरी है कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा है, कैसे आप इसमें क्या क्या चीज सुनना चाहते हैं। और भाई यो बताने के लिए तो आप हमारे पास में चिट्ठी लिख सके हैं, और चिट्ठी लिखने का पता भी आप जानो ही हो, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी नजीबाबाद, पिन 2 4 6 7 6 3। इसके अलावा भी भैया, आप अपने फोन के माध्यम से हमारे पास में व्हाट्सएप मैसेज कर सके हैं, नंबर है 94 570 78 288। और भैया आप आकाशवाणी नजीबाबाद को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज आकाशवाणी नजीबाबाद के नाम से है। तो भाई देखो, बातें करते करते कार्यक्रम का समय कब पूरा हो गया पता ही नहीं चला, इसलिए आज के इस कार्यक्रम को अब यहीं पर समेट लेते हैं। आज का कार्यक्रम संपन्न करने की अपने भैया प्रमोद सिंह को दीजिए अनुमति। किसान भाइयों, राम राम।

0: अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत, मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर। आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 6:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह की हिंदी वार्ता, जिसका विषय है भीम सहानी का नाट्य शिल्प।
1: भीष्म साहनी का जन्म 1915 में रावलपिंडी में हुआ था तथा मृत्यु 2003 में दिल्ली में। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उन्होंने लाहौर से अंग्रेजी साहित्य में एमए तथा विभाजन के बाद पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न कार्य किए, जिससे उनके व्यक्तित्व को बहुआयामी विकास मिला। वे शिक्षक, पत्रकार, नाट्यकर्मी, अभिनेता, अनुवादक, कथाकार, नाटककार आदि रहे। अपने शुरुआती दिनों में भीष्म साहनी मुख्य रूप से कथाकार के रूप में स्थापित हुए और लंबे समय तक इसी विधा से जुड़े रहे। कथाकार से नाटककार की भूमिका में वे संयोगवश या अचानक से नहीं आए, बल्कि इससे पूर्व रंगमंच की एक लंबी फेहरिस्त है, जिसे पूरा करते हुए वे यहाँ तक पहुँचे। हालांकि बतौर नाटककार उन्होंने अपना पहला मौलिक नाटक हानूश अपने जीवन के 62वें वर्ष में लिखा और तत्पश्चात नियमित अंतराल पर नाटक लिखते रहे। उनके नाट्य जीवन की अगर बात करें तो वे दिल्ली में रहते हुए जननाट्य मंच के नुक्कड़ नाटकों और बाद में सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे। बंगाल अकाल के दिनों में रावलपिंडी में हुए इप्टा के नाट्य प्रदर्शन से इतने प्रभावित हुए कि जिंदगी भर किसी न किसी रूप में इप्टा से जुड़े रहे। कुछ वर्षों तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के वाइस चेयरमैन के रूप में उनकी रंग गतिविधियों में अर्थपूर्ण रचनात्मक भूमिका का निर्वाह भी किया। यही नहीं, टीवी के विभिन्न नाटकों, सीरियलों के साथ साथ कुछ एक श्रेष्ठ फिल्मों में अभिनय भी किया। इससे पूर्व की अगर बात करें तो अपने कॉलेज के दिनों में भीष्म साहनी ने आर्नल्ड रिडले के नाटक द घोस्ट ट्रेन का भूतगाड़ी नाम से अनुवाद करके रावलपिंडी के डीएवी कॉलेज में इसका निर्देशन व मंचन किया। इन सभी स्थितियों का भीष्म साहनी के नाट्य लेखन पर गहरा प्रभाव पड़ा। स्वाभाविक यथार्थपूर्ण चरित्रों की जीवंत सृष्टि, मार्मिक क्षणों की सूक्ष्म पकड़, सहज नाटकीय प्रसंगों की अद्भुत समझ, गहन विडंबनापूर्ण स्थितियों की अचूक पहचान, रोचक एवं कुतूहलपूर्ण घटनाक्रम की कुशल योजना और तनावपूर्ण मनःस्थितियों के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करने की तार्किक शक्ति जैसी नाट्य लेखन की समझ भीष्म साहनी में सदैव से मौजूद थी, जो संभवतः उनके जीवन के बहुरंगी दृश्यों से उन्हें प्राप्त हुई। उनके नाट्य लेखन पर उनके बड़े भाई अभिनेता बलराज साहनी का भी काफी प्रभाव रहा। दोनों भाइयों ने कई नाटकों में एक साथ अभिनय भी किया। हालांकि उनके पहले नाटक हानूश पर बलराज साहनी की निराशाजनक प्रतिक्रिया मिली, जिससे वे निराश नहीं हुए बल्कि और उत्साहित और परिमार्जित होकर नाट्य विधा में अवतरित हुए। व्यक्ति के तौर पर भीष्म साहनी शांत, कोमल, सरल और लगभग साधारण स्वभाव के मितभाषी व मृदुभाषी इंसान थे, परंतु सैद्धांतिक और वैचारिक स्तर पर वह पूरी तरह अपनी आस्था तथा विश्वास के प्रति सुदृढ़, ईमानदार, अटूट और संघर्ष धर्मी व्यक्ति थे। मानववाद में उनकी गहरी आस्था थी। न्याय, भाईचारा, समानता और सामान्य जन की सामूहिक संघर्ष शक्ति में उनका गहरा विश्वास था। दलित, दमित, शोषित और स्त्री के प्रति उनके मन में सदैव सहानुभूति थी। साथ ही कारीगर, खिलाड़ी, कलाकार या कहें हुनरमंद के लिए उनके मन में गहरी आस्था थी। व्यक्तित्व के इन सभी विशेषताओं का उनके नाटकों पर भी विस्तृत प्रभाव पड़ा। जो उनके सभी नाटकों में परिलक्षित होता है। भीष्म साहनी के प्रमुख नाटकों की अगर बात करें तो उनमें हानूश, कबीरा खड़ा बाजार में माधवी, मुआवजे, राजदर्शन, कब्र और संजीवनी का नाम लिया जा सकता है। और उनके नाटकों के प्रमुख विषयों में भारत का विभाजन और उसकी त्रासदी, सांप्रदायिक तनाव, गरीबी, अन्याय और शोषण, सामाजिक संघर्ष और बदलाव, मानववाद, नैतिक द्वंद्व, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा आदि प्रमुख रहे हैं। हिंदी साहित्य में जब भी समाज सापेक्ष नाट्य शिल्प की बात होती है तो भीष्म साहनी का नाम विशेष आदर के साथ लिया जाता है। भीष्म साहनी अपने समय के हिंदी नाट्य साहित्य के प्रमुख साहित्यकार ही नहीं बल्कि नाट्य शिल्प के लिहाज से सशक्त हस्ताक्षर भी हैं। उनके नाटकों का मूल स्वर सामाजिक यथार्थ, मानवीय करुणा, वैचारिक प्रतिबद्धता और परिवर्तन की उत्कंठा है, जो उनके समृद्ध शिल्प व्यवस्था में परिपाक होकर प्रस्तुत हुए हैं। उनके नाटक कलात्मक और तकनीकी व्यवस्था से परिपूर्ण हैं, जिससे उसकी रचनात्मकता, प्रस्तुति और अभिव्यक्ति पूर्णता को प्राप्त करती है। किसी भी नाटक का शिल्प उसको चिरजीवी बनाता है। संरचना, संवाद योजना, पात्र विन्यास, मंच व्यवस्था, दृश्य परिवर्तन, प्रकाश योजना, संगीत, अभिनय शैली आदि तत्व मिलकर नाटक को आकार देते हैं और उसके स्वरूप को निखारते हैं। इन सभी शिल्पगत वैशिष्ट्य के साथ भीष्म साहनी अपनी समृद्ध वैचारिकी के साथ अपने नाटकों में अवतरित होते हैं। उनकी नाट्य दृष्टि केवल रंगमंचीय प्रयोग या सौंदर्य शास्त्रीय विमर्श तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि वह समाज के यथार्थ और संघर्ष के धरातल से भी जुड़ा है। नाट्य शिल्प वह आधार है जिस पर नाट्य दृष्टि निर्मित होती है और नाटक का संपूर्ण भवन खड़ा होता है। इस क्रम में भीष्म साहनी के सभी नाटक पूर्णतः परिपक्व दिखाई देते हैं। उनके नाटकों के कथानक, संवाद योजना, चरित्र निर्माण, दृश्य योजना, मंचीय निर्देश, प्रकाश, संगीत और ध्वनि योजना, प्रतीक व बिंब प्रयोग सभी मझे हुए नाटककार की नाट्यकला साबित होती है। उनके नाटकों के वैचारिक शिल्प और उसके वैशिष्ट की अगर बात करें तो वे उस दौर के अधिकतर नाटककारों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। भाषा शिल्प और वैचारिक शिल्प दोनों स्थितियां उनके लेखन के मजबूत पक्ष रहे। वैचारिक शिल्प के लिहाज से भीष्म साहनी के नाटकों की सबसे प्रमुख विशेषता है उनका सामाजिक यथार्थ के प्रति गहरा लगाव। उन्होंने समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता, शोषण, सांप्रदायिकता, राजनीतिक दमन और संवेदनहीनता को अपने नाटकों में प्रभावी ढंग से चित्रित किया। मुआवजा, कबीरा खड़ा बाजार में जैसे नाटकों में मजदूर वर्ग, गरीब किसान, स्त्रियां और आम जनता की व्यथा अत्यंत यथार्थ परक ढंग से उभारा है। भीष्म साहनी का नाट्य साहित्य सामाजिक परिवर्तन की आकांक्षा से ओतप्रोत है। उन्होंने जनवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए समाज में शोषक और शोषित वर्गों के बीच टकराव, आर्थिक असमानता और श्रमजीवी वर्ग की समस्याओं को प्रमुखता दी। साथ ही इतिहास और मिथकीय कथाओं को समकालीनता के संदर्भ में पुनर्परिभाषित किया। कबीरा खड़ा बाजार में उन्होंने कबीर जैसे ऐतिहासिक पात्र को आधुनिक समाज के संदर्भ में प्रस्तुत कर धार्मिक पाखंड, सांप्रदायिकता और सामाजिक कुरीतियों पर गहरा प्रहार किया। इसी प्रकार आलमगीर नाटक में औरंगजेब और दारा शिकोह के संघर्ष के माध्यम से राजनीतिक सत्ता, धार्मिक कट्टरता और भाईचारे के विघटन को उन्होंने बखूबी उजागर किया।
0: भीष्म साहनी का नाट्य शिल्प, अभी आप ये हिंदी वार्ता सुन रहे थे। वार्ताकार थे डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 6:55 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम छायागीत। छायागीत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को रविकांत वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।

मैं तेरे प्यार में पागल। ये प्यारा सा गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्रेम बंधन से। आवाज़ें थी लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने और इस गीत के लिए संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, कार्यक्रम छाया गीत इस समय आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार। गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

प्यार ही प्यार, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को। और श्रोताओं, अब कार्यक्रम में अंतिम गीत की तरफ हम आपको ले चलते हैं। अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म पत्थर के सनम से, आवाज़ एक बार फिर से मोहम्मद रफ़ी की। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म पत्थर के सनम का ये प्यारा सा गीत। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम छाया गीत अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है एक भारत श्रेष्ठ भारत गीत।

एक भारत श्रेष्ठ भारत। अभी आप ये देशगान सुन रहे थे। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 7:15 हो रहे को है। प्रस्तुत है हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज की सभा के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों के विषय में संक्षिप्त जानकारी। आज रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चर्चा का विषय है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। रात्रि 10:00 आप सुन सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, जिसमें हमारा आज का विषय रहेगा गर्मियों के वो दिन और गर्मियों के ये दिन। श्रोताओं, हमारे जो श्रोता हैं वो अपने अनुभव हमसे साझा कर सकते हैं, उनके अनुभव के आधार पर हम ये कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। सुरिंदर कौर की आवाज में शब्द सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत में आज संध्या 7:45 पर। कानून की बात, ये कार्यक्रम आकाशवाणी लखनऊ से रिले किया जाएगा आज संध्या 7:30 पर। फिल्मी गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम गीत संध्या में आज रात्रि 8:00 और रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे मैंने प्यार किया फिल्म के कुछ गीत। कल शाम 4:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स। रात्रि 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम कंट्री वाइड और इनसाइट्स। ये तीनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

शाने आलम और साथियों की गाई कव्वालियाँ आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सुगम संगीत में कल संध्या 7:32 पर। कार्यक्रम विविधा में कल संध्या 6:45 पर हम आपको सुनवाएंगे रविंद्र त्यागी की ये हिंदी वार्ता, जिसका विषय रहेगा शांति और विकास, एक सिक्के के दो पहलू। कल रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रूपक, जिसमें आप सुनेंगे हिंदी साहित्य में तुलनात्मक आलोचना के जनक पंडित पद्म सिंह शर्मा। आलेख है अमन कुमार का, प्रस्तुति सहयोग इकबाल अहमद का है और प्रस्तुतकर्ता होंगे सुशील त्यागी और अनिल भारती। खेती की बातें कार्यक्रम में कल प्रातः 7:10 पर हमारे किसान भाई सुनेंगे जानकारी भूमि सुधार की विभिन्न विधियां। तो श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले आज के शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ विशेष कार्यक्रमों के संदर्भ में। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये नजीबाबाद केंद्र है। संध्या के 7:18 होने को हैं। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: इसकी बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
1: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी के निर्माता इफको।

0: अभी आप सुन रहे थे किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1,320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है जनपद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से आज कई साधु संतों ने की मुलाकात। महंत राजकुमार दास ने कहा, आगामी दिनों में ट्रस्ट में होंगे बड़े परिवर्तन। और प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता बढ़ी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी में प्रदेश के 12 लाख शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों और उनके आश्रितों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने वाली मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 1,10,00,000 विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म, जूते मोजे, स्वेटर, स्कूल बैग और स्टेशनरी के लिए 1200 रुपए प्रति विद्यार्थी के हिसाब से उनके अभिभावकों के खाते में करीब 1,320 करोड़ रुपए की धनराशि का अंतरण किया। इस अवसर पर 1,00,000 शिक्षकों और संविदा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा समाज की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ MOU कर हर शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इस योजना को लागू किया गया है।
1: हर एक शिक्षक को भी, शिक्षा मित्र को भी और अनुदेशक को भी एक नई गारंटी दी जा रही है, जिसमें अस्थायी शिक्षक और कार्मिकों को जिनका वेतन 10,000 रुपए से अधिक है उन्हें 1,00,000 का ग्रुप टर्म इंश्योरेंस कवर, जिसमें 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट कवर, 1 करोड़ का स्थायी दिव्यांगता कवर, 1.6 करोड़ का ईयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर के साथ ही किसी अनहोनी की दिशा में शिक्षक या कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों के विवाह के लिए भी एड ऑन कवर इसमें प्रदान किया जाएगा। यह एक नई सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिली है।
0: मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के लिए आभार जताते हुए जौनपुर के शिक्षक राजेश पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस योजना के माध्यम से शिक्षकों को बड़ी सौगात दी है।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए समस्त शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना की जो शुरुआत की है, यह बहुत ही सराहनीय पहल है। इसके लिए पूरे शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यह योजना लाखों लाख शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारियों के चिकित्सा संबंधी समस्याओं और उनकी चिंताओं का समाधान करेगा।
0: वाराणसी के बाद मुख्यमंत्री ने मिर्जापुर में पहुंचकर मां विंध्यवासिनी देवी का दर्शन पूजन किया और विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। श्री योगी ने विंध्य मंडल के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं से संबंधित सभी प्रस्ताव 15 जुलाई तक शासन को भेज दिए जाएं और 15 अगस्त तक स्वीकृत योजनाओं के लिए धनराशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की लागत वाली 124 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के विकास के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि चित्रकूट में अब निवेश आ रहा है, जिससे जनपद के विकास को गति मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चित्रकूट को इको टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम शुरू किया गया है। श्री योगी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में उत्तर प्रदेश भी सहभागी बन रहा है।
3: अब निवेश यहाँ भी आ रहा है, क्योंकि अब भय नहीं है, अब तो निवेश का वातावरण है। 4 लेन की सड़कें, एक सुंदर चित्रकूट हम सबके सामने है और वह आज हम सबको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज तो यहाँ पे हम लोग एक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में, यानी ये आध्यात्मिक टूरिज्म तो था ही, अब इको टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी यहाँ पे के लिए आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में अनियमितता मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने आज 3 आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लोकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को रिमांड पर लेकर पूछताछ की। पुलिस तीनों आरोपियों को लेकर 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पहुंची। इससे पहले रिमांड पर लिए गए आरोपी अविनाश शुक्ल से पूछताछ में मिली जानकारियों के आधार पर जांच टीम तीनों आरोपियों से बयानों का मिलान करवा रही है। वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी से आज कई साधु संतों ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद महंत राजकुमार दास ने कहा कि आगामी दिनों में ट्रस्ट में बड़े परिवर्तन होंगे, जिसकी जानकारी जल्द ही ट्रस्ट द्वारा साझा की जाएगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने कहा है कि वाराणसी हवाई अड्डे के नए टर्मिनल पर देश का पहला

0: छह लेन वाला अंडरपास बनाया जा रहा है। आज एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि 450 मीटर लंबा यह अंडरपास देश की अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है, जहां ऊपर विमानों के संचालन के दौरान नीचे सड़क यातायात सुचारू रूप से चल सकेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान की टीम ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आगरा के पूर्व ARTO ललित कुमार के लखनऊ स्थित आवास पर छापेमारी की। लखनऊ में उनके आवास पर दो दिन चली छापेमारी में लगभग 1,62,00,000 रुपए कैश, करीब 20 करोड़ रुपए के जेवरात और 13 करोड़ रुपए की संपत्ति के कागजात बरामद हुए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय का 11वां दीक्षांत समारोह आज संपन्न हुआ। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में 1,246 विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने छात्रों से अपने ज्ञान, प्रतिभा और क्षमता का इस्तेमाल विकसित भारत के निर्माण के लिए करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाषा विश्वविद्यालय में अब जर्मन, जापानी और चीनी जैसी कई भाषाओं के कोर्स की शुरुआत होने जा रही है, जो यहां के विद्यार्थियों को वैश्विक अवसरों से जोड़ेंगे।
1: ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय में पूर्व से संचालित भाषाओं के साथ साथ अब जर्मन, जापानी और चीनी जैसी अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं का अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। यह पहल विद्यार्थियों के लिए विश्व के ज्ञान द्वार खोलने के साथ साथ उन्हें वैश्विक अवसरों से भी जोड़ेगी। इसके साथ ही अवधि भाषा में स्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ करने का प्रयास विशेष रूप से अभिनंदनीय है।
0: प्रदेश में 12 जुलाई को होने वाले पौधरोपण महाभियान को लेकर वन विभाग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस अभियान के तहत 35 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए प्रदेश की 2600 से अधिक नर्सरियों में 57,62,00,000 पौधे तैयार किए गए हैं। प्रयागराज में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश के वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है।
2: पूरी दुनिया इस समय ग्लोबल वार्मिंग के संकट से जूझ रही और इस बार 35 करोड़ जब हमारे यहाँ पेड़ लग जाएंगे, जब से 9 साल में हम लोग 275 करोड़ पेड़ लगाने का रिकॉर्ड, 35 करोड़ का इस बार का लक्ष्य है, उससे ज्यादा ही लगते हैं जितना लक्ष्य होता है, तो यह हम लगाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, वन आच्छादन का जो क्षेत्र है वो घटा नहीं, वो बढ़ा है।
0: राजधानी लखनऊ समेत कई अन्य जनपदों में आज हुई बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है। पीलीभीत में कल रात से हो रही बारिश ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का किया शुभारंभ। विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म और स्टेशनरी के लिए जारी किए 1,320 करोड़ रुपए। मुख्यमंत्री ने आज चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, इको टूरिज्म का नया केंद्र बन रहा है जनपद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से आज कई साधु संतों ने की मुलाकात। महंत राजकुमार दास ने कहा, आगामी दिनों में ट्रस्ट में होंगे बड़े परिवर्तन। और प्रदेश में मानसून की सक्रियता बढ़ी, मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं।
1: मीडियम वेव 4.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:31 हो गए हैं। श्रोताओं लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम कानून की बात। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं आपराधिक कानूनों में बदलाव, इस विषय पर की गई भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे हैं एडवोकेट देवेश गोस्वामी और भेंट करता है अतिश कुमार श्रीवास्तव।
2: श्रोता नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अतिश श्रीवास्तव। श्रोताओं, आपने पहले सुना होगा आईपीसी इंडियन पीनल कोड, जिसको बदला गया है बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में। इसी तरह एक सीआरपीसी था, क्रिमिनल प्रोसीडर कोड था, अब जिसको अप कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो इसी पर मैं आज बात करने वाला हूँ। मेरे साथ हैं देवेश गोस्वामी, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में। देवेश, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
3: धन्यवाद सर।
2: आपराधिक कानूनों में कुछ बदलाव किए गए हैं, तो हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि आईपीसी से बीएनएस हुआ या सीआरपीसी से बीएनएसएस हुआ, तो ये बदलाव क्यों और कैसे हुआ? देवेश
3: जी, चूंकि इंडियन पिनाल कोड 1860 का था और सीआरपीसी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो 1973 का, यह 1800 के दशकों का बनाया हुआ कानून है। चूंकि जो कानून ये बनाए गए थे, यह ब्रिटिश सरकार जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए बनाई थी। वो कहीं ना कहीं नागरिकों को सजा देने के लिए पनिशमेंट सेंट्रिक हुआ करता था इससे जो है। लेकिन जो ये नया हमारा बीएनएस कानून बन के आया है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस बनकर आया है, यह कहीं ना कहीं पनिशमेंट सेंट्रिक से हट करके जस्टिस सेंट्रिक पर ध्यान दिया गया है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, तो जैसे अब हमारा जो बीएनएसएस में प्रोविजन दिया गया है कि अगर कोई भी कोई व्यक्ति अपराध करता है, अपराध करने के अगर उसका चार्जशीट पुलिस 90 दिन के अंदर मजिस्ट्रेट को दे देती है, तो मजिस्ट्रेट पहली सुनवाई, जो कोर्ट की पहली सुनवाई होती है, सुनवाई के 60 दिन के अंदर अंदर ही आरोप तय कर लेगा। आरोप तय करने के बाद बहस समाप्त होने के या तो तुरंत या 45 डेज के अंदर अंदर ही उस पर निर्णय सुना देगी। तो यह पुराना जो हमारा कानून था, जो तारीख पे तारीख वाला सिस्टम था, उस पर यह बहुत बड़ा प्रहार है।
2: फिर और क्या बदलाव बता सकते हैं आप हमारे श्रोताओं?
3: इसमें अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बदलाव हुआ है पनिशमेंट को लेकर के। जो हमारी सजाएं दी जाती थी आईपीसी में, सजाएं 5 प्रकार की दी जाती थी, यानी कि आपको डेथ सेंटेंसेस, मृत्यु दंडादेश, लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाता था, और साधारण कारावास, कठोर कारावास, और जो है आपको फाइन की सजाएं दी जाती थी फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी। लेकिन अब एक नया जो सेक्शन नंबर 4 है बीएनएस का, उसमें जोड़ा गया है आपका कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा। यानी कि जैसे अगर मान लीजिए आप छोटा मोटा कोई अपराध करते हैं, तो आपको तुरंत 1 महीना या 4 महीना, 2 महीने की सजा नहीं दी जा सकता।
2: देवेश, आपने बताया कि पनिशमेंट 5 तरह के हैं, 5 तरह की सजाएं दी जाती थी आईपीसी में।
3: जी सर,
2: तो इसमें नया क्या बदलाव आया है?
3: जी, नया बदलाव जो छठा पनिशमेंट जोड़ा गया है, सामुदायिक सेवा। सामुदायिक सेवा तब आपको उसका सजा दिया जाएगा जैसे आप छोटे मोटे अपराध करते हैं। छोटे मोटे अपराध लाइक आप नशा करके रास्ते पब्लिक में आप पब्लिक को डिस्टर्ब कर रहे हो, या फिर आप 500 मूल्य की कोई भी चोरी करते हो, यानी 5000 से नीचे का जो उसका वैल्यू है मूल्य का, वो 5000 से नीचे आप छोटी मोटी चोरी करते हो, या आप किसी का डिफेमेशन कर देते हो, तो वहां पे आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ सेंटेंस या फिर कोई साधारण कारावास वो नहीं दे करके आपको कम्युनिटी सर्विस। अब कम्युनिटी सर्विस है क्या? जैसे कि आपको जेल में, आप अगर जेल में है तो उसमें सेवा करने, किसी को खाना खिलाने के लिए एनजीओ जो होती है, एनजीओ में आपको सेवा करने के लिए, आपको सड़क पर क्लीनिंग करने के लिए लगा दिया जाएगा। मतलब सामाजिक जो कार्य होंगे उसको आपको बिना पेमेंट के लगा दिया जाएगा।
2: सामाजिक हित के काम जो होंगे वो आपको सजा दी जाएगी उस तरह की।
3: हाँ, उस तरीके की सजा देगी।
2: तो ये प्रसंगवश क्या सार्थक हुआ है, क्या होने लगा है भारतीय न्याय में?
3: जी, 1 जुलाई 2024 से जब से कानून लागू हुआ है, तब से कई सारे अपराधों में जो है सजाएं दी जा रही हैं। इससे क्या हो रहा, जेलों में भीड़ कम हो रही है।
2: अच्छा अच्छा
3: हाँ, इससे बहुत बड़ा असर पड़ रहा है कि जेलों में भीड़ पड़ रही, कि छोटे मोटे अपराध होते थे लोग सबको जेल में बंद कर दो, क्योंकि इतनी जेलें नहीं है आपके पास, तो भीड़ कहीं ना कहीं कम हो रही है।
2: निवेश, हमने FIR शब्द ऐसा होता था कि एक बार अगर कोई सुन ले तो उसको डर लगता था, तो FIR में भी कोई बदलाव है?
3: जी सर, FIR में नया बदलाव ये आया।

0: के माध्यम से, वेबसाइट है जैसे कि uppolice.gov.in के माध्यम से, या फिर upcop का एक ऐप है अपना, उसके थ्रू आप जो है EFIR दर्ज करवा सकते हैं।
1: अच्छा, उसमें आपका जिक्र होगा?
0: जी, आप अपना आइडेंटिटी बताएंगे कि मैं फला मेरा नाम है और ये हमने देखा है यहाँ पर एक घटना घटी है, तो आप वहाँ पर EFIR दर्ज करवा देंगे।
1: अच्छा, इससे ये मेरे ख्याल से ये फायदा होगा कि अगर कोई अपराध हो रहा है तो उसकी जानकारी तुरंत मिल सकती है।
0: हाँ, तुरंत मिल सकती है, लेकिन सर इसमें एक कि झूठा केस ना हो सके, इसमें एक चीज और एड ऑन किया गया है कि जैसे कि जिस दिन आपने EFIR दर्ज करवाया उसके 3 दिन के अंदर अंदर ही आपको फिजिकली पुलिस स्टेशन पे जाना पड़ेगा,
1: जिसने FIR की है।
0: हाँ, इन्फॉर्मेंट जो सूचना देने वाला है उसको विदिन 3 डेज 3 दिन के अंदर फिजिकली पुलिस स्टेशन में जाके सिग्नेचर करना पड़ेगा, ताकि इसे लोग कई सारे झूठे
1: आइडेंटिफाई
0: कर देगा कि हाँ ऐसा घटना हुआ था, मैं हूँ।
1: EFIR का नोटेशन पुलिस के पास होता है?
0: जी, पुलिस जो है जब जैसे ही वो सिग्नेचर आके कर देगा तो पुलिस आगे की कार्यवाही अपने स्टार्ट करेगी, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा, यानी कि तब फॉर्मली, अब जो है फॉर्मली उसका जो है इन्वेस्टिगेशन पुलिस स्टार्ट कर
1: FIR दर्ज हो गई इसका।
0: हाँ, FIR दर्ज हो जाएगा।
1: और देवेश, एक जीरो FIR क्या होता है?
0: जी, जीरो FIR का कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए आप कहीं भी रास्ते में जा रहे हो, या फिर आपके रिलेटिव हो, आपके रिलेटिव आपसे फोन करके कह रहे हैं कि आज मैं, रिलेटिव आपके गोरखपुर में है मान लीजिए, आप हैं दिल्ली में रह रहे हैं, और दिल्ली में आप फोन से आपसे बात हो रही है, वो गोरखपुर में बताएं कि मेरे साथ किसी ने मारपीट की है, ये मेरे साथ घटना घट गई है, तो आपको जरूरी नहीं कि आप जो दिल्ली में रह रहे हो गोरखपुर जाकर के FIR दर्ज करो, आप भारत के किसी भी पुलिस स्टेशन में आप तुरंत जो है FIR दर्ज करवा सकते हैं, और जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन होगा वह FIR दर्ज करने के लिए बाध्य है, वह मना नहीं कर सकता कि यह मेरे एरिया का, मेरे क्षेत्र का यह घटना नहीं है। तो यह जीरो FIR कॉन्सेप्ट पहले जो हमारा CRPC हुआ करता था उसमें यह प्रोविजन नहीं था, यह नया कॉन्सेप्ट जो है 173 BNSS में दे दिया गया है, तो यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, यहाँ से मामला को बाद में फिर
1: ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा।
0: हाँ, फिर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिर वहां की पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगी।
1: भारत में हुआ करता है इंडियन एविडेंस एक्ट, तो इसका क्या मकसद था, क्या इसमें बदलाव है?
0: जी, इसमें भी कई सारे बदलाव आए हैं, जैसे कि पहले होता था कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स, जो पेपर वाले डॉक्यूमेंट्स होते थे उन्हीं को ही आप प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स मांग के साक्ष्य के रूप में मानते थे। नया इसमें क्या आया है, जैसे कि ई डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपके व्हाट्सएप चैट्स हो गए, ईमेल हो गए, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं, उनको भी अब एज ए एविडेंस कोर्ट जो है ग्रांट करेगी।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: ये बहुत अच्छा बदलाव है।
0: जी, जैसे कि होता लोगों को परेशानियां होती थी, कोई भी जैसे फोटो क्लिक किया हुआ है या फिर रिकॉर्डिंग किया हुआ है तो जल्दी उसको वैलिडिटी नहीं दी जाती थी, लेकिन अब उसको प्राइमरी एविडेंस, एज ए प्राइमरी एविडेंस के रूप में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में उसको मान्यता दे दी गई है।
1: अच्छा, नहीं, जहां तक मेरा संबंध रहा है, मैं आकाशवाणी में बहुत दिनों से, तो मुझे ये था कि रेडियो में जो रिकॉर्डिंग है,
0: जी सर,
1: या आपने किसी चीज को रिकॉर्ड करके रख लिया तो वो उसको कोर्ट एविडेंस नहीं, या वीडियो भी है कोई, क्योंकि उसमें बदलाव किया जा सकता है।
0: हाँ,
1: आवाज किसी की गायब की जा सकती है या ऐड की जा सकती है।
0: हाँ,
1: तो इसका भी कोई बदलाव है इसमें?
0: नहीं, इसमें तो कोई बेसिक बदलाव नहीं, लेकिन हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग की, जो वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी तो वहां पर जो है आपका जो एज ए एविडेंस, जैसे BNSS में जो आया है कि अगर पुलिस मान लीजिए कोई सर्च या सीजर कर रहा है, कहीं भी कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो उसकी भी एक वीडियोग्राफी बनाई जाएगी, तो वो वीडियो को एज ए एविडेंस मान लिया जाएगा। लेकिन हाँ, फेर बदलाव तो हो सकते हैं, तो वो तो फिर कोर्ट का काम नहीं है, फिर वो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से फिर उसको भी चेक किया जाएगा।
1: तो देवेश जी, एक चीज और मेरे ख्याल में आ रही है कि जब किसी अपराधी को पकड़ा जाता है तो पुलिस उसका रिमांड लेती है, या जज से या किसी कोर्ट से रिमांड मांगती है, तो रिमांड का क्या मतलब?
0: सर, बेसिकली रिमांड जो है CRPC जो होता था, सेक्शन नंबर 167 में दिया गया था, लेकिन अब BNSS 187 में प्रोविजन दिया गया है रिमांड, उसमें अगर बताया जाए कि जैसे कि जो पुलिस है किसी भी व्यक्ति को अगर वह अपराध किया है, अरेस्ट करता है, तो विद इन 24 आवर्स वह मजिस्ट्रेट को दे देगी, यानी अब 24 आवर्स जो इसको इन्वेस्टिगेशन करना था करेगी, उसके बाद अब उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। रिमांड ये है कि अब पुलिस क्या करे, जुडिशियल कस्टडी में होते हुए भी वह पहले स्टार्टिंग के 15 दिन वह पुलिस रिमांड ले सकती थी, यानी कि रिमांड पे लेकर के पूछताछ, जो भी इंट्रोगेशन करना है उस अपराधी से,
1: सिर्फ 15 दिन।
0: हाँ, स्टार्टिंग के, जैसे कि अगर वो 1 अगस्त को अरेस्ट किया किसी भी अपराधी

0: ठीक हो, तो 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के अंदर पुलिस कस्टडी कभी भी ले जा सकती थी, वो पहले था। लेकिन अब नया बदलाव क्या हुआ है, नया बदलाव ये हुआ है कि है तो अभी भी 15 दिन की पुलिस कस्टडी, लेकिन गंभीर अपराधों को देखते हुए 60 और 90 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी होती है उसमें कह रहा है स्टार्टिंग के 60 डेज और या फिर स्टार्टिंग के 40 डेज मेग अब कभी भी, यानी टुकड़ों टुकड़ों में 15 दिन का बदलाव।
1: 15 दिन में आप 3 दिन 1 दिन ले सकते हैं, 4 दिन 1 दिन ले सकते हैं, 4-5 दिन अलग अलग कर सकते हैं,
0: अलग अलग करके अब ले सकते हैं। तो इसमें विवाद ये है कि मानवाधिकार कर्ताओं का कहना यह है कि इसमें विवाद ये है कि जो उसमें अपराधी है, अपराधी जैसे अब उसके दिमाग पे 2 महीने तक प्रेशर रहेगा कि एक बार मैं पुलिस कस्टडी में जा सकता हूँ, एक बार जुडिशियल कस्टडी में, तो कहीं ना कहीं उसका बेल का राइट खत्म हो जाएगा। और जो उसकी फ्री विल है, जो संविधान में आर्टिकल 23 में दिया गया है कि किसी को आप खुद के विरुद्ध गवाही नहीं दिलवा सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं उसकी फ्री विल खत्म हो जाएगी, प्रेशर रहेगा कि कभी मैं पुलिस कस्टडी में, तो न चाहते हुए भी वह बयान सही सही बोल देगा।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो देवेश हमने अपराधों के संबंध में बदलाव की बात की है, तो क्या जो आम आदमी है उसको ये सब जानकारी करने के लिए भी कोई तैयारी की गई है, कोई तरीका सुझाया गया है?
0: जी सर, गृह मंत्रालय ने ई साक्ष और ई सेतु ऐप बनाया है जिससे सारे आपराधिक कानून को उस पर डाला गया है। तो एक सामान्य नागरिक ई साक्ष और ई सेतु ऐप पर विजिट कर सकता है, वह अपने अधिकार को जान सकता है। उस यानी कि सभी नागरिक का यह राइट है कि वह अपने अधिकार को जाने, तो अगर इस ऐप को वह विजिट करते हैं तो वह अपने अधिकार को भली भांति अच्छे तरीके से जान सकते हैं।
1: तो क्या जो अपराध जो केसेस चल रहे होते हैं इनकी जानकारी कैसे की जा सकती है?
0: जी सर, सभी कोर्ट्स की अपनी एक वेबसाइट होती है, जैसे कि अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किसी को अपने केस का विवरण देखना है तो डिस्ट्रिक्ट का अपना कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर के केस का स्टेटस टाइटल होता है वहां से आप देख सकते हो। हाई कोर्ट का अगर मामला है तो हाई कोर्ट के वेबसाइट पे जाता है, सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे आप जाकर के केस का स्टेटस देख सकते हो कि अभी तक क्या है, कब बेल है, कब डेट लगी है, सारी चीज को आप पता कर सकते हैं।
1: तो देवेश, आपने आज हमारे श्रोताओं को आपराधिक कानून में क्या बदलाव हुए इसके संबंध में बताया, और ये विषय इतना बड़ा है कि अगर हम बात करेंगे तो बहुत देर तक बात करनी पड़ सकती है, और हमारे कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है, तो इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आप स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी जानकारी दी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: अभी आप सुन रहे थे आपराधिक कानून में बदलाव, इस विषय पर की गई भेंट वार्ता। जानकारी दे रहे थे एडवोकेट देवेश गोस्वामी और भेंटकर्ता थे अतिश कुमार श्रीवास्तव। इसी के साथ आज का कार्यक्रम कानून की बात अब यहीं समाप्त होता है। मीडियम वेव 400.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हम आपके रेडियो सेट पे, न्यूज ऑन AIR स्मार्टफोन और DTH पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
3: मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 7:45 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुरिंदर कौर की आवाज़ में कुछ शब्द। तो लीजिए पेश है कार्यक्रम का ये पहला शब्द।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुगम संगीत इस समय आप आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से सुन रहे हैं और आज हम आपको सुनवा रहे हैं सुरिंदर कौर की आवाज़ में कुछ शब्द। तो लीजिए, पेश है कार्यक्रम की ये अगली पेशकश।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुगम संगीत में आज आप सुन रहे हैं सुरिंदर कौर की आवाज में कुछ शब्द, और चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम शब्द की ओर।

सुरेंद्र कौर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये शब्द। और श्रोताओं, इसी के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है सदाबहार गीतों का कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम गीत संध्या सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है।

लक्ष्मीकांत की संगीत निर्देशन और लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म सरगम का ये गीत। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत संध्या। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है फिल्म तीसरी कसम से। आवाज़ है मुकेश की। गीत लिखा है शैलेंद्र ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है शंकर जयकिशन ने।

मुकेश की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म तीसरी कसम का ये गीत। श्रोताओं, आपको एक बार पुनः याद दिला दें, आज रात्रि 10 बजे आप सुन सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्म संगीत का कंपेयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, जिसमें हमारा आज का विषय रहेगा गर्मियों के वो दिन और गर्मियों के ये दिन, जिसमें आप क्या परिवर्तन देखते हैं पुराने गर्मी के दिनों में और आज के गर्मी के दिनों में। ये परिवर्तन आप हमें लिख सकते हैं और अपने अनुभव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है मोहम्मद रफी के स्वर में। फिल्म का नाम है नील कमल। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है रवि ने।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म नीलकमल का ये गीत। कार्यक्रम का अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म का नाम है आप आए बहार आई। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

आप आए बहार आई। इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर को। और श्रोताओं, कार्यक्रम का अंतिम गीत हमने लिया है फिल्म लोफर से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और इस गीत के लिए धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

लता मंगेशकर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे फिल्म लोफर का ये गीत। और श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत संध्या अब यहीं पर संपन्न होता है। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का नजीबाबाद केंद्र है। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सन 1989 में आई हिंदी भाषा की शानदार रोमांटिक फिल्म मैंने प्यार किया के कुछ गीत। श्रोताओं, फिल्म मैंने प्यार किया, ये फिल्म रिलीज हुई थी 1989 में। सूरज बड़जात्या द्वारा निर्देशित ये एक सदाबहार हिंदी म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है। फिल्म में सलमान खान और भाग्यश्री ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। ये फिल्म दोस्ती, मासूमियत और सच्चे प्यार की यात्रा को दर्शाती है। इस फिल्म के सभी गीतों को संगीत दिया है राम लक्ष्मण ने और सारे ही गीत लिखे हैं असद भोपाली और देव कोहली ने। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला गीत लता मंगेशकर के स्वर में। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, जिसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सन 1989 में आई हिंदी भाषा की फिल्म मैंने प्यार किया के कुछ गीत। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गीत SP बाला सुब्रमण्यम के स्वर में

श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से का ये अंतिम गीत लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के स्वर में।

0: अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के युगल स्वर में ये गीत। इसी के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फिल्म से अब यहीं पर संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने वर्ष 1989 में आई हिंदी भाषा की रोमांटिक फिल्म मैंने प्यार किया से कुछ गीत सुने। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्स पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। आपसे कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए मेलबर्न पहुंचे। भारत और रूस ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मॉनसून में सुधार से राहत मिली है, जुलाई में बारिश और तेज होने से खरीफ की बुआई में और तेजी आएगी। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा की और विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्ट्यूक और चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनील ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। दोनों वाद्य यंत्रों की सुर और ताल ने भारत और ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक साझेदारी को सजीव रूप में प्रस्तुत किया। इसके बाद मेलबर्न की प्रसिद्ध कथक नृत्य ंगना संचिता उबरोल के नेतृत्व में कथक नृत्य की आकर्षक प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम का समापन

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारत ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबनन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा भी लिया। श्री मोदी ने इस यात्रा को गहन आध्यात्मिक और यादगार अनुभव बताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जीर्णोद्धार परियोजना से दोनों देशों के लोगों के बीच संबंध और मजबूत होंगे।
2: योग्यकार्ता के इस भव्य मंदिर कॉम्प्लेक्स अब जब हम पुनर्निर्माण का काम करने जा रहे हैं और ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है, दुनिया के दूर दूर क्षेत्रों में कहीं पर भी जाएं, हमें कहीं न कहीं भारत की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन होते हैं। ये पूरे साउथ ईस्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा हमारी विरासत की पहचान है।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक आतंकवाद की स्थिति पर विचार विमर्श किया और कट्टरपंथ आतंकवाद के वित्त पोषण जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए सहयोग को बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा अल खालिद अल सबा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रम पर अपने विचार साझा किए। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने आज ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका का सफल फ्लाइट टेस्ट किया। रॉकेट का परीक्षण निर्धारित न्यूनतम 60 किलोमीटर की दूरी के लिए किया गया। पिनाका को आयुध अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान ने उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से डिजाइन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेट के स्वदेशी डिजाइन और विकास क्षमता में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों में देश के विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हुई है, जिससे वर्षा की कमी वाले जिलों की संख्या 262 से घटकर 178 रह गई है। नई दिल्ली में अलनीनो के संभावित प्रभाव की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री चौहान ने कहा कि जून में 33% वर्षा की कमी दर्ज की गई थी, लेकिन जुलाई में ये घटकर 24% रह गई है।
3: जुलाई की अच्छी बारिश से बोनी की संभावनाएं बढ़ गई है। अब बोनी और तेजी से होगी। कल तक 350,85,000 हेक्टेयर में बोनी हुई है। मानसून में देरी के कारण तुअर, सोयाबीन और कपास पर थोड़ा प्रतिकूल बोनी पर प्रभाव पड़ा है। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह मक्का, बाजरा और मूंग जैसी फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने तेज बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आज बात कर उन्हें केंद्र की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन से बातचीत की। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के उत्तरी अरब सागर के शेष हिस्सों, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में आगे बढ़ जाने की संभावना है।
4: मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भारी बारिश का अनुमान जताया है। विभाग के अनुसार शुक्रवार तक कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आज दिल्ली NCR में हुई हल्की बारिश से गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली। बारिश के बाद मौसम सुहावना हो गया। विभाग के अनुसार राजधानी में दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय है और आने वाले दिनों में भी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने कल तक दिल्ली के लिए बिजली गरजने के साथ साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। ऋषि जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मुंबई से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में लगातार मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है।
5: नासिक और इगतपुरी के कैचमेंट एरियाज में भारी बारिश जारी है, जहां पिछले 24 घंटों में कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। भरे हुए डैम से पानी छोड़े जाने के बाद गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में भी भारी बारिश हुई है, जिससे कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। पालघर जिले में पिछले 8 दिनों से लगातार तेज बारिश हो रही है, इसके चलते डैम से सूर्या नदी में पानी छोड़ा गया, जिससे नदी किनारे के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। वहीं सांगली जिले में शाम के वक्त तेज बारिश शुरू हुई, जबकि कृष्णा और वरना नदियां फिलहाल पूरी कैपेसिटी के साथ बह रही है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO इस महीने की 15 तारीख तक लगभग 34 करोड़ EPFO खातों में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 8.25% ब्याज जमा करने का काम पूरा कर लेगा। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि नई केंद्रीकृत IT सक्षम सेवा CITES प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के खातों में 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जमा की जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में जमा 440 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए हैं। ये मामला वित्तीय लेन देन और संदिग्ध धन की हेराफेरी से संबंधित है। जांच में पता चला है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच पार्टी के बैंक खातों से लगभग 160 करोड़ रुपए एक निजी कंपनी और उसकी संबद्ध इकाई में स्थानांतरित किए गए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संघर्ष विराम समाप्त होने की घोषणा कर दी है। तुर्की की राजधानी अंकारा में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वे ईरान के साथ बातचीत में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने कहा कि अमरीकी प्रतिनिधि वार्ता जारी रख सकते हैं, लेकिन इसके सफल होने को लेकर उन्होंने संदेह जताया।
6: मुझे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। मैं अब उनसे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता। उनका नेतृत्व बीमार मानसिकता वाले लोग कर रहे हैं। वे क्रूर और हिंसक लोग हैं, और अगर उनके पास परमाणु हथियार होता तो वो लोग उसका इस्तेमाल कर देते।
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
7: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 1677 अंक गिरकर 76,504 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 517 अंक फिसलकर 23,882 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 60 पैसे कमजोर होकर 95 रुपए और 56 पैसे पर बंद हुआ।
1: खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज घोषणा की कि तेलंगाना 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में जमीनी स्तर पर खिलाड़ियों को मंच प्रदान करने के दृष्टिकोण से प्रेरित है। पिछले वर्ष मई में बिहार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा

मुज़ाकिरात जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें इन मुज़ाकिरात के कामयाब होने के इम्कानात पर शुबा है। ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका ने ईरान के खिलाफ एक नई फौजी कार्रवाई करते हुए 80 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। अमरीका का कहना है कि ये हमले आबनाए हुर्मुज में तजारती जहाजों पर ईरान के हमलों के जवाब में किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक इन हमलों में जदीद और इंतहाई दुरुस्त निशाना लगाने वाले हथियार इस्तेमाल किए गए, जिनका मकसद बैन अल-अक़वामी बहरी तिजारत को खतरे में डालने की ईरान की सलाहियत को कमजोर करना था। ईरानी फौज के मुताबिक हॉर्मुज़गान और महशार सूबों में साहिली फौजी अड्डों और शहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। यूक्रेन के मुख्तलिफ इलाकों में रूस के रात भर जारी हमलों में 3 अफराद हलाक हो गए, जिनमें एक शख्स की मौत राजधानी कीव में हुई। खारकीव में 2 अफराद हलाक जबकि 20 दीगर जख्मी हुए। विंबलडन टेनिस में यूक्रेन की मार्ता कोस्तुयुक और चेक जमहूरिया की लिंडा नोस्कोवा खवातीन के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। 12वीं सीट की खिलाड़ी मार्ता कोस्तुयुक ने आज सेंटर कोर्ट में इटली की जैस्मिन पाउलिनी को 6-3, 6-2 से शिकस्त दी और पहली मर्तबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची। इसी तरह 9वीं सीट की खिलाड़ी लिंडा नोस्कोवा ने बेल्जियम की खिलाड़ी एलिस मार्टिन्स को 6-3, 7-5 से हराया और पहली मर्तबा विंबलडन के सेमीफाइनल में पहुंची। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 3री भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना समिट में शिरकत के लिए मेलबोर्न पहुंच गए हैं। भारत और रूस ने कसीर रुखी प्लेटफॉर्म पर इनजाद दहशतगर्दी के सिलसिले में इश्तराक को मुस्तहकम करने के अपने अज़्म का इरादा किया। वो दिफाई तहकीक तरक्की की तंजीम DRDO ने उड़ीसा की चांदीपुर में तवील दूरी के गाइडेड रॉकेट पिनाका की कामयाब आजमाइशी परवाज की। मानसून में बेहतरी से राहत मिली है। ज़राअत के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने इत्मीनान जाहिर किया है कि इस महीने बारिश में मजीद बेहतरी आएगी, जिससे खरीफ की बुआई में भी तेजी आएगी। मरकज ने सैलाब से मुतासिरा रियासतों को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जंगबंदी खत्म हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Çak çak abi şeyhi.
1: ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम में प्रस्तुत है, अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
2: जब आसमान से आग बरसती है और नदियां रास्ता भूल जाती हैं, जब धरती की छाती प्यास से चटकने लगती है और समंदर की लहरों का मिजाज पूरी दुनिया का भूगोल बदलने लगता है, तब जन्म लेता है एक नाम, एल नीनो। ये सिर्फ मौसम का एक चक्र नहीं है, ये इम्तहान है हमारी धरती का, हमारी फसलों का और हमारी थाली का। आज जब ग्लोबल वार्मिंग के साए में खेती का भविष्य धुंधला रहा है, तब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हमारे अन्नदाता किसान इस परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हमारी कृषि प्रणाली में वो लचीलापन, वो क्लाइमेट रेजिलियंस है जो इस महासंकट का सामना कर सके? इन्हीं सवालों पर आधारित है आज आकाशवाणी का विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो बड़े विशेषज्ञ, मौसम के हर परिवर्तन पर पैनी नजर रखने वाले मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक आनंद शर्मा और देश की मिट्टी और किसानों की नब्ज पहचानने वाले जाने माने कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
3: नमस्कार, धन्यवाद।
2: आनंद जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और हमारे श्रोताओं और किसानों के लिए आसान भाषा में अगर आप समझाएं कि एल नीनो वास्तव में होता क्या है और प्रशांत महासागर में होने वाली ये हलचल भारत के मॉनसून को किस तरह प्रभावित करती है।
3: एल नीनो का बेसिकली क्या है कि जो आपका पेरू है, पेरू के जो तट है वहां पर सामान्यतः जो सी का जो समुद्र का तापमान होता है सरफेस का, वो सामान्यतः ठंडा रहता है। बट कई बार ऐसा होता है कि जो आपके ट्रेड विंड्स होती हैं, जो कि यहाँ के जो सरफेस वाटर को पेरू के तट से दूर धकेलती हैं और उसके चलते जो नीचे से पानी आता है समुद्र का, वो इसको ठंडा बनाए रखता है सतह को, और वो नॉर्मल कंडीशंस कहलाती हैं। जब ठंडा है सी सरफेस टेम्परेचर, ला नीना कंडीशंस। बट कई बार ऐसा देखा गया है कि ये जो ट्रेड विंड्स है ये स्लैकन कर जाती है, वीक पड़ जाती है। जब ये वीक हो जाती है तो क्या होता है, जो पानी था वहां जिसका सी सरफेस टेम्परेचर था थोड़ा ज्यादा था, वो हटा नहीं पाती और वो वहीं खट्टा रह जाता है। तो सामान्यतः जहां समुद्र का सतह का तापमान कम होना चाहिए था वो बढ़ जाता है। तो इसको कहते हैं एबनॉर्मल वार्मिंग ऑफ पैसिफिक सी ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू, यानी सामान्य से ज्यादा हो जाना सी सरफेस का टेम्परेचर का। और जब ये ऐसा होता है तो ये काफी सारे बदलाव लेके आता है कि जहां कहीं बारिश होती है पहले वहां सूखा पड़ने लगता है और जहां सूखा पड़ता है वहां बारिश होने लग जाती है, तो पूरे पैटर्न को। और दूसरी बात है, ये एक तरह का टेली कनेक्शन है। टेली कनेक्शन का मतलब है कि किसी तरह की समुद्र में या वायुमंडल में होने वाली हलचल एक जगह पे बहुत दूर, हजार किलोमीटर दूर के मौसम को और वहां की प्रेशर को, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक तरह का ये टेली कनेक्शन है और 4 से 5 साल के बीच में आता है, पहले भी आ चुके हैं। और जब जब ये आता है तो जैसे जैसे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो वाइल्ड फायर्स हो जाती हैं, हमारे यहाँ पे भी कभी कभार ये मौसम को, मतलब ये मॉनसून को प्रभावित कर देता है। क्योंकि ऐसे साल भी हुए हैं कि जब एल नीनो था मॉनसून खराब हुआ, और ऐसे साल भी हैं कि एल नीनो था और मॉनसून फिर भी ठीक था। और इस बार चर्चा हो रही है कि भाई ये जो है सुपर एल नीनो होने वाला है, हालांकि अभी जो है जितने ज्यादा तापमान नहीं बढ़े, 1 डिग्री के आसपास ही है तो ये ठीक है, मगर बोला जा रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन किया जा रहा है कि शायद ये 3 डिग्री तक पार कर जाए, तो ऐसा होता तो ये सुपर एल नीनो होगा, और जब ऐसा हुआ तो शायद ये उसके नेगेटिव इम्पैक्ट मानसून पे ज्यादा होंगे। और इस सबको मौसम विभाग ने, एक बड़ी अच्छी बात है कि क्योंकि आजकल ये सारी प्रिडिक्शन ग्लोबल स्तर पे होती है, WMO इसको वर्ल्ड मीटोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट करता है, तो ये सब सिग्नल पहले से दे दिए गए थे और मौसम विभाग ने भी इसको फैक्टर इन करा। और उसी को देखते हुए उनकी जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट है, उन्होंने इस बार कहा कि जो हमारा मॉनसून सीजन में हमें करीब करीब 115 सेंटीमीटर जो वर्षा मिलती है, लॉन्ग टर्म नॉर्मल जिसे कहते हैं, वो उसका सिर्फ 90% हमें मिलने वाला है, यानी कि 10% की कुछ कमी जो है मौसम विभाग ने इसको फैक्टर इन कर लिया। इसको देखते हुए ने देखा भी कि थोड़ा सा, हालांकि केरल में 1 तारीख को, जून को आता है मानसून, ये 4 तारीख को आया। हाँ, मुंबई और महाराष्ट्र में और जो आसपास के इलाके वहां इसकी मानसून ऑनसेट की थोड़ी देरी जरूर हुई, और शायद उसने कुछ एरियाज में सोइंग को प्रभावित किया होगा।
2: हरवीर जी, जब मौसम वैज्ञानिक एलनीनो की चेतावनी देते हैं तो एक आम किसान के खेत में इसका सीधा असर किस रूप में देखने को मिलता है? और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि एलनीनो की चेतावनी के बाद वो कौन कौन सी फसलें होती हैं जिन पर सबसे ज्यादा खतरा मंडराने लगता है?
0: असल में देखिए, जो खरीफ सीजन है वो हमारे एग्रीकल्चर का एक तो पहला सीजन होता है जब कृषि का साल शुरुआत हम मानते हैं, खरीफ दन रबी। खरीफ का मानसून पर बहुत बड़ी निर्भरता है। हमारे देश में बहुत बड़ा क्षेत्रफल ऐसा है जो एक फसली है खेती जहां होती है, और वो इसलिए क्यों, जो वर्षा सिंचित जो क्षेत्र हैं वो भी खरीफ में कवर होते हैं, वो रबी में वहां बहुत जगह ऐसी होती है खेती नहीं होती है। और अब भी हमारा ये देखिए कि करीब 50% के आसपास ही हमारा जो हम कहते हैं कि अश्योर्ड इरिगेशन कवरेज जो है, जहां पर निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधाएं जहां पर है अस्थायी रूप से, कि बारिश हो या ना हो पानी का इंतजाम फसल के लिए हो जाएगा, ऐसे में करीब करीब 50% जो हिस्सा है वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल इसमें है। और ये भी है कि जब इसके बारे में चर्चाएं इस बार शुरू हो गई, पहले से तैयारियां मीटिंग्स हो रही हैं मिनिस्ट्री में, एग्रीकल्चर में एनडीएमए की मीटिंग हो रही है और मिनिस्ट्री में भी हो रही है, तो वो चिन्हित किए गए कौन से ऐसे जिले हैं जहां डिस्ट्रेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो जो किसान इंतजार कर रहे थे कि हमें फसल बोनी है जब बारिश होगी, तो उनको इसके लिए दिक्कत हुई। और उसका नतीजा ये है कि देखिए, जून में जैसे शर्मा जी ने बताया कि मानसून थोड़ा डिले आया, और उसके बाद फिर जब वेस्ट कोस्ट की तरफ आता है तो वो बहुत ही स्लो उसका प्रेशर था, तो बेसिकली वीक जिसे हम कहते हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था, और बीच में बहुत बड़ा गैप आ गया था, एक ब्रेक जिसे कहते हैं वो आ गया। अब उसमें जब ये सब हिस्से आपके जो वेस्टर्न पार्ट है हमारा और इवन कुछ सेंट्रल है, वहां पर ये जो बारिश पर आधारित जो खेती है उसका काफी बड़ा हिस्सा है, तो अब नतीजा ये हुआ कि वहां पर जो किसान समझता था कि मुझे बुआई करनी है तो वो डिले हो। अभी जो लेटेस्ट डाटा अभी 5 तारीख तक के आए हैं, उसमें खरीफ में जो एवरेज हमारा जो स्टोन एरिया होता है वो करीब 21% से पिछड़ा हुआ है, और इसमें जो मार पड़ी है उन फसलों पर पड़ी है जो थोड़ा सा जिनको मार्जिनल क्रॉप बोलते हैं, कि जो एश्योर्ड इरिगेशन में फार्मर उनको नहीं बोता और ये लगता है कि बारिश होगी तो बो देंगे, जिसमें दालें हैं, तिलहन बड़े पैमाने पर है, तो ये जो नुकसान है हमें ये बड़ा है। इसकी वजह से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अलग तरीके से देखेगी, एग्रीकल्चर अलग तरीके से देखेगा, रिजर्व बैंक अलग तरीके से देखेगा। एक तो पहला तो स्टेप यही है कि

0: या सरकारी जो माध्यम है उनके जरिए जाता है, आपके जो कृषि विज्ञान केंद्र है उनके जरिए जाता है, तो वो सब एडवाइजरी उस तरीके से, अब तो तमाम सारा प्राइवेट सेक्टर भी एक्टिव है एग्रीकल्चर में, उनके जरिए भी जाता है। तो ये तो एक तरीके से किसान को सूचना पहुंचाने का काम है कि आप अपना फैसला आप ले सकते हैं, इस परिस्थिति में आपको के लिए क्या उचित फैसला है। तो ये किसान के स्तर पर है और ये सरकार दोनों के बीच में ये एक तरीके का इंफॉर्मेशन का एक जो फ्लो है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। मतलब बारिश नहीं होगी, कम होगी, तो उसको तो नहीं कर सकते। हाँ, उसको मिटिगेट करने के लिए और कई सारे स्टेप्स जो है जो सरकार लेती है या जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज लेती है, वो फिर अगले कदम इसके बाद नेक्स्ट जो अगली स्टेज में शुरू होता है।
1: आनंद जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे और देश के बहुत सारे श्रोता और किसान भी समझना चाहेंगे कि क्या क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, जो दो फैक्टर पिछले 20-25 वर्षों में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं, क्या उनका भी एल नीनो की घटनाओं से सीधा संबंध है? जो डेटा है वो इस बारे में क्या कहानी कहता है?
2: ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज भी है, पर एक चीज हमें और ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है ना, वो इतनी ज्यादा है, और ये जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ये थोड़ा एडिड प्रेशर है। मैं ये कहूंगा कि सारा नहीं, जो लोग मानते हैं सारा क्लाइमेट चेंज नहीं, 95% तो आपकी क्लाइमेट वेरिबिलिटी, और क्लाइमेट वेरिबिलिटी इतनी है, मैंने जैसे बताया कि 2002 में कितने जबरदस्त पूरा जून में बारिश ही नहीं मिली आपको। सो नेचुरल वेरिबिलिटी हमारी बहुत ज्यादा है, और ऊपर से ये अब एक्स्ट्रा प्रेशर हमारे ऊपर आ गया है। और लोगों का मानना है कि भाई जिस तरह से कि मतलब एटमोसफेयर की वार्मिंग हो रही है, हीट वेव्स हो रही है, वैसे ओशन भी वार्म कर रहे हैं, सो नेचुरली वहां पर भी वार्मिंग होगी, तो शायद और एल नीनो स्ट्रांग हो जाए, वो उनका मानना है। बट मेरा फिर भी मानना है कि हमने इससे भी वर्स्ट सिचुएशन को झेला है, तो हमारी यदि तैयारी अच्छी होगी, हमारी वार्निंग अच्छी होगी, जिसे हम कहते हैं ना फोर वॉर्न्ड इज फोर आर्म्ड, आपने वार्निंग पहले से दे दी और आपने तैयारी करी है कंटीजेंसी प्लान की, आप महावीर जी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है। हमारी यदि कंट्री 200 डिस्ट्रिक्ट जो है हमने चिन्हित कर दिए हैं जो कि एग्रीकल्चरली स्ट्रेस प्रोन है,
1: प्रभावित होंगे,
2: वो पहले से चिन्हित है। ICAR के बाद निकरा प्रोजेक्ट है, न्यू इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, वो हमारे पहले से तैयारी है। 2500 के करीब हम लोगों के पास कहते हैं ड्राउट स्ट्रेस रिलेटेड जो है, फ्लड रिलेटेड जो है वेराइटीज हैं जो फ्लड में भी काम कर जाएंगी, ड्राउट हुआ तो ड्राउट में काम कर जाएंगी, और एल नीनो में जरूरी नहीं कि ड्राउट ही होगा, एक्सट्रीम वेदर भी हो जाता है और फ्लडिंग भी हो जाएगी, तो उसकी सब वेराइटीज तैयार है। आपने बड़े अच्छा बताया महावीर जी ने, यदि थोड़ा डिले हो जाएगा, इतना ज्यादा भी डिले नहीं हुआ, और डिले हो गया जहाँ, तो आप 4 महीने की जगह छोटी क्रॉप लगाइए, शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप चले जाइए, और क्रॉप्स भी ऐसी हों जो कि मिलेट टाइप की होती हैं, जिनको कि मतलब कि आपको कहने के मतलब पानी कम चाहिए, यदि 3 हफ्ते ड्राई स्पेल रही तो वो सर्वाइव कर जाती है। और मजे की बात यह है कि आज की डेट में क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप बना हुआ है कृषि मंत्रालय में, और मैं उसका पार्ट था, IMD को काफी सालों मैंने रिप्रेजेंट किया, तो वहां हम लोग यही डिस्कशन होता है कि भाई पिछले हफ्ते ऐसा मौसम रहा, अगले हफ्ते ऐसा होने वाला है, लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ये है, तो अब सारे एक्सपर्ट बताएंगे फर्टिलाइजर अवेलेबल है, शॉर्ट ड्यूरेशन यदि बोना है तो क्या उसके बीज भी उपलब्ध है कि नहीं है, तो ये सब तैयारी रहती है, फर्टिलाइजर पैसे सब कुछ सबकी तैयारी, पानी है रिजर्वायर में कितना है। एक समय आ गया था कि मुंबई में पीने का पानी की किल्लत होने वाली थी, मगर वो और एक डेफिसिट 20-21% पहुंच गया था मानसून का, वो शायद अब 10 के आसपास आ गया है, तो वो भी काफी कवरेज हुई है। तो मगर मेरा कहने मतलब है कि तैयारी सरकार की अच्छी है, आपके पास हर तरह की वैरायटी है, और साथ साथ जो मौसम पे आधारित खेती करनी है, जो हमारे क्रॉपिंग पैटर्न हो वो हमेशा ऐसे होने चाहिए कि जहाँ का एग्रो क्लाइमेट है अकॉर्डिंग नहीं है, ऐसा ना हो जैसे कि शुगर केन महाराष्ट्र लगा रहा है सेमी एरिड एरिया है, पैडी लगा रहा है कौन पंजाब सेमी एरिड एरिया, ये क्रॉप ह्यूमिड एरिया की क्रॉप है, क्योंकि वहां पानी फ्री मिल रहा है उनको, बिजली फ्री है, तो वो इसलिए वो लगा रहे हैं और उसको प्राइस अच्छा मिलता है, मगर ऐसी जगहों पे लगाने हैं मिलेट्स, एक चीज। और दूसरी बात जो मौसम विभाग समय समय पे बताता है आपको, गुड वेदर प्रैक्टिसेस एंड बैड वेदर प्रैक्टिसेस, यदि आपका पानी बरस रहा है तो भैया इस समय हार्वेस्टिंग कर लो ना, बरसात से पहले से आपके सारे तालाब वालाब साफ करके उसकी कैपेसिटी बढ़ानी है हमको, तो वो करके तैयारी रखें अपनी। अच्छा, फिर उसके साथ ये भी करें, बैड वेदर है जब बता कि भाई एलिनो है इस बार, मॉनसून थोड़ा खराब होने का चांसेस है, तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो ये गुड वेदर कोड बैड वेदर कोड बिल्कुल बनी पड़ी है, तो उसके लिए कृषि मंत्रालय मौसम विभाग NDA में सारे जो है बिल्कुल आपस में उसमें रहते हैं, और समय समय पे क्रॉप वेदर वॉच ग्रुप मीटिंग्स होके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से और सबको ये जानकारी दी जा रही है इस समय क्या करना है आपको। और सबसे बड़ी उसमें बात मैं कहूंगा कि सरकारों को थोड़ा सा ये मेरे को और स्ट्रेस ये देना पड़ेगा, हमें इरीगेशन जो है ना कैनाल इरीगेशन और दूसरे इरीगेशन को और बढ़ाना है। देखिए जो स्टेट्स पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी जिनमें इरीगेशन फैसिलिटी है या फिर ग्राउंड वाटर उनको मिल जाता है, वहां कभी फसल नहीं खराब होती। आप देख लीजिए वहां पे यदि बारिश कम हो जाए ना, बल्कि फसल और अच्छी होती है, क्योंकि धूप अच्छी मिल रही है, बीमारी नहीं होती वहां पर, फंगस नहीं आती है, और पानी जब

0: सही है, वो निकाल के सोइंग कर देते हैं। और ये भी ध्यान रख लीजिए, क्रॉप को जैसे मान लीजिए 4 महीने की है तो 4 महीने पानी नहीं चाहिए,
1: जी
0: सिर्फ 4 और 5 क्रिटिकल स्टेजेस होती हैं, उन 5 क्रिटिकल स्टेजेस पे ही पानी चाहिए। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, वर्षा तो सामान्य है, सामान्य से ज्यादा है, पर वो क्या हुआ कि महीने के शुरू में मिल गई, एंड में मिल गई, और बीच में 3 हफ्ते नहीं मिली,
1: जब जरूरत थी तो नहीं मिली।
0: नहीं मिली। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब मौसम विभाग आज की इसमें आपको फोरकास्ट तो दे रहा है कि भाई मानसून की वर्षा कम होगी, पर मेरा ये मानना है ऐसा भी तो हो सकता है कि 90% के 85 भी हो गई, और 85 भी इतनी है कि आपकी जो फसलें ज्यादातर जो धान और शुगर केन को छोड़ दीजिए, बाकी को सिर्फ 500 मिलीमीटर वर्षा चाहिए, और यदि आपके समय समय पर मिल गई ये वर्षा तो आपकी फसल निकल जाएगी। मगर उसके साथ साथ किसानों को क्या करना है, किसान क्या कर रहा है, उसके पास एक लाइफ सेविंग इरीगेशन भी नहीं है तो वो तो जुआ खेल रहा है। एटलीस्ट 1 या 2 लाइफ सेविंग इरीगेशन तो रखे, जैसे ही 3 हफ्ते का पीरियड आया नहीं मिली वर्षा तो एक लाइफ सेविंग इरीगेशन यूज कर लिया, थोड़ी देर बाद उसको जरूर वर्षा मिलेगी। कभी ऐसा नहीं होता कि आपको 5 हफ्ते वर्षा मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं होता कभी भी। तो ये तैयारी हमारी होगी तो हम किसी भी सिचुएशन को झेल सकते हैं। आज इससे भी वर्स्ट सिचुएशन हमने झेल ली है और इसको भी हम अच्छे से झेलेंगे।
1: हरवीर जी, जलवायु अनुकूलन क्षमता यानी क्लाइमेट रेजिलियंस की बात करते हैं, और आज जो हमारा चर्चा का विषय का टॉपिक है वो भी इसी पर आधारित है। सबसे पहले तो आपसे ये समझना चाहेंगे ये होता क्या है, और व्यवहारिक रूप से किसान अपने खेत को जलवायु अनुकूल कैसे बना सकता है।
2: जो वेदर का जो एक पैटर्न है और क्लाइमेट, वो उसमें बड़े तेजी से बदलाव आ रहे हैं। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, एक्सट्रीम हीट, सडनली वेरी हैवी रेनफॉल और ड्राई स्पेल, तो ये जो इंसिडेंट्स है ये सीधा क्लाइमेट चेंज का इंडिकेशन है, और उसी से ये होता है जब अनयूजुअल इस तरह की घटनाएं होती हैं। अब इसमें एक तो पक्ष ये है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो काम कर रहे हैं कि हम क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप यानी कि ऐसी प्रजातियां जिसमें ऐसा लचीलापन है सर्वाइव करने के लिए कि अगर दोनों चीजों में, फ्लड में भी सर्वाइव कर जाए उस तरह की भी किस्में, और अगर उसको स्ट्रेस आता है उसमें भी वो सर्वाइव कर जाए कम पानी में, कम न्यूट्रिशन में। ये इस तरह की प्रजातियां वैसे तो बहुत बड़े पैमाने पर ICAR और हमारे जो एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने डेवलप की हैं, बट इसमें अब ये देखना पड़ेगा कि वो किसानों की पहुंच में कितना है। आप कहें कि हमने 2200 वेराइटी रिलीज कर दी, बट अगर किसान को यही नहीं पता कि इनमें से कौन सी वेराइटी ऐसी है जो आज की परिस्थिति में मेरे लिए उपयोगी है, और उससे भी आगे क्या उसका सीड उसे अवेलेबल है, वो कहाँ से अवेलेबल है, वो क्या किसी पब्लिक सिस्टम का जो सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन हो या कुछ कोऑपरेटिव के संस्थान है वो हो, या फिर प्राइवेट जो कंपनीज है उनके जरिए या उस तरीके से उपलब्ध है क्या, और उसका एग्जैक्टली देखिए होता क्या है कि अभी भी ये टेंडेंसी है, और इसमें क्योंकि जब आप इनकम पैरिटी की बात करते हैं क्रॉप की, अल्टीमेटली वट इज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो बिजनेस, किसान के लिए वो एक व्यवसाय है अपने सर्वाइवल का, अपने वेलबींग का। शर्मा जी कह रहे हैं कि पंजाब में जो है आपको धान बहुत ज्यादा नहीं उगाना चाहिए, बासमती उगाना चाहिए, गैर बासमती में हाई वैल्यू क्रॉप है, गैर बासमती आप ईस्टर्न इंडिया के लिए छोड़ दीजिए, वहां बहुत पानी है। लेकिन अब क्या है कि अगर वो वहां पर कॉटन ग्रो करता है, कॉटन में कम पानी चाहिए, लेकिन क्या है कि पिछले 10 साल 15 साल से हम लोग देख रहे हैं कि कॉटन की क्रॉप बहुत वल्नरेबल हो गई है पेस्ट एंड डिजीज के लिए। हम नई किस्में नहीं ला पा रहे हैं जो किसान को एश्योर करें कि इस बार इसको लगाइए, पानी भी बचेगा, आपकी आमदनी भी ज्यादा होगी। तो जब तक आप उसको एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देंगे फार्मर को, और उसका पहला प्रायोरिटी है मेरी आमदनी कैसे हो, जैसे मिलेट्स की बात करिए, अगर आप मिलेट ग्रो करेंगे और उसके लिए मार्केट नहीं होगा, उसके लिए प्रोक्यूरमेंट का सिस्टम नहीं होगा, हमारे जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं बड़े पैमाने पर उसको कंज्यूम नहीं करेंगे, तो फिर वो मिलेट के लिए उसको दाम कैसे मिलेगा। ये मल्टीपल चीज, जैसे मैंने कहा दालों का प्रॉब्लम है बट फिर भी नहीं ग्रो कर पा रहे फार्मर्स, तो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल टेक्नोलॉजी का आता है, और बहुत सारी ऐसी क्रॉप हमारी है जहाँ पर अभी तक हमें टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा है डिस्पाइट वर्ल्ड्स मोस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट रिसर्च सिस्टम इन एग्रीकल्चर। तो अब उसमें हमारे साइंटिस्ट की भी जिम्मेदारी बनती है, देखिए किसान साइंटिस्ट नहीं हो सकता। दूसरे हमारा जो एक्सटेंशन सिस्टम है, एक्सटेंशन का जो बड़ा रोल है वो बहुत बड़ा रोल है, एक्सटेंशन सिस्टम को लगातार रिफॉर्म करने की बात हो रही है, इस बजट में भी विस्तार की बात आई है, AI की बात हम लोग कर रहे हैं कि कैसे किसानों को बेहतर, ये सारा एक्सटेंशन वर्क है, उसको कैसे एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो, और ये राज्यों का विषय ज्यादा है एग्रीकल्चर, तो जो राज्य सरकारें हैं उनकी भूमिका इसमें बहुत ज्यादा हो जाती है, और वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है या जो बाकी जो लोग हैं जो एक्सटेंशन में काम करते हैं उनको मेरे ख्याल से ज्यादा सशक्त करने की और उनका नंबर बढ़ाने की जरूरत है। तो ये तैयारियां तभी किसान समझ पाएगा। दूसरे क्या है कि जैसे हमारा रेनफेड एरिया अथॉरिटी है वो वाटर शेड सिस्टम चलाता है और उसके लिए एक अच्छा खासा बजट है हमारा जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसमें वाटर शेड के लिए। तो ये उन इलाकों के लिए है जो ये ड्राउट प्रोन इलाके हैं, जैसे आपने कहा कि अगर बारिश नहीं हुई और एक सिंचाई भी उस वक्त उसको मिल गई तो क्रॉप सर्वाइव कर जाएगी। तो वहां पर जो वाटर बॉडीज है या पॉन्ड्स है या लेक्स है उनमें चेक डैम बना के और पानी को रोका जाता है और फिर वो इक्विटेबली जो फार्मर्स है वहां के, बहुत जगह तो क्या है कि फार्मर्स के अपने कलेक्टिव्स और यूनियंस बनी हुई है, ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं, वो आपस में तय कर लेते हैं प्रायोरिटी के आधार पर कब हमें इसका इस्तेमाल करना है। तो जो इस तरह के जो स्टेप्स हैं वो जिस तरह की परिस्थिति ड्राउट के टाइम पे आती है उसमें बहुत कारगर होते हैं, क्योंकि आपकी फसल को एक पानी चाहिए और आपके पास ऐसा ट्यूबवेल नहीं है, बोरवेल नहीं है कि आप इमीडिएटली सिंचाई कर सके। आप छोटे किसान हैं, हमारे 89% जो फार्मर हैं वो मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स हैं, उनका जो इन्वेस्टमेंट की जो कैपेसिटी है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में वो बहुत सीमित है, तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उनके लिए काम करता है। हाँ ये है कि पिछले कुछ वर्षों में कई चीजें हुई हैं, जैसे कि सोलर पंप का हुआ है, फिर हमने माइक्रो इरिगेशन पे फोकस किया है, माइनर इरिगेशन पे फोकस किया, वो सब इस तरीके के इलाकों के लिए है। और आप जो है कि कम पानी में टेक्नोलॉजी का जब इस्तेमाल करते हैं, जो ड्रिप है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, राजस्थान में बड़े पैमाने पर स्प्रिंकलर का इस्तेमाल होता है, फ्लड इरिगेशन नहीं होता हरियाणा पंजाब वेस्टर्न यूपी की तरह, क्योंकि उनको पता है कि पानी की एक एक बूंद की वैल्यू क्या है। तो ये जो चीजें हैं ये सारा सिस्टम आपको इस तरह की परिस्थिति से लड़ने में मदद करता है। और इसमें ये भी बात है कि जैसे मैंने कहा कि किसानों को सही जानकारी, प्रशिक्षण और जो अवेलेबिलिटी है वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, फर्टिलाइजर की जब हम बात करते हैं, या बीमारी आ जाए तो जो एग्रोकेमिकल्स हैं उनकी हम बात करते हैं, और पानी, लेकिन पानी सबसे किसी भी फसल को आगे तक ले जाने के लिए, उसको तैयारी और उसके उत्पादन के लिए वाटर इज द फर्स्ट रिसोर्स और फॉरमोस्ट, सबसे महत्वपूर्ण रिसोर्स है वो पानी है।
1: अनिल जी आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अगर हम आकाशवाणी की बात करें तो आकाशवाणी की लोकप्रियता इसलिए भी है क्योंकि जहां सुविधाएं नहीं है वहां लोग आकाशवाणी को सुनते हैं। मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि कुछ किसान ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन है, जो AI के थ्रू ऐप को भी समझते हैं, मौसम वैज्ञानिक जो सूचनाएं देते हैं वो भी उन तक पहुंच रही है। जैसा कि हरवीर जी ने कहा कि 89% के आसपास छोटे किसान हैं और उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो अब भी तकनीक से दूर है, वहां तक मौसम विभाग मौसम की चेतावनी जानकारी पहुंचाने के लिए क्या कुछ नए कार्यक्रम शुरू कर रहा है या किया है, उसके बारे में थोड़े हमारे श्रोताओं को जानकारी दें।
0: बिल्कुल, इसमें हमारे मौसम विभाग ने एक ऐप बनाया है मेघदूत। उस मेघदूत में जो है मौसम की पूर्वानुमान होता है और मौसम पे आधारित कृषि सलाह होती है, क्योंकि देखिए दो तरह की सलाह होती है, एक होता है पैकेज एंड प्रैक्टिस ऑफ खरीफ क्रॉप, रवि क्रॉप, कि इतनी खाद लगाना है, इतना इरिगेशन लगाना, वो एक नॉर्मल एडवाइजरी है। पर हम जो देते हैं एडवाइजरी वो है वेदर बेस्ड एडवाइजरी, मौसम पे आधारित, यानी कि बारिश आने वाली है तो भैया इरिगेशन पोस्टपोन कर दीजिए, आपका पानी बच जाएगा, बिजली बच गई। मान लीजिए आपकी फसल में बीमारी लगी है, आपको कहते हैं स्प्रे करना है केमिकल, बारिश आने वाली है, मैं कहूंगा नहीं अभी पोस्टपोन करिए, बारिश के बाद करना, नहीं तो आपका केमिकल बह जाएगा और आपका पैसा भी बेच जाएगा और वो जाके ग्राउंड वाटर को पोल्यूट करेगा या आपके पॉन्ड को करेगा, फिश में जाएगा, आप फिश खाओगे, आपकी हेल्थ को कैंसर होगा, एनवायरमेंट को खराब करेगा। तो वो एक बड़ी अच्छी बात होगी। तो इसमें मेघदूत एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ हमारे पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे भी सारी जानकारी रहती है, और आपने कहा फोन, फोन उससे भी मिलता है और उसमें भी आजकल ऐसा है कि आप यदि पढ़ नहीं सकते हैं तो आप सुन सकते हैं, उसको वॉइस में ला सकते हैं। और उसके और इम्पोर्टेंट बड़ी चीज है कि आप हर, जैसे कि विलेज के कह लीजिए पंचायत लेवल पर कियोस्क खोल दें, जहां पे भाई एक एक्सपर्ट रहेगा, उसके पास कंप्यूटर है, वो आप कंप्यूटर पे किसान वहां चले जाएगा, वो देख के फटाफट उसको बता देगा जी मेरे यहाँ का वेदर क्या है, बता दीजिए फटाफट देख देख के, वो एक्सेस करके उसको सिंपल भाषा में बता देगा, कौन सी फसल एडवाइस करेगी वो भी बता देगा, कहाँ अच्छे दाम मिलेंगे वो भी बता देगा। तो ये जो एक्सटेंशन कियोस्क है ये मुझे लगता है जिसे कहते हैं ना, जैसे कि एक एक सेंटर जरूर रहने चाहिए इन एरिया में जहां पे किसान आके ये सब चीजों को वो कर ले एक। और उसके अलावा हमें और क्या करना है कि जो भी मौसम की जानकारी है और सलाह है वो हर गांव के अंदर एक जो वहां का सरपंच होता है उसको जरूर भेजे, जीते हुए को, और एक हारा हुआ सरपंच उसको भी भेज दे, क्योंकि जीता वो अपने बंदों को देगा, शायद दूसरे को ना दे, तो उसको भी दे दीजिए। तो इन दो के पास पहुंच गया तो सोच लिया आपके गांव के सब लोगों को तो जानकारी पहुंच गई। तो यदि ये हम करते हैं, वेबसाइट भी है, रेडियो टीवी अखबार भी है, और साथ साथ ऐप भी है, वेबसाइट भी है, फोन भी है, और ये कियोस्क भी है, और सबसे बड़ा रोल जो है मैं आज जो मानता वो है रेडियो का। एक समय ऐसा था जब हम बचपन में बड़े हो रहे थे तो रेडियो बहुत पॉपुलर था, टीवी अभी आया नहीं था, या आया भी था तो किसी के पास होता नहीं था, और फिर जब टीवी आया तो रेडियो की इंपॉर्टेंस कम हो गई। मगर मैं अब ये कह रहा हूँ ये अब ये युग है जो रेडियो का युग है, कम्युनिटी रेडियो, तो छोटे छोटे कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने होंगे पूरे हमें हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, बल्कि अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विलेज लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे अलाउ कर दिया है। तो कम्युनिटी रेडियो खोलिए, और रेडियो भी कैसे आ गए हैं आज की डेट में, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, बैटरी नहीं चाहिए, हैंड वाइंडिंग है, आप पीछे हैंडल लगाए 60 बार घुमाइए, एक घंटा चलेगा, और उसमें टोन अलर्ट भी है, यदि मौसम विभाग ने कोई वार्निंग दी है तो वो वार्निंग भी वो टू की आवाज करेगा कि भाई इसको ऑन करना है। तो इस तरह की जो आज का आ गई, तो मुझे लगता है कम्युनिटी रेडियो को पॉपुलराइज कराना है, लोगों को सरकारें फ्री बांटे रेडियो इनको, जिसमें बिजली नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, ऑल वेदर कम्युनिकेशन हो जाएगा आपका, कोई भी डिजास्टर हो उस समय भी ये रेडियो आपके काम आएंगे। तो मुझे लगता है ये सब चीजें हम करें तो हमें जो लास्ट माइल, मतलब आखिरी आदमी तक हमें पहुंचना है, वो तो एक है ही है, उसके साथ साथ है क्रूशियल माइल कनेक्टिविटी, यानी कि इस समय यदि डिले हुआ मानसून तो कहां हुआ, महाराष्ट्र वाले इलाके में, आसपास के इलाकों में, तो उनको पहले से सूचित करना भाई मानसून आपके यहाँ डिले है और इतने दिन का डिले होने वाला है, तो आप अभी रुक जाइए थोड़ा, एकदम स्विंग पे मत जाइए, या फिर वर्षा अभी थोड़ी सी मिली है तो कई बार क्या होता है कि मॉइस्चर आया इतना नहीं है कि आपको वो सर्वाइव करेगा लॉन्ग पीरियड में, आपने सोइंग तो कर दी और बाद में एक हफ्ते में उड़ गया वो मॉइस्चर, तो आपका जर्मिनेशन प्रभावित हो जाएगा। तो सोइंग रेन कब होंगी तो वो भी मौसम विभाग बताते हैं, जो हम मौसम आधारित एडवाइजर देते हैं, वेन टू सो, वेन टू हार्वेस्ट, वेन टू इरीगेट, हाउ मच टू इरीगेट, वेन टू स्प्रे केमिकल्स, ये सारी चीजें मौसम आधारित जो कृषि सलाह दी जाती है मौसम विभाग और कृषि मंत्रालय दोनों से मिलकर, वो बहुत पॉपुलर हो रही है। तो मुझे लगता है वो सरकार को इसमें पूरा जोर देना चाहिए और इस सर्विस को हमें हर किसान तक पहुंचाना है, कैसे भी पहुंचाना है, और यदि हम ये पहुंचाते हैं तो डेफिनेटली हम प्रिपेयर होंगे, किसान प्रिपेयर है, और जैसा आपने कहा एक उसके लिए पूरा एक इकोसिस्टम तैयार करना है, एक्सटेंशन सर्विस बेहतरीन होनी चाहिए, कहां से फर्टिलाइजर मिलेगा, कहां से केमिकल मिलेगी, कहां से सीड मिलेगा, कहीं वो डुप्लीकेट तो नहीं ले जा रहा, उसको गलत बीज तो नहीं मिल रहा, कहीं वो सुनिश्चित करना होगा, और उसके प्राइस भी ऐसा करना, ये ना हो किसी वो ऐसे दुकानदार से ले जाए जो उसको 36% रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है, तो लो इंटरेस्ट पे ये सारी चीजें उन्हें मिले। और साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एश्योर्ड इरीगेशन, और वो चार नहीं पांच नहीं, एटलीस्ट एक या दो भी आपके पास लाइफ सेविंग इरीगेशन होंगे तो फसल आपके निकल जाएगी।
1: हरवीर जी, कार्यक्रम के अंत की तरफ हम बढ़ रहे हैं, कुछ व्यवहारिक सवाल पर चर्चा कर लेते हैं। एलनीनो की बात हम कर रहे हैं, अगर एलनीनो के कारण भारत के कुछ हिस्सों में मानसून से कम वर्षा होती है तो आपकी क्या सलाह है किसानों को कि वो सिंचाई के किन वैकल्पिक माध्यमों को अपनाएं, अगर कुछ राज्यवार आप बता सकें तो।
2: देखिए, जो आपका जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उसमें राजस्थान को आप छोड़ दें, पंजाब है, हरियाणा है, यूपी का बड़ा हिस्सा है, सिर्फ वेस्टर्न यूपी नहीं, अब ईस्टर्न यूपी और उधर भी कैनाल इरिगेशन है, मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर इरिगेशन में काम हुआ है, और हमारा जो ईस्टर्न इंडिया है वहां पर बोरवेल जो है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि वो जो आपके सिंचाई के जो संसाधन है वो दुरुस्त हो, जब भी जरूरत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकें, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। दूसरे देखिए क्या है कि ऐसी परिस्थिति में सरकारें किसानों की मदद करती रही हैं, उसमें ये है कि क्या अगर इवन आपका जो पावर सप्लाई है उसका कंस्ट्रेन भी है तो भी आप इरिगेशन के लिए एक्स्ट्रा पावर उपलब्ध कराते हैं और उसका एलोकेशन किया जाए, पहले से प्लानिंग करके रखना चाहिए। उसी तरीके से कई जगह जहां कमजोर किसान है वो सरकार देखे किस तरीके से उसका उनको डिसीजन लेना है, लेकिन जब अगर बारिश कम होगी तो किसान की लागत बढ़ती है क्योंकि उसको सिंचाई के ऊपर अधिक खर्च करना पड़ता है, तो ऐसे में क्या उनको सिंचाई के लिए कुछ आर्थिक मदद स्पेशली उस टाइम के लिए दी जा सकती है, पहले भी दी जाती रही है, डीजल वगैरह के ऊपर सब्सिडी दी जाती रही है, और मेरा मानना है कि सरकार ने अब समझ लिया है और काफी कुछ निर्भर करेगा, जैसे शर्मा जी ने बताया कि मॉनसून का क्या होता है, कि मॉनसून अगर 10% कम भी रहता है उसकी अहमियत क्या है कि उसका जो हमारा मॉनसून का पीरियड है जून टू सेप्टेम्बर, उस पूरी अवधि में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है और ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहा है। अगर ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है तो कोई मुश्किल नहीं है, और अगर पता लगा आपको जुलाई में बहुत बारिश हो गई उसके बाद अगस्त में आपके पास बारिश नहीं है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी और समय के हिसाब से जो हमारा विभाग है, कृषि विभाग है या सरकारों के जो सिंचाई विभाग है और जो ये तमाम सारे इन सबको विभागों को आपस में तालमेल बैठा कर कि किसान को कहां जरूरत है वहाँ उसको मदद करने की जरूरत है। और किसान भी अब ऐसा नहीं है, बहुत सारे अब बहुत चीजें बदली हैं, बदलाव कृषि में भी आया है, वो समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं, चीजों को समझते हैं, टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं और फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं, तो एक अच्छा तालमेल बैठा है तो इस मुश्किल को पार कर सकते हैं।
1: जी हाँ, मौसम बदलेगा, चुनौतियां आएंगी और एलनीनो जैसी महाशक्तियां हमारी तैयारियों को परखेंगी भी, लेकिन इतिहास गवाह है कि भारत के किसान ने कभी हारना नहीं सीखा। विज्ञान की सटीक भविष्यवाणियां और कृषि के आधुनिक तौर तरीके अगर हमारे अनुभव के साथ मिल जाएं तो सूखी मिट्टी से भी सोना उपजाया जा सकता है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हम मौसम के बदलावों से डरे नहीं, बल्कि अपनी रणनीति से उसे मात दें। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए हरवीर जी आपका, आनंद जी आपका बहुत बहुत आभार।
3: धन्यवाद धन्यवाद।
1: हम अपने तमाम श्रोताओं से बस यही कहना चाहते हैं कि बदलते दौर में सजग रहिए, वैज्ञानिक सलाह अपनाइए और अपनी खेती को सुरक्षित बनाइए। नमस्कार।
4: अभी आप सुन रहे थे अल नीनो के प्रभाव से निपटने के लिए कृषि और जलवायु को लेकर सुरक्षात्मक उपायों पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्व अपर महानिदेशक आनंद शर्मा और कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। चर्चा का विषय है

मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज और पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया।

श्रोताओं, कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया में आपका हार्दिक स्वागत है और आज आपके साथ हूं मैं रविकांत वर्मा। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। जैसे कि श्रोताओं आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपको एक विषय देते हैं और उस विषय पर आपसे चर्चा करते हैं आपके पत्रों के और व्हाट्सएप मैसेज के संदेशों के साथ। तो श्रोताओं, शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम और कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपको बता देते हैं अपना व्हाट्सएप नंबर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9457078288 और हमारा इस कार्यक्रम का आज का विषय रहेगा गर्मियों के वो दिन और गर्मियों के ये दिन। श्रोताओं, परिवर्तन संसार का नियम है। कल जो है वो आज नहीं होगा, कल जो था वो आज नहीं होगा और जो आज है वो कल नहीं मिल पाएगा। श्रोताओं, पुराने समय पुराने दिन अपनी यादें छोड़ जाते हैं। इन्हीं यादों के आधार पर हम पुरानी यादों को लेकर, कुछ ऐसी यादों को लेकर जो हमेशा हमारे दिल में बसी रहती हैं, हमारे दिल में घर कर जाती हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे साझा करते हैं वो बातें। श्रोताओं, एक बार फिर आपको हम अपना विषय बता देते हैं। हमारा आज का विषय है गर्मियों के वो दिन और गर्मियों के ये दिन। श्रोताओं, पहले भी गर्मियाँ पड़ती थी और आज भी गर्मियाँ पड़ती हैं। पहले लोग बिलबिलाते नहीं थे, लेकिन आज आप देख रहे हैं कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है। एक दो दिन से ही बरसात का फुहार थोड़ी थोड़ी सी कहीं कहीं आने लगी है, जिससे मौसम में राहत सी मिल रही है। लेकिन श्रोताओं, जो गर्मी थी अपने चरम पर थी और इस गर्मी के ये दिन पुराने दिनों से किस तरह से भिन्न थे, किस तरह से अलग थे, इस विषय में आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9457078288 और ये कार्यक्रम का पहला मैसेज भी हमारे पास आ गया है। ये मैसेज हमें आया है, लिखने वाले हैं जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। ये लिखते हैं, बहुत पहले की बात है कि घर में ना कोई बिजली, पंखा, कूलर, एसी कुछ भी नहीं था, फिर भी लोग बहुत सुकून से रहते थे, क्योंकि पहले हर घर में एक पेड़ होता था। पेड़ के नीचे बैठकर दादा दादी के पुराने किस्से कहानी सुनते थे। अब पेड़ बहुत संख्या में काटे जा रहे हैं। एसी पंखों की हवा से कोई सुकून नहीं मिलता है। बीमारी बढ़ रही है, इसके भागीदार भी हम ही हैं। बहुत ही प्यारा सा मैसेज और सच्चाई भरा मैसेज इन्होंने लिखा है। सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में और इतना सुंदर पत्र लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में श्रोताओं, कहीं ना कहीं गलती हमारी ही है। हम हरे भरे पेड़ काटते जा रहे थे, जो कि कारण है आज के इस सोनेपन के, आज की इन परेशानियों के। थोड़ी सी परेशानी आने पर हम घबरा जाते हैं। बहुत ही प्यारा सा मैसेज ये इन्होंने लिखा है और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है। लिखने वाले हैं गंज डुंडवारा से शमशुल, कमर राही, शाहीन, फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। ये लिखते हैं कि पहले दिनों में गर्मियों में बच्चे अपने नानी नाना के घर जाते थे, खूब मौज मस्ती करते थे। किस तरह गर्मियां बीत जाती थी पता ही नहीं लगता था। लेकिन अब बच्चों को भी इतनी गर्मी लगती है कि वो एसी के कमरे से भी बाहर नहीं निकलना चाहते और बस अपने ही खेल में, अपने ही मोबाइल में मगन रहते हैं। वास्तव में बहुत सच्ची बात आपने कही है कि बच्चे भी आजकल अपनी नानी नाना के घर कम जाना चाहते हैं। हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा आरामदायक चीज़ें ना हों, वो अपने घर पर ही रहना पसंद करते हैं और अधिकतर बच्चे मोबाइल पर ही अपना समय बिताना पसंद करते हैं। ये मैसेज हमारे पास आया है। ये लिखते हैं, प्रोग्राम पेशकर्ता को हमारा प्यार भरा नमस्कार। लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, योगेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार और ये लिखते हैं,
कि घड़े का ठंडा पानी और घर का दूध दही मक्खन, ये सब गर्मियों की शान होते थे। और आजकल देखिए, पैकेटों में दूध दही मिलने लगा है। क्या ताज़ा दूध कई दिन तक पैकेटों में ताज़ा रह सकता है? ये सब केमिकल मिले दूध आते हैं जिनसे हमारे स्वास्थ्य को भी हानि हो सकती है। लिखते हैं, किसी भी पंखे कूलर की आवश्यकता उस समय नहीं थी। मच्छरदानी लगाओ, खाट पर बिस्तर बिछाओ और आराम से पूरी रात बहुत अच्छी नींद आती थी। बहुत प्यारा सा मैसेज इन्होंने लिखा है। और श्रोताओं, आप तो जानते ही हैं हमारा आज का विषय है गर्मियों के वो दिन और गर्मियों के ये दिन।

0: अपने व्यापार को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं?
1: तो इंतजार किस बात का,
0: अभी बुक कराइए अपना विज्ञापन आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
1: विज्ञापन बुकिंग कराने के लिए आज ही संपर्क करें।
0: हमारा मोबाइल नंबर है 8865845809।
1: नंबर एक बार फिर सुन लीजिए 8865845809।
0: और हमारा ईमेल आईडी है
1: akashwaninajibabad@gmail.com।
0: तो देर किस बात की, उठाइए अपना फोन और बुक कराइए अपना विज्ञापन
1: आकाशवाणी नजीबाबाद के संग।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया और आज हमारा विषय है गर्मियों के वो दिन और गर्मियों के ये दिन। बहुत ही परिवर्तन देखने को मिलता है आज के समय और पुराने समय में। पुराने समय में हर परेशानी, हर दिक्कत सरलता से सुलझा ली जाती थी और वो तरीका भी ऐसा होता था कि ना ही पर्यावरण को नुकसान होता था और ना ही किसी चीज़ को या जीव को नुकसान होता था। श्रोताओं, ये अगला मैसेज हमारे पास आया है ग्राम जुझैला थाना शिवाला कला बिजनौर से। राशिद अंसारी, परवीन जहां, निशात आयशा, आलिया, शायना, महवेश, मोहम्मद अफवान और अदीना नूर का ये लिखते हैं, गर्मी के वे दिन भी क्या दिन थे जब हमें ठंडी और शुद्ध हवा मिलती थी, क्योंकि उन दिनों हरियाली ही हरियाली थी, पेड़ पौधे बहुत अधिक थे, हमें शुद्ध वायु और शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती थी, वातावरण स्वच्छ निर्मल था, घर के अंदर भी हमें गर्मी महसूस नहीं होती थी। जी हाँ श्रोताओं, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि घर के अंदर रहकर भी गर्मी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि पुराने घर इस तरह से बनाए जाते थे कि उनमें गर्मी वो हर मौसम के प्रति अब अनुकूल होते थे। चौड़ी चौड़ी दीवारें, मिट्टी की छतें, कड़ियों की छतें जो कि हमेशा ठंडी रहती थी और दीवारें चौड़ी बनाई जाती थी। और श्रोताओं, पता है आपको कि पुराने ज़माने में भी फ्रिज होते थे, वो फ्रिज मिट्टी की छोटी सी कोठरी जो कि बहुत अंदर बनाई जाती थी, उनमें साग सब्जी रखते थे जो ख़राब नहीं होती थी, ऐसे होते थे पुराने समय के फ्रिज। लेकिन आजकल है फ्रिज जो कि चलते हैं लेकिन ठंडा पानी पियो तो गले ख़राब होने की शिकायत हो जाती है और ये वातावरण में जो गैस घोलते हैं वो भी नुकसानदेह होती है। आगे लिखते हैं कि

रातों को हम अपनी छतों पर खुली हवा में आसमान के नीचे सोते थे और रातों को तारे भी खेल खेल में गिन लिया करते थे। दोपहर के समय पेड़ के नीचे चारपाई डालकर सोते थे। लेकिन आज वे दिन है कि हमारा गर्मी में हाल बेहाल रहता है। हमें शुद्ध वायु नहीं मिलती क्योंकि गर्मी से राहत दिलाने के लिए पेड़ पौधे नहीं है। वातावरण में शुद्ध वायु नहीं है। नदियाँ सूखी रहती हैं वर्ष भर। रातों को हम बंद कमरे में पंखे कूलर एसी चलाकर सोते हैं। न ही अब कोई दोपहर के समय बागों में खेलने जाता है। उन दिनों स्कूल की कक्षाएं भी खुलीदार और हवादार होती थी, लेकिन आज एसी क्लासेस हैं। जी हाँ श्रोताओं, एसी क्लासेस या एसी का अधिक उपयोग करने से हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने हमें लिखा है। कार्यक्रम में सहभागिता के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद राशिद जी। अगला मैसेज हमारे पास आया है संघमित्रा श्रोता संघ वार्ड नंबर 1 पोफाली जिला यवतमाल से। लिखने वाले हैं जयराम सिंगरकर, दिशांत कुमार सिंगरकर और अर्पिता जी। ये लिखते हैं कि नीम पीपल आम की छाँव यानी आम के पेड़ की छाँव एसी कूलर और पंखे के बराबर हो ही नहीं सकती, क्योंकि नीम की जब पेड़ की ठंडी छाँव का झोंका जब शरीर को छूता था तो वास्तव में मन प्रसन्न हो जाता था। लेकिन आज लोग पेड़ के नीचे बैठने को तरसते हैं। सबसे पहले तो उनके पास समय ही नहीं है और बैठे भी कैसे, क्योंकि पेड़ तो है ही नहीं। हमने अपने स्वार्थ के कारण पेड़ काट काट कर अपनी बिल्डिंगें बना ली हैं। पहले हम पिंजरों में पक्षी पालते थे, लेकिन अब हमने अपने ही लिए पिंजरे बना लिए हैं। ऐसा परिवर्तन हुआ है पिछले दिनों से और आज के दिनों में। बहुत ही सुंदर मैसेज आपने लिखा है। और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है, लिखने वाले हैं जिला बिजनौर से बसी किरतपुर से जकी मिर्ज़ा और इनके दोस्त सलमान अख्तर। ये लिखते हैं, पहले हम बारिश में छाता लेकर पानी में भरे हुए छप छप करते थे, पानी में नाव चलाते थे, बारिश का मज़ा लेते थे। गर्मियों के बाद जो बारिश होती थी उसमें हम गर्मियों के सभी दुख भूल जाया करते थे। छोटे छोटे बच्चे कागज़ की नाव पानी में चलाना बहुत पसंद करते हैं और मिट्टी की खुशबू जब आती थी पहली बारिश के बाद वो बहुत ही प्यारी लगती थी। बहुत प्यारा सा मैसेज इन्होंने लिखा है। अगला मैसेज आया है हमारे पास मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नामाला सुरलकर और आरती कुमारी का। ये लिखते हैं, गर्मियों के वो दिन जब पेड़ों की छाँव सबसे प्यारी लगती थी, गर्मियों के ये दिन जब एसी और मोबाइल ने बचपन की मस्ती कम कर दी। पहले आम, कच्ची कैरी और दोस्तों के साथ खेलों का मज़ा था। आज भागदौड़ भरी जिंदगी में वही सुकून कहीं खो सा गया है। यादें आज भी है, वही है, बस समय और जीने का अंदाज बदल गया है। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर और रतन माला सुरलकर। बहुत ही प्यारा सा मैसेज हमें लिख रहा है। और बहुत ही सुंदर बात यह है कि कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोता बहुत ही दिल से और बढ़ चढ़ कर सहभागिता निभा रहे हैं। अगला मैसेज ये हमारे पास आया है रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से। लिखने वाले हैं जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और समस्त डागला परिवार। ये लिखते हैं, हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार। और ये लिखते हैं, हमारी तरफ से घर में तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा गर्मी है, अंदर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, पर क्या करें, मजबूरी में जाना पड़ता है। साथ में पानी की बोतल लेकर जाएं तो ऐसा पानी ज़्यादा पीना नहीं चाहिए, बार बार पानी पीना चाहिए और बोतल का पानी कम पीना चाहिए। मटके का या मिट्टी के बर्तन का पानी पीना चाहिए। मटके का पानी जो शुद्ध होता है वह पानी पीना चाहिए ताकि हमारे शरीर में सही रहे और हमें स्वस्थ रखे। फ्रिज के पानी से तो उस समय प्यास रुक जाती है, लेकिन दोबारा प्यास फिर से लग जाती है। मटके का या सुराही का पानी पीना चाहिए जिससे हमें बार बार प्यास न लगे। बड़ा ही प्यारा मैसेज इन्होंने लिखा है। इतना मैसेज लिखने के लिए और कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, प्रांजल राय और श्रीमती रोशनी राय ये लिखते हैं। भैया जी, गर्मियों के पुराने दिन को जब भी हम याद करते हैं तो पुराने दिनों की कठिनाई याद आ जाती है। पुराने दिनों में संसाधनों की बहुत कमी थी। आज के दौर में संसाधन तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन वो जो मज़ा पिछले दिनों में था उसमें कहीं कमी रह गई है, जिससे हमारे पर्यावरण को, हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचता है। पहले जो काम होते थे वो कहीं भी ऐसे काम नहीं होते थे जिससे हमारे पर्यावरण को, हमारे आसपास किसी भी जीव जंतु को नुकसान पहुंचे। बहुत ही प्यारा सा मैसेज लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

जी हाँ श्रोताओं, याद करते हैं उन दिनों को जब आराम होता था प्रकृति को अपना मित्र बनाकर। अगला मैसेज हमारे पास आया है रविंद्र, अभिषेक, मोनी, सोनी, पवन, रॉबिन, और ये लिखते हैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से। ये लिखते हैं, इन्होंने बहुत ही प्यारी सी एक कविता हमारे लिए लिखकर भेजी है। जल स्रोतों को निर्मल बनाओ, जल निधियों का हो अभिनंदन, सूखती नदी अविरल बहाओ, जल निधि में बहे शुद्ध पेयजल, बुद्धिमता कोई युक्ति अपनाओ, जल निधि सब प्रदूषित कर दी, जल स्वच्छता संकल्प अपनाओ, नदी अपशिष्ट कूड़े से भर दी, जल स्रोतों को निर्मल बनाओ, वर्षा जल संग्रहित कर लो, जल संरक्षण से जल बचाओ, बूंद बूंद भूगर्भ में भर लो, कदापि जल व्यर्थ न बहाओ। बहुत ही सुंदर मैसेज आपने लिखा है, और कविता के माध्यम से सारा, जैसे कहते हैं ना, गागर में सागर भर दिया। बहुत ही प्यारी लाइन्स आपने लिखी हैं, इनमें बहुत ही सार है जीवन का। वास्तव में हमें जल स्रोतों का ध्यान रखना चाहिए और जल संरक्षण हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। श्रोताओं, बरसात शुरू हो ही गई है तो जल संरक्षण का प्रबंध करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है। वर्षा के जल को इकट्ठा करना और इसे यूज़ में लाना हमारी समझदारी कहलाती है। अगला मैसेज हमारे पास आया है शाही मार्केट सिहारा ज़िला बिजनौर से। आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना चौधरी, अराफात चौधरी, आदिब चौधरी, कादिर चौधरी और रिहाना चौधरी जी, ये लिखते हैं, पहले घर कच्चे हुआ करते थे, बहुत सुकून मिलता था, बिजली नहीं होती थी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारे घर पर बिजली नहीं थी, लेकिन आज से पहले उन घरों में गर्मी नहीं लगती थी। आज पक्के मकान है, पंखों में और कूलर में भी वह मज़ा नहीं आता। पहले दौर में घर बड़े हुआ करते थे, हर घर में नीम का पेड़ लगा होता था, उसकी हवाएं आती थी। जो आज घर छोटे हो गए हैं तो हवा कम लगती है और घर पूरा बंद हो जाता है। आजकल आंगन नहीं होते इसलिए गर्मी भी ज़्यादा लगती है, लेकिन अब दो तीन दिन से मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है और इस समय बारिश बहुत तेज़ पड़ रही है। जी हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस गर्मी से राहत के लिए बारिश एक वरदान होती है और इस समय बारिश की बहुत ज़रूरत थी। देखिए, यहाँ हमारा कार्यक्रम चल रहा है और बारिश भी हो रही है ना, इसे कहते हैं कार्यक्रम की सार्थकता, और हमारे श्रोता भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। इतना प्यारा मैसेज लिखने के लिए आसिफ चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, नीम और पीपल का पेड़ या आम का पेड़, वास्तव में जब इनसे छूकर हवा जाती है ना, तो एक शुद्ध छन कर हवा हमारे पास आती है, जो कि गुणकारी हवा होती है, और हमारे जब शरीर को लगती है तो शारीरिक कष्ट या शारीरिक जो परेशानियाँ होती हैं, एलर्जी वगैरह, वो भी ठीक हो जाती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन से भरपूर हवा होती है, और ऑक्सीजन तो आप जानते ही हैं हमारे लिए प्राणवायु कहलाती है। जी हाँ श्रोताओ, आगे हमारे पास ये मैसेज आया है, लिखने वाले हैं मोहल्ला बारादरी से महमूद खान रामपुर से। भाई रफा साहब और सईद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोज़ा मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी, ये लिखते हैं, वाकई में बचपन की वो दौर अलग ही था, जब हम अपने माता पिता भाई से 10 पैसे 20 पैसे लिया करते थे और दुकान पर जाकर चीज खरीद कर खाया करते थे। ये यादें ज़माने अब लौट कर नहीं आएंगे, और वो चीज़ बहुत सारी आती थी 10 या 20 पैसे में। उस दौर में 10 या 20 पैसे की बहुत अहमियत हुआ करती थी, और खाने पीने की चीज़ों और या फिर मेला घूमने के लिए या फिर पिक्चर देखने के लिए हॉल्स पर काफ़ी कतार दिखती थी। लेकिन आज तो इंटरनेट के माध्यम से सब घर पर ही पिक्चर देख लिया करते थे। जी हाँ श्रोता, उस समय का दौर ही और था। फिल्म टाकीज़ में सब लोग फिल्म देखने जाया करते थे, गर्मियों का मज़ा लिया करते थे, है ना। उस समय हमारे काम ऐसे होते थे कि गर्मी तो होती थी लेकिन हम अपने कामों में इतने व्यस्त रहते थे, अपने काम को इतने मज़े लेकर किया करते थे कि गर्मी का एहसास भी बहुत कम हो जाता था।
बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने लिखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैसेज आया है ये हमारे पास कस्बा चिलकाना से, सहारनपुर से, ज़रीफ़ अंसारी, नईम अंसारी और डॉक्टर आमिर मुन्ना नाजिम। ये लिखते हैं, रात को छत पर नरम रुई के गद्दे, चटाई या रंग बिरंगे कपड़े के बने तकिए होते थे और उन पर नींद भी बहुत अच्छी आती थी। आज कमरों में एसी है, गद्दे हैं और फोम के तकिए हैं, सिंथेटिक तकिए जिन पर लगातार पसीना आता रहता है और फाइबर के गद्दों पर आराम भी नहीं मिलता है। लेकिन क्या करें, जीवन ऐसा ही है। जी हाँ श्रोताओं, समय के साथ हमें बदलना ही पड़ता है। ये दिन जो हम याद कर रहे हैं वास्तव में बहुत अच्छे तो थे, लेकिन बदलता समय है और समय के साथ बदलना एक परिवर्तनकारी सच है। श्रोताओं, हमें समय के साथ बदलना ही पड़ेगा और अपने वातावरण में अनुकूलन करना भी मानव जाति का एक धर्म बन जाता है। लेकिन वो पुराने दिन याद करके जो खुशी होती है ना, वो हम प्राप्त करना चाहते हैं और यही हमारे इस कार्यक्रम का माध्यम है और लक्ष्य भी यही है कि पुराने दिन कैसे याद करके हमें सुकून मिलता है। हमारे बच्चे जो हमारे कार्यक्रम को, नई पीढ़ी जो सुन रही होगी वो भी आज इस कार्यक्रम को सुनकर खुश हो रही होगी। अगला मैसेज हमारे पास आया है, लिखने वाले हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी। ये लिखते हैं, ठंडियाई, मट्ठा, शहद का शरबत, आम पन्ना, अमरस, ये सब गर्मियों की वरदान कहलाते थे। गर्मियों में इन्हें पीकर पेट में ठंडक पड़ती थी और देखिए ना कोई साइड इफेक्ट और ना ही कोई इनसे परेशानी होती थी। पेट भी सही रहता था, स्वास्थ्य भी सही रहता था और बच्चे मजे से बड़े होते थे। कब बच्चे बड़े हो गए, तंदुरुस्त हो गए, पता ही नहीं चलता था। लेकिन आजकल चलने वाली कोल्ड ड्रिंक्स, केमिकल युक्त पेय पदार्थ हमें पीने में अच्छे तो लगते हैं, लेकिन ये स्वास्थ्य को हानि भी पहुंचा सकते हैं। बहुत प्यारा सा मैसेज आपने लिखा है। अगला मैसेज इसी क्रम में हमारे पास आया है, ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़ का। ये लिखते हैं, आज के मौसम में बहुत गर्मी है। जब नाना नानी के घर जाते थे तो वहाँ पे बिजली नहीं होती थी, कोई फन नहीं था, बाहर सोने का था, बाहर की हवा लगती थी। तो अब हर घर में एसी है, हर किसी के पास मोबाइल है। पहले पेड़ के नीचे हवा में बैठते थे, अभी तो सब पेड़ काटे जा रहे हैं और ज़मीन के ऊपर घर बनाए जा रहे हैं। पहले दिन अच्छे थे लेकिन पिछले दिन लौट कर नहीं आते। अब तो हमें इन्हीं दिनों के साथ सब्र करना होगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है दयानंद और नारायण जी, आपने बहुत ही प्यारा सा मैसेज किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नलेश्वर नगर नवरेल महाराष्ट्र, पीएस नवारकर, निर्मला नवारकर, विशाल नवारकर, मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान तायड़े और आशीष मोहरकर। ये लिखते हैं, आम, करेला, कटहल, करौंदा का अचार, चूल्हे की रोटी, उस पर अचार या मक्खन जो कि बहता हुआ लगता था, रोटी से बहता हुआ मक्खन, स्वास्थ्य को कहीं से कहीं तक नुकसान नहीं पहुंचाता था। और आज चिकनाई, चिकनाई के लिए सबसे पहले डॉक्टर मना कर देते हैं कि चिकनाई बंद, और पहले समय में यही चिकनाई वरदान हुआ करती थी और वो रोटी मक्खन में भीगी हुई आज के पिज़्ज़ा की बराबरी करती थी। बहुत ही प्यारी सी बात। और आपने लिखा है कि बहुत ही पुराने दिन आपने याद दिला दिए हमें, और हमें भी सोचकर बड़ा अच्छा लगता है कि वो दिन कैसे हुआ करते थे, है ना। इतनी शांति, खुशी और प्यार का अनुभव उन दिनों में होता है। बहुत ही प्यारा सा मैसेज है ये।

श्रोताओं, ये अगला मैसेज हमारे पास आया है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से, बलकरण वर्मा, अंजलि, ज्योति, प्रहलाद और राजेंद्र वर्मा का। ये लिखते हैं, समय के साथ बदलना हर इंसान का मुख्य पेशा हो गया है। हमें गर्मी में ठंडा चाहिए क्योंकि आजकल हमारे सभी खाने की चीज़ रासायनिक खेती से पैदा होती है, क्योंकि इंसान पेड़ की कटाई करते हैं और कहते हैं बहुत गर्मी लग रही है, पर ये नहीं देखते कि हम आए दिन पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर संदेश आपने दिया है। इतना सुंदर पत्र लिखने के लिए, मैसेज लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अंजनी, ज्योति और राजेंद्र वर्मा और प्रहलाद जी। श्रोताओं, वास्तव में ये कड़वी सच्चाई है कि हम हरियाली ख़त्म करेंगे तो हमें अंधकार मिलेगा। वास्तव में श्रोताओं, हमारा भी इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को यही संदेश है कि श्रोताओं, कहीं ना कहीं अपनी गलती मानकर हमें पश्चाताप करना चाहिए, और पश्चाताप भी ऐसा कि आप एक पेड़ ज़रूर लगाए, या आपका जो कर्म है वो आशीर्वाद और वरदान में बदल जाएंगे। श्रोताओं, आप कितना भी बड़ा महल जैसा घर बनाइए, खूब सारे एसी लगवाइए, सारी शान शौकत, झूमर वगैरह लगवाइए, लेकिन श्रोताओं, हमारे कहने से उस घर में एक कच्ची जगह, थोड़ी सी कच्ची जगह ज़रूर छोड़िए। वहाँ पर छोटे छोटे पौधे लगाइए, कोई पेड़ लगाइए, पुदीना लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, टमाटर, अपनी प्राकृतिक

आपको उस पेड़ के माध्यम से याद करती रहेंगी, क्योंकि वो पेड़ हमेशा उनको वरदान की तरह से सुविधाएं देता रहेगा और आप हमेशा उनके मन में बसे रहेंगे। अगला मैसेज हमारे पास आया है परी महल कासगंज से। लिखने वाले हैं आबाद खान, नबील खान, आफरा खान, इल्मा खान, शमसुल कुमार और इनके बहुत सारे साथी। ये लिखते हैं, इन्होंने लिखा है कि पुराने दिनों में जब हम नानी नाना के घर जाते थे तो कब छुट्टियां ख़त्म हो जाती थी इसका पता ही नहीं चलता था, लेकिन जब स्कूल खुलने का समय आता था तो हम बड़े दुखी मन से नाना नानी के घर से लौटते थे और उस समय मम्मी पापा से यही कहते थे कि कुछ दिन और, कुछ दिन और। बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने लिखा है। अगला मैसेज हमारे पास आया है ज़िला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से। तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानी सिद्दीकी, हमज़ा सिद्दीकी और गुलशन साहिबा, ये लिखते हैं कि पुराने दिन वास्तव में बहुत अच्छे थे और इतने अच्छे थे कि हमें आज भी हम याद करते हैं और अपने बच्चों को उन दिनों की कहानियां सुनाते थे और वो बच्चे आश्चर्य करते हैं कि वास्तव में पहले ऐसा होता था। जी हाँ श्रोताओं, कुछ वो दिन ऐसे ही थे। ज़िला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से लिखने वाले हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। ये लिखते हैं, ना जाने क्यों अभी आपकी याद आ गई, मौसम क्या बदला बरसात भी आ गई, मैंने छूकर देखा बूंदों को तो हर बूंद में आपकी तस्वीर नज़र आ गई। इस समय भी हमारे यहाँ बारिश हो रही है। देखिए श्रोताओं, हमें लगातार मौसम की भी जानकारी मिल रही है कि हमारे सभी श्रोताओं के घर बारिश हो रही है और सभी बारिश का आनंद ले रहे हैं और रेडियो सुन रहे हैं। अगला मैसेज ये आया है गुरमीत सिंह मीता, साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली से, और ये लिखते हैं, घड़े का पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, घर का दूध, दही, मक्खन कभी भी स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाते। और यही सब पिछले पहले दिनों का वरदान होता था और यही उपहार होता था सभी बच्चों को उनके नाना नानी का।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, और आज का हमारा विषय है गर्मियों के वो दिन और गर्मियों के ये दिन। जी हाँ श्रोताओं, लगातार आपके मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं और अपने अनुभव और अपनी खुशियाँ आप हमारे साथ साझा कर रहे हैं। वास्तव में बहुत अच्छा हमें लग रहा है, और आज हमारा मन कर रहा है कि हम भी एक बात आपसे शेयर करें। श्रोताओं, आज ही हमने अपने घर में छोटी सी एक कच्ची जगह थी, वहाँ हमने आज करी पत्ता का पेड़ लगाया था। और श्रोताओं, जब एक घंटे बाद उसके पत्ते जब हिलने लगे ना हवा से, तो इतना अच्छा लग रहा था, मन को बड़ा संतुष्टि से लग रही थी कि हमने आज एक पेड़ लगाया। तो श्रोताओं, जैसी खुशी हमें आज मिली, हम भी चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता हमारे कहने से एक पेड़ ज़रूर लगाएं। और आप चाहते हैं ना कि पुराने दिन वापस आ जाएं। वास्तव में जब आप ये छोटा सा प्रयास करेंगे ना, तो कम से कम आधे दिन तो वापस आ ही जाएंगे, और आपको वास्तव में ऐसा लगने लगेगा कि प्रकृति झूम रही है, नाच रही है। अगला मैसेज हमारे पास आया है किरतपुर बिजनौर से, और ये लिखने वाले हैं दोस्त सलमान अख्तर और बसी किरतपुर से, और ये लिखते हैं गर्मी का समय बहुत अच्छा था। पिछले दिनों में गर्मियाँ तो होती थी, लेकिन गर्मी महसूस नहीं होती थी, और आजकल थोड़ी सी गर्मी से ही हम पसीने में लथपथ हो जाते थे। लेकिन पहले दिन ऐसे थे कि गर्मी में जब पसीना भी आता था ना, तो हमारा शरीर उसके बाद ठंडक और राहत महसूस करता था। लक्सर रोड ग्राम सोहाड़ी कस्बा पुरकाजी ज़िला मुजफ्फरनगर से लिखने वाले हैं मोहम्मद जाबिर हुसैन, हुजैफा, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद शोएब, कहकशा और पूरा परिवार। ये लिखते हैं कि पुराने दिन बहुत अच्छे थे और पुराने दिनों की हमें बहुत याद आती है। तरह तरह के खेल खेलते थे, और आज तो बच्चों को मोबाइल के अलावा और कोई खेल ही नहीं आता, बस मोबाइल पर गेम खेलते हैं। हम सब बच्चों के माता पिता से कहना चाहते हैं कि बच्चों को मोबाइल कम दिखाया करें और खेलने का मौका ज़्यादा देना चाहिए, ताकि इन बच्चों को भी अपना बचपन याद रहे। जी हाँ, आपने बहुत ही प्यारी सी बात लिखी है कि बच्चों को मोबाइल कम दिखाया करें, लेकिन बच्चों को मोबाइल नहीं देंगे तो बच्चे क्या करेंगे, खाली तो बैठे उन्हें पता नहीं। तो हमारा बड़ों का भी फ़र्ज़ बनता है कि यदि हम बच्चों को मोबाइल नहीं देंगे तो उन्हें कुछ ऐसे खेल सिखाएं ताकि आप भी उसमें सम्मिलित हों, उनके साथ खेलें, अपना बचपन दोबारा आप याद करें, ताकि आपके बचपन के साथ वो बच्चे भी इतने व्यस्त हो जाएं कि उनका ध्यान मोबाइल की तरफ जाए ही नहीं। बहुत ही सुंदर सा मैसेज लिखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरायमीर स्ट्रीट नगीना से रईस अहमद राही, रवीश अहमद राही, रुएश अहमद राही, रिशान अहमद राही, रुशेज अहमद राही, रुशमान अहमद राही और समस्त राही परिवार लिखता है कि बरसात की एक खूबसूरत रात, कार्यक्रम और ज़्यादा हसीन लग रहा है। उजाले जश्नन बहारों के खूब है, लेकिन अंधेरी बीती हुई शब के याद आते हैं। जी हाँ, आज के जीवन में भले ही लाख महत्वपूर्ण साधन आ गए हैं, पर जो पहले सादगी में जीने का अंदाज था, आनंद था, वो आज हरगिज नहीं मिल सकता। समय कम है, इसीलिए आगे कुछ नहीं, जीवन रहा तो फिर किसी मोड़ पर ज़रूर मुलाकात होगी। जी हाँ, ज़रूर मुलाकात होगी, उम्मीद बनाए रखिए। ये मैसेज अगला हमारे पास आया है, लिखने वाले हैं नगीना से अनिल बिनोचा और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये लिखते हैं रविकांत वर्मा जी को सादर नमस्कार। आज का टॉपिक गर्मियों के वो दिन और गर्मियों के ये दिन बहुत अच्छा है, कुछ लिख रहा हूँ। ये लिखते हैं, वायुमंडल में परिवर्तन सन 1990 से शुरू हो गया था, मगर आज पानी सर से ऊपर निकल गया है। समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है, इसलिए चिंता ज़्यादा है। पहले इंसान जीवन प्रकृति के संबंधों के साथ जीता था। विज्ञान पहले भी बहुत सुविधाजनक होता था, बहुत लोग उससे वाकिफ थे, लेकिन इनकम बढ़ना और सुविधाएं बढ़ी, पैसा भी बढ़ा, और इनसे जो परेशानियां पैदा हुई वो हमें और परेशान करती है। आगे लिखते हैं, ट्रांसपोर्ट के साधन बढ़े हैं,
उद्योग बढ़े हैं जिनसे गर्माहट बढ़ी है। लोग फ्लैट में 20-20 मंजिल मकान में रहते हैं। गर्मी लगने से एसी चलाते हैं और एसी जानते हैं कि एसी स्वास्थ्य को भी नुकसान दे सकता है। बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने लिखा है और वास्तव में बहुत सुंदर बात इन मैसेज में लिखी है। श्रोताओं, हम सब कहते तो हैं कि गर्मी बहुत है, पेड़ कट रहे हैं, है ना, लेकिन प्रयास तो हमें ही करना है ना। पेड़ किसी ने बाहर से तो आकर नहीं काटे, है ना, हम ही में से हैं जो पेड़ काटते हैं, अपनी सुविधा के लिए प्लॉटिंग करते हैं। आजकल आपने देखा होगा तालाब पाट दिए गए हैं, खेत पाट दिए गए हैं, प्लॉटिंग चल रही है, कहीं ना कहीं हम कुछ खो रहे हैं। तो श्रोताओं, जल्दी उस बात को याद रखिए और कहीं ना कहीं स्थान दीजिए एक पेड़ को, उस हरियाली को जो हमारी प्रकृति का श्रृंगार है।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया, और ये अगला मैसेज हमारे पास आया है राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और इनके परिवार के सभी सदस्यों का। चौक बाजार नजीबाबाद जिला बिजनौर से राजेंद्र कुमार, सौरभ कुमार, अनिमेश कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्यों का। ये लिखते हैं कि जब किसी के घर में चिनाई का काम होता था तो रेत का टीला बाहर सड़क पर जमा कर दिया जाता था। तो हम जब छोटे थे तो रेत का घर बनाया करते थे, पैर में रेत को दबाकर, और उसे महल बनाया करते थे। बहुत ही खुशी होती थी, जो हमारा मिट्टी का घर हमें आनंद देता था, और जैसे हम उस घर को देखते थे तो हमें वास्तव में बहुत खुशी का अनुभव होता था। बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने लिखा है। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक लिखते हैं पंजाब से। और अगला मैसेज हमारे पास आया है जसपुर उत्तराखंड से, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। ये लिखते हैं, गर्मी में घर में जब दोपहर में सब सो जाते थे तो हम छोटे बच्चे थे तो घर से बाहर निकल आते थे। इस तरह से गर्मियों की छुट्टी हम बिताया करते थे। कितनी भी धूप होती थी, सड़कों पर साइकिल चलाना, पहिए चलाना, कंचे खेलना, गिल्ली डंडा खेलना हमें बहुत अच्छा लगता था। और आजकल देखिए, हमारे बच्चों को इतनी गर्मी लगती है कि वो घर से बाहर ही निकलते हैं और कहते हैं कि बस हमें मोबाइल और एसी चला दीजिए, हमारा काम हो जाएगा। वास्तव में कितना परिवर्तन आ गया है ना। श्रोताओं, भागती दौड़ती जिंदगी में किसी के पास समय नहीं है। पहले व्यक्ति के पास समय ही समय होता था, वह रिश्ते को निभाना भी जानता था। श्रोताओं, आज हम रिश्तों को निभाना भूल रहे हैं। हमने अपना समय केवल अपने काम और बाकी सोशल मीडिया को दे दिया है, जिस कारण हम अपनों के साथ रहते हुए भी उनको नहीं पहचान पाते। तभी तो रिश्तों में प्यार की कमी होती जा रही है। श्रोताओं कहते हैं, गया समय नहीं आता, लेकिन हम कुछ हद तक तो अपने आज को कल की यादों से सजा सकते हैं, ताकि दिल फिर उन्हीं यादों को याद करता रहे।

अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं के व्हाट्सएप मैसेज पर आधारित फिल्मी गीतों का कंपेयर्ड कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। मीडियम वेव 314.47 मीटर अर्थात 954 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के नजीबाबाद केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। आपसे कुछ ही पलों बाद आकाशवाणी दिल्ली से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तीन देशों की यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न पहुंचे। हवाई अड्डे पर ऑस्ट्रेलिया की मंत्री क्लेयर ओनेल ने प्रधानमंत्री की अगवानी की, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। मेलबर्न में सामुदायिक स्वागत समारोह में बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीयों ने श्री मोदी का स्वागत किया। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: मेलबर्न में आज प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए भारतीय समुदाय में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम से पहले प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन स्वीकार किया। सांस्कृतिक प्रस्तुति की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के पारंपरिक वाद्य यंत्र डिडजेरिडू और भारतीय तबले की अनूठी जुगलबंदी से हुई। कार्यक्रम का समापन ऑस्ट्रेलिया इंडिया ऑर्केस्ट्रा की प्रस्तुति से हुआ। कलाकारों ने AR रहमान के प्रसिद्ध गीत माँ तुझे सलाम की सिम्फनी प्रस्तुति देकर दर्शकों का मन मोह लिया।

0: मेलबर्न से सुहास राम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति देगी। वे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज के साथ वार्ता को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारतीय समुदाय से मिलने का भी अवसर मिलेगा, जो भारतीय ऑस्ट्रेलिया साझेदारी का महत्वपूर्ण आधार है। प्रधानमंत्री तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम को भी संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबावो सुबियांतो के साथ योग्यकार्ता में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रांबानन मंदिर का दौरा किया। श्री मोदी ने मुख्य शिव मंदिर में पूजा अर्चना की और भारत इंडोनेशिया सहयोग के अंतर्गत चल रहे संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्राबावो ने मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भारत के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। भारत और रूस ने आज संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स, यूरेशियन समूह और शंघाई सहयोग संगठन सहित बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद रोधी सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत रूस आतंकवाद निरोधक संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सभा अल खालिद अल सभा से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस की प्रतिबद्धता की सराहना की। दोनों नेताओं ने खाड़ी क्षेत्र के घटनाक्रमों पर अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु में किसानों के हितों की रक्षा के लिए खोपरा और तोतापुरी आम की खरीद को मंजूरी दे दी है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहा कि इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और उन्हें कम कीमत पर फसल बेचने की मजबूरी से राहत मिलेगी। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 87,000 मीट्रिक टन से अधिक खोपरा खरीदने को मंजूरी दी है। इसके अलावा बाजार हस्तक्षेप

शिप योजना के अंतर्गत 96,000 मीट्रिक टन से अधिक तोतापुरी आम की खरीद भी की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार इस निर्णय से किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश की कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति दे सकती है। उन्होंने कहा कि AI के उपयोग से प्रत्येक किसान सालाना लगभग 5,000 रूपए की बचत कर सकता है। नई दिल्ली में आज 17वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि कृषि स्टार्टअप भारत के कृषि क्षेत्र का भविष्य है। उन्होंने सरकार, उद्योग, अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच बेहतर सहयोग पर बल दिया। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट की महिला सिंगल्स में लिंडा नोस्कोवा और मार्टा कोस्त्यूक ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज चेक गणराज्य की लिंडा नोस्कोवा ने एलिस मर्टिन्स को और यूक्रेन की मार्टा कोस्त्यूक ने जैस्मिन पाउलिनी को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।